खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना, जिसमें नॉनस्टॉप भजनों का आप आनंद ले रहे हैं। सुबह के 5:40 हुए हैं। ऐसे ही एफएम रेनबो सुनते रहिए।
1: राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन, सो तेरे अधीन।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 30वीं तिथि, तदनुसार 21 अगस्त 2026। सुबह के 5:53 और 32 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है। आइए अब हम आपको बता दें आज एफएम रेनबो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से यानी कुछ ही पलों में आप यानी सुबह 6:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुप्रभात, जिसमें नुपुर कुलश्रेष्ठ आपके साथ रहेंगे। सुबह 7:02 पर बबीता रावत आपके लिए लेकर आएंगी कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। सुबह 8:02 पर नुपुर कुलश्रेष्ठ आपके लिए गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर लेकर आएंगे, जिसमें आप दिल्ली शहर के बारे में उसकी जानकारी आप ले सकते हैं, साथ ही साथ गीतों का आनंद भी आप ले सकेंगे। सुबह 9:02 पर बबीता रावत आपके लिए लेकर आएंगी कार्यक्रम दिल के तराने गाने नए पुराने, जिसमें आप नॉन स्टॉप लेटेस्ट बॉलीवुड नंबर्स सुन सकते हैं, साथ ही साथ कुछ पुराने गीतों को भी आपको सुनवाया जाएगा। सुबह 10:02 पर आशीष अब्राहम आपके लिए लेकर आएंगे वेस्टर्न म्यूजिक मैचलेस म्यूजिक आवर कार्यक्रम। यह अंग्रेजी कार्यक्रम है, इंग्लिश गीतों को इसमें आप सुन सकेंगे। सुबह 11:02 पर रंजन अरनेजा आपके लिए लेकर आएंगे बॉलीवुड जगत के कार्यक्रम बॉलीवुड ट्रेल्स, इसमें आप गीतों का आनंद ले सकेंगे और साथ ही साथ बॉलीवुड जगत की खबरों को भी आप सुन सकेंगे। दोपहर 12:02 पर अंग्रेजी कार्यक्रम आशीष अब्राहम आपके लिए लेकर आएंगे वेस्टर्न म्यूजिक प्ले इट कूल। दोपहर 1:02 पर रंजन अरनेजा आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम बिंदास बोल। दोपहर 2:02 पर सृजन राजपूत आपको के लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम आशियाना। दोपहर 3:00 शैली भाषांजलि आपके लिए प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। ये फोन इन कार्यक्रम है, जिसमें आज का विषय रहेगा रेनी सीजन में बीमारियां। इसमें एक्सपर्ट होंगे डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता। शाम 4:02 पर अल्फा जैन कार्यक्रम आप सुन पाएंगे सृजन राजपूत के साथ। शाम 5:02 पर शैली भाषांजलि आपके लिए लेकर आएंगी सिटी लाइट्स। शाम 6:02 पर आप सुनेंगे मैसेज मसाला मिक्स सीमा सती के साथ। शाम 7:02 पर लिपिका दास आपके लिए लेकर आएंगे अंग्रेजी कार्यक्रम वेस्टर्न म्यूजिक फ्राइडे फिएस्टा। रात्रि 8:02 पर म्यूजिक मस्ती कार्यक्रम आप सुन पाएंगे सीमा सती के साथ, इसमें नॉन स्टॉप डांस हिट्स का मजा ले सकेंगे। रात्रि 9:00 आप सुनेंगे विकास कौशिक के साथ कार्यक्रम आपकी याद आती रही रात्रि 9:02 पर। रात्रि 10:02 पर आप सुनेंगे लिपिका दास के साथ कार्यक्रम वेस्टर्न म्यूजिक वीकेंडर। और रात्रि 11:02 पर आप सुन पाएंगे विकास कौशिक के साथ रंग महफिल। ये गजलों की कार्यक्रम है, जिसमें आप खूबसूरत गजलों का मजा ले सकते हैं। तो ये थी आज एफएम रेनबो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

नमस्कार, आकाशवाणी रेनबो पर सुने इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाम्बिया के राष्ट्रपति हाइकाइंडे हिचिलेमा को दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी। पुणे में आज 12वीं ब्रिस्क संचार मंत्रियों की बैठक होगी। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठक की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को मंजूरी दी। सर्वोच्च न्यायालय ने देशभर में छात्र प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के राज्य सरकार के निर्णय पर रोक लगाई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने पर बैठक की। सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात को मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को वर्ष 2047 तक समावेशी और विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए मास्टर प्लान जारी किया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति निर्वाचित। यूक्रेन की राजधानी कीव और आसपास के इलाकों में रूस के बड़े हवाई हमले, 16 लोगों की मौत, कई अन्य घायल। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना चीन की लियांग वे किंग और वांग चोंग से होगा। महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी चीन की जिया यी फैन और जांग शू शियान के साथ खेलेंगी। और महिला हॉकी विश्व कप में भारत ने इंग्लैंड के साथ ड्रॉ खेलकर दूसरे दौर में जगह बनाई। आज भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। ये थे आकाशवाणी रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार। आप जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो के इसी सफर में।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, सुप्रभात, सुन रहे हैं आप। तो कैसे हैं आप? फिट एंड फाइन, हेल्दी एंड स्मार्ट। और जरूरी है रहना आपका स्मार्ट, क्योंकि आप ही तो हैं हमारे स्टार्स, और हमारे ये स्टार्स फिट एंड फाइन, हेल्दी एंड स्मार्ट रहे, बस यही दुआ रहती है। उसी दुआ के साथ स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम सुप्रभात में। ये पक्षियों की चहचहाहट और ये मौसम बेहद खूबसूरत, और आप और ये सुबह, सभी का स्वागत इस सफर में। ये मौसम, सुबह, पक्षी, सब आपको उठाने आ जाते हैं। तो आप किस बात पर आराम में बैठे हैं? अभी बैठे रहिए, जुड़ेंगे आपसे कुछ ही देर में। आप सुनेंगे अभी प्रोग्राम सत्य वचन। कुछ ही देर में हम जारी रखेंगे अपना ये कार्यक्रम सुप्रभात।
1: This program is sponsored by SR Media Academy.
2: जी हाँ, आकाशवाणी FM

बिंबु पर फिर हाजिर है आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेकर प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन करिए स्वीकार हमारी नमस्ते सलाम और प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है, और बाइबल बताती है कि जो कुछ पिता परमेश्वर करता है वो सदा स्थिर रहेगा।

जी हाँ, यही सत्य वचन है कि मनुष्यों के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं है। दोस्तों, पवित्र

पवित्र बाइबल में लिखा है कि बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल मिलाप के अवसर को ढूंढता रहे, ताकि परमेश्वर की कृपा सदा तुझ पर बनी रहे।

जी हाँ, आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन मेरे यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ।

दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं। मैसेज या फोन करने के लिए हमारा नंबर है 9693644242। जी हाँ, 9693644242। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते यानी गुरुवार सुबह 6:05 पर फिर हाजिर होंगे एक नए सत्य वचन के साथ। तब तक के लिए आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार।

और कहा था कि बस ये सब पक्षी पंछी आपका स्वागत कर रहे हैं, तो उठ जाइए। ये सुबह कह रही है उठिए, ज़रा अपने से खुद से थोड़ी सी बात कीजिए, थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालिए और ज़रा थोड़ा सा घूम कर टहल कर आइए और फिर प्रकृति का आनंद लीजिए, उन नज़ारों का आनंद लीजिए जो सुबह सुबह आपको दिखाई देते हैं। तो उठिए और जुड़ जाइए हमारे साथ इस सफ़र में।

को जीवन में उतारना रह जाता है ना। इतना कुछ करते हैं और साधारण सी एक बात जो समझ में आती है कि वो ये है कि चाहे आप कुछ भी कर लें, और जैसे कि आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, या फिर आप कोई भी टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, या फिर आप योग कर रहे हैं, और योग में तो एक बहुत अच्छी बात है, मुझे लगता है कि जो निचोड़ हम कहते हैं ना किसी भी बात का निकल कर आता है, वो यही है कि हमें सहज होना आना चाहिए। योग हमें यही सिखाता है कि आप सहज रहें हर परिस्थिति में, चाहे दुख हो सुख हो, और फिर परिस्थितियां तो बदलती रहती हैं, है ना। कभी अच्छा वक्त होता है, कभी वैसा वक्त नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। हार जीत, सफलता असफलता, आशा निराशा, सुख दुख, ये सब तो जीवन में धूप छांव की तरह आते जाते रहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम हमेशा ही खुश रहें, सुखी रहें, और सफलता हमें मिलती रहे, और कभी भी हमें हार का सामना नहीं करना पड़े। पर ऐसा तो संभव नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन में हर तरह के प्रसंग आते हैं और वो चले भी जाते हैं, लेकिन जब आप सहज भाव से जीना सीख लें तो ये जो बहुत सारे दुख है ना, वो अपने आप कम हो जाते हैं, और सब कुछ ना बहुत आसान हो जाता है, हम खुद के लिए आसान बना लेते हैं। तो सहज होकर जीना एक कला है, और अगर इस कला को आपने सीख लिया तो फिर देखिए आप जीवन का आनंद ले पाएंगे। बात कर रहे हैं इसी पर आज सुप्रभात में, आप जुड़ रही हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो के इसी सफर में।

0: रुको नहीं बेटी, नाचो नाचो।
1: नीर भरत जमुना तट पर जब भर भर नीर उठाई गगर तब

देखिए आप तो बिल्कुल ये बात मान लीजिए कि जीवन में अगर खुश रहना है, तनाव मुक्त होना है, तो सहज होना सीख लेना चाहिए। जो जैसा है उसे ना वैसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए। एक बहुत कई बार हम ऐसे कहते हैं ना कि बस सकारात्मक रहिए, रहना चाहिए, और कोई भी परिस्थिति आए तो हमें मतलब अपने आप को ना फोर्स मत करें कि मुझे ये करना ही करना है, ऐसा करना है। ठीक है, जो है उसको स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। स्वीकार जब आप कर लेते हैं, एक्सेप्टेंस आ जाती है ना सहज भाव से, तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। ये मत कीजिए कि हाँ परेशान है, नहीं नहीं आप ठीक है, मतलब ज़बरदस्ती कोई अपने साथ चीज़ मत कीजिए। टेक योर टाइम, टाइम लगता है किसी भी चीज़ से डील करने के लिए, तो वो वक्त लें, खुद को किसी भी चीज़ के लिए फोर्स ना करें, प्रेशर ना लें, और जो जैसा आ रहा है उसको स्वीकार कर लेंगे तो तनाव मुक्त रहेंगे। जो छोटी छोटी सी बातें हैं ना वो आप कर सकते हैं, है ना। और सहज रहने के लिए ना बहुत बड़ी योग साधना या उपाय नहीं करना होता, ना कोई इसका कोई फॉर्मूला है। बस ये जो छोटी छोटी बातें हैं वही इसको खूबसूरत बनाती हैं। अपने आसपास के लोगों से सीखिए, बहुत कुछ हम सीख पाते हैं यदि प्रयास करें तो, है ना। और छोटी छोटी बातों से जो तनाव होता है ना हम उसको भी टाल सकते हैं अगर सहज होना सीख लें तो। तो फिर सहज होना सीख ही लेना, हर तरह से सम हो जाना, सम हो जाना यानी सहज हो जाना। और जीवन में जब आप सहज हो जाते हैं तो फिर कोई भी बड़ी बात बड़ी नहीं लगती। आपको लगता है कि ये वक्त भी बीत जाएगा, है ना। तो इसलिए कोशिश तो यही करनी चाहिए कि प्रसन्न रहें, और कोशिश ये भी करनी चाहिए कि हर बार मन में जिज्ञासा बनी रहे, कुछ नया सीखने की, कुछ नया करने की जो अभिलाषा है वो मन में ज़रूर होनी चाहिए। इससे आप जीवंत रहते हैं, है ना। ये नहीं कि आप सब कुछ जानते हैं, हम सब कुछ तो नहीं जानते, है ना। तो अभी आपको लगता है कि कोई बात है जो मन में हलचल पैदा कर रही है, तो कुछ नया सीखते हैं, किसी और दिशा में जाते हैं, अपने आप को संपूर्ण करते हैं, पूरा करते हैं, है ना। और उसके लिए जो करना आपको पसंद है आप वो कर सकते हैं। तो खुशी जो है ना, बस इसके जो बहाने जितने भी मिले ना इसको ले लेना चाहिए, बस ये करना चाहिए।

जो भी आपके पास आ रहा है उसको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे तो अच्छा है। सहज भाव से आगे जीवन में हंसते गाते गुनगुनाते आप निकलते जाइए। तनाव तो दूर होता ही है, और अभी हंसते गाते गुनगुनाते हुए ये गाना भी सुन लीजिए। मैं जुड़ी हुई हूँ आपके साथ इसी सफ़र में जिसका नाम है सुप्रभात।

हाँ, मुझे तो लगता है ना कि जो भी गाने हम सुनते हैं उसमें कितनी प्यारी प्यारी बातें होती हैं, कितना कुछ सुंदर लिख दिया गया है कि मन गाए क्यों, अब ये मन गाता है, गुनगुनाता है तो कितना अच्छा लगता है। आप भी कोई गीत जो आपको बेहद पसंद है उसको गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, आपको अच्छा लगेगा। और हाँ, हैप्पी मूड के लिए ना हैप्पी सॉन्ग चुनना चाहिए, वो नहीं कि आपने सुन लिया और चुन भी लिया कोई सैड सॉन्ग और फिर मन वैसे ही उदास है। और ये उदास उदास रहना ना अच्छी बात नहीं होती। उदास जो रहता है, जो ज़्यादा ऐसे तनाव में रहता है, जो हमेशा चिंता में रहता है, ऐसे लोगों से भी लोग भागते हैं, है ना? आप उनमें से तो नहीं है कि भागते हैं, मैं वैसे अपने बारे में सोच रही थी, पर ज़्यादा नहीं सोचते हैं, है ना? अभी आपसे बात करते हैं, चिंतन बाद में करेंगे, अभी चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है? तो जो खुश लोग रहते हैं ना, उनको देखकर आपको कितना अच्छा लगता है ना, आपको लगता है हाँ ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे गाते गुनगुनाते हंसते मुस्कुराते हुए रहना चाहिए। तो ऐसा सोचते हैं ना अगर, तो कर लेना चाहिए, ठीक है? ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। सोचते सोचते ज़िंदगी का ये जो सफ़र है वो यूं ही बीते जा रहा है, इसलिए जो दिल में आता है तो ज़रूर कीजिए, और ज़्यादा ना किसी को परेशान कीजिए और ना ही खुद परेशान हो जाइए। और बात कर रहे हैं कि सहज होकर अगर जीवन में जीते हैं तो जीवन कितना सुंदर है। चीज़ों को वैसे ही स्वीकार करना जैसे वे वो हैं, और ख़ुद पर दूसरों पर ज़्यादा दबाव न डालना, तो कितना अच्छा है। और कितनी अच्छी बात है कि लोग भी आपसे जुड़ेंगे, क्योंकि आप लोगों को वैसे ही स्वीकार कर रही हैं जैसे वो हैं, और आप उन्हें बदलना नहीं चाहते, तो इससे मन शांत होता है और आप तनाव से बहुत ही दूर रहते हैं, तो आपका तनाव भी कम हो जाता है। तो कुछ कुछ ऐसी ही बातें हैं जो आप अगर जीवन में अपनाएं तो सहज होना सीख सकते हैं। और अगर आप योग करते हैं, ध्यान करते हैं, तो योग भी आपको उस ओर ले जाता है, या फिर आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि जब आप फिजिकली फिट होते हैं तो आप मेंटली साउंड होते हैं, और इससे आप बेहतर निर्णय ले पाते हैं और ख़ुद को शांत रखना, सहज रखना सीख पाते हैं।

मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

जी हाँ, ये है आकाशवाणी रेनबो और आप सुन रहे हैं सुप्रभात। और हमने बात की कि जीवन में सहज होना एक कला है जो हमें तनाव से मुक्त रखती है और हर पल को उसकी संपूर्णता में स्वीकार करना सिखाती है। तो जब हम चीज़ों को ज़बरदस्ती कंट्रोल करना छोड़ देते हैं तो मन शांत हो जाता है और जीवन प्राकृतिक रूप से बहने लगता है। तो बस आपको यही ध्यान रखना है, तो उसे बिना किसी विरोध के क्यों ना अपना लें कि जैसी परिस्थिति है वैसे मन को मना लें, है ना? यही तो है, ये मन ही तो है जो इतनी सारी हलचल आपके अंदर पैदा किए होता है। इतना ज़्यादा शोर है इसका, लेकिन उससे बड़ी आपकी ताकत है सहज रहने की, इस शोर को दबाने की। यहाँ पर हम वो बात नहीं कर रहे हैं कि क्या गलत है क्या सही है, हम खुद को परेशान करके बहुत सारी चीज़ों को नहीं बदल सकते। हर चीज़ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, किसी और इंसान को नहीं बदल सकते, हम सिर्फ खुद को बेहतर बना सकते हैं और खुद के लिए बेहतर रास्ते चुन सकते हैं, है ना? तो उस ओर काम किया जा सकता है। और हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट हो ऐसा नहीं हो पाता, या तुरंत हो जाए ऐसा भी नहीं होता, चीज़ों को होने में वक्त लगता है। तो ये जो ज़िद होती है ना, उससे खुद को मुक्त करें, किसी भी चीज़ की ज़िद उसको हटा दें, सरलता को चुनें, जो मुश्किलें हैं दिखावे हैं उनसे आप दूर रहें, एक सुंदर साधारण जीवन जिए और सहज होकर जीना ज़रूरी है ये सीखें। खुश होकर जिए, खुल कर बात करें सबसे, तो देखिए कितना अच्छा लगता है। और ये जो जीवन है ना, एक गणित की तरह है, तो इसमें आप जो लोग आपको अच्छे लगते हैं उनको जोड़ते जाइए और जिनसे आपको लगता है नहीं बनते हैं तो उनको घटाते जाइए। और इन छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो अपने मस्तिष्क की जो इतनी क्षमता है उसको अपने अनुकूल बना लेंगे। तो यही है जीवन को एक सुंदर आनंदमय सुखमय बनाने का तरीका। विनम्रता के साथ आप अपने जीवन में निखार ला सकते हैं, सहज होकर अपने जीवन में बहुत सारी खुशियां ला सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो के इसी सफर में। सुप्रभात में बस इतना ही, लेकिन आकाशवाणी रेनबो के सफर में कौन कौन से कार्यक्रम आप सुनेंगे वो बिल्कुल मैं आपको बता देती हूँ। कुछ ही देर में आप सुनेंगे गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, और इस कार्यक्रम में आपके साथ जुड़ेंगी बबीता रावत, और उसके दूसरे सेगमेंट में एक बार फिर मैं आपके साथ जुड़ूंगी, मैं हूँ आपके साथ नुपुर कुलश्रेष्ठ, और उसके बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम दिल के तराने गाने नए पुराने 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। इस कार्यक्रम में भी आपके साथ होंगी बबीता रावत, और फिर समय है मैशलेस म्यूजिक आर का, इसमें आपके साथ होंगे आशीष अब्राहम, और बॉलीवुड ट्रेल सुनेंगे आप 11:02 से लेकर 12 बजे तक रंजन अर्नेजा के साथ, और प्लेट कूल में एक बार फिर आपके साथ जुड़ेंगे आशीष अब्राहम, और उसके बाद समय रहेगा प्रोग्राम का जो कि है बिंदास बोल, और इसमें भी आपके साथ होंगे रंजन अर्नेजा, और उसके बाद 2 बजे से लेकर 3 बजे तक आप सुनेंगे कार्यक्रम आशियाना। सृजन राजपूत होंगी इस कार्यक्रम में आपके साथ। 3 बजे से लेकर 4 बजे तक रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम सुनेंगे, आज का विषय होगा डिजीजेस इन रेनी सीजन, और इसके बाद समय है अल्फा जैन का, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 4 बजे से लेकर 5 बजे तक। सृजन राजपूत होंगी इस कार्यक्रम में आपके साथ। एक बार फिर आपके साथ जुड़ेंगी शैली भाषांजलि, प्रोग्राम सिटी लाइट्स में सिटी की खबरों के साथ वो आपके साथ जुड़ेंगी। सीमा सती आपके साथ होंगी प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स में। फ्राइडे फेस्टा सुनेंगे आप लिपिका दास के साथ 7 बजे से लेकर 8 बजे तक, और उसके बाद समय होगा म्यूजिक मस्ती का, इसमें भी आपके साथ होंगी सीमा सती, और उसके बाद आपके साथ जुड़ेंगे आपकी याद आती रही में विकास कौशिक, और उसके बाद वीकेंडर में आपके साथ होंगी लिपिका दास, और फिर आप सुनेंगे रंगे महफिल, और विकास कौशिक ही होंगे आपके साथ इस सफर में। तो मेरा साथ आपके साथ अभी बस इतना ही, जुड़ रही हमारे साथ, मुलाकात का जो सिलसिला है वो यूँ जारी रहेगा, मेरे बाद बबीता, बबीता के बाद मैं, और फिर ये सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा। मुझे अभी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।

नमस्कार, अब आप सुनेंगे एफएम रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। जापान के रक्षा मंत्री

2.0 कोई जूमी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। पुणे में आज ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 12वीं बैठक होगी। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इसकी अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ और लद्दाख में स्थापित करने को मंजूरी दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने देश में छात्र प्रदर्शन के दौरान हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने पर बैठक की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कहा है कि उत्तर की चुनौती प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। NTA ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज कर दिया है। झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड लोक सेवा आयोग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के राज्य सरकार के निर्णय पर रोक लगाई। सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात को मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को वर्ष 2047 तक समावेशी और विश्वस्तरीय शहर बनाने के लिए मास्टर प्लान जारी किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मूसलाधार वर्षा का अनुमान। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना चीन की लियांग वेन केन और वांग चांग से होगा। महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद्र की जोड़ी चीन की जियाइन फैन और झांगशु शियान के साथ खेलेगी। और महिला हॉकी विश्व कप में भारत ने इंग्लैंड के साथ ड्रॉ खेलकर दूसरे दौर में जगह बनाई। आज भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड्स से होगा। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप और मैं हूं बबीता रावत आपके साथ और बहुत सारी बातें होंगी आज प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में, क्योंकि बहुत सारी बातें इसलिए क्योंकि आज जब दिन की शुरुआत हुई है तो फिर कुछ अच्छी अच्छी बातों से, नई नई बातों से और इतिहास के झरोकों से सब कुछ समेट कर लाते हैं हम इस प्रोग्राम में और बातें होती हैं इन्हीं सबसे रिलेटेड। तो सुनते रहिए मेरे साथ आकाशवाणी रेनबो, जुड़े रहिए दिल से दिल तक।

गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर सुन रहे हैं। खूबसूरत गाने के साथ शुरुआत हो चुकी है इस प्रोग्राम की और आज का दिन है खास। 21 अगस्त 2026 शुक्रवार का दिन, सक्षम वत 1948, विक्रम संवत 2082, श्रावण मास, शुक्ल पक्ष नवमी तिथि। रात भाई जो नवमी तिथि है वो रात के 11:26 तक रहेगी और उसके बाद दशमी तिथि लग जाएगी। और आज सुबह सुबह 5:54 पर सूरज ने अपनी रोशनी बिखेर दी और 6:55 पे इस दिन को गुड बाय करके रात्रि में आपके विश्राम करने का समय बताते हुए आपको अगले दिन की मुलाकात के लिए आगाह करेगा। और टेम्परेचर की बात करें तो आज जब मैं मॉर्निंग में आ रही थी तो आज मुझे ऐसा क्यों लगा कि शायद धीरे धीरे जो ये जो समय है ना वो रातें अपनी जो है समय को ज़्यादा ले रही है और जो दिन है वो थोड़े थोड़े छोटे हो रहे हैं। हाँ भाई ऐसा ही कुछ हो रहा है। अब पल पल जो है जो दिन है छोटे होते जा रहे हैं और रातें थोड़ी थोड़ी थोड़ी करके लंबी होती जा रही हैं। और टेम्परेचर भी आज का थोड़ा सा मुझे लग रहा था ठंडा ठंडा सा लगा मॉर्निंग के टाइम पे, लेकिन फिर भी मिनिमम टेम्परेचर 28 डिग्री है और मैक्सिमम टेम्परेचर 35 डिग्री रहेगा आज का। और ह्यूमिडिटी की बात कहें तो 66% है और बादलों के आना जाना आसमान में यूं ही लगा रहेगा। मौसम बताता रहेगा कि अभी बारिश का मौसम गया नहीं है, आने वाला है। थोड़ा बहुत जो बचा कुचा छींटे या बौछारें हैं वो दिल्ली एनसीआर में पड़ सकती हैं कल और परसों के समय, और हो सकता है आज रात में या आज दिन में भी कहीं ना कहीं ये बौछारें पड़े। तो भाई मौसम तो हाल बहुत अच्छा है और हम चाहते हैं कि इस मौसम के साथ हम इंजॉय करते रहे। तो चलिए इंजॉय करने के लिए आपके लिए ये प्यारा सा सॉन्ग।

जब दिन की शुरुआत आप लोगों से मिलने की होती है ना, तो दिन मेरा बहुत अच्छा बन जाता है। और ख़ास तौर से जब गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर प्रोग्राम हो ना, तो यहाँ पर तो जानकारी का भंडार होता है। और ऐसे में हम आप तक जो जानकारी साझा करते हैं, उससे हमारी भी जानकारी तो बढ़ती ही बढ़ती है ना। और देखिए ना, जब जानकारी की बात आती है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं लाइफ में जो हिस्ट्री बन जाती हैं। जी हाँ, इतिहास

उन पन्नों को हम यहाँ पर वापस से एक बार पढ़ते हैं, दोहराते हैं और याद करते हैं कि आखिर जो पीछे गया है समय, उसमें क्या क्या हुआ था, ऐसी कौन सी घटनाएं हुई जो आने वाले समय तक हमें याद हैं और हमें उन जो इतिहास की जो चीज़ें हैं उनसे कुछ सबक मिलता है और साथ ही साथ कुछ इंस्पिरेशन भी मिलती है, साथ ही साथ बहुत कुछ जानने को मिलता है। तो चलिए उन्हीं पन्नों को हम पलटते हैं और बताते हैं आज आपको आज का इतिहास। सत्रह सौ नब्बे में जनरल मेडोस के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने डिंडुग तमिलनाडु पर कब्जा किया। 1972 में वन्य जीव और वनस्पति के अनेक प्रजातियों को बचाने के लिए भारतीय संसद में आज ही के दिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। और 2008 में मून मिशन पर भारत ने नासा से हाथ मिलाया। तो ये वो घटनाएं हैं जो पन्नों पर दर्ज हो गई और कई ऐसी घटनाएं हैं जो पन्नों पर दर्ज नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी मस्तिष्क में अभी भी चल रही हैं। लेकिन क्या करें, बस ये तो समय है, निकलता जाएगा और समय यूं ही निकलता जा रहा है। अभी फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, और भी बातें हैं हमारे पास, सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो।

0: स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
3: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
4: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
4: म्यूजिक मस्ती।
8: हिमालय की गोद से लेकर
9: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
8: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
9: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
8: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
9: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
8: तो सुनना ना भूलें
9: रेनबो डेस्टिनेशंस
8: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर और मैं हूं बबीता रावत आपके साथ। और आज है 21 अगस्त और 21 अगस्त को बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेलिब्रेट की जाती हैं, मनाई जाती हैं। और ख़ास तौर से अगर बात की जाए आज की, तो आज है वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे। जी हाँ, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस है आज। और आज के दिन जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनके अमूल्य योगदान और उनके अनुभवों को सम्मान देने के लिए, जो वृद्धावस्था से जुड़ी उनकी समस्याएँ हैं, जैसे कि अकेलापन, स्वास्थ्य देखभाल और दुर्व्यवहार, इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आज का दिन पूरी तरह से समर्पित है। यूनाइटेड नेशन ने 1990 में 21 अगस्त को वर्ल्ड सीनियर सिटीजन मनाने का बनाया था, घोषणा की थी। और देखिए ना, आज के समय में, आज के दौर में, जब हम सारे के सारे वर्किंग हैं और साथ ही साथ बहुत बिजी लाइफ हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपने बुज़ुर्गों की छांव वो एहसास दे जाती है, जब हमें ये लगता है कि हाँ, हमें थोड़ा सा थमना चाहिए, इनके साथ वक्त बिताना चाहिए। और उनके दो शब्द भी हमारे कहीं ना

बुजुर्ग होते हैं उनका रहना बहुत जरूरी होता है। कभी भी आप जाए ना और अपने घर में देखें कि कोई बड़ा है आपके घर में, तो वो घर एकदम भरा पूरा लगता है और ऐसा लगता है कि हमेशा आपके लिए वो दरवाजे खुले हुए हैं। आप हमेशा कभी भी जब आपका मन होता है आप उन दरवाजों के अंदर जा करके एक सुकून सा मिलता है आपको। लेकिन जब कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि हमारे बड़े बूढ़े हमारे साथ नहीं होते, तो घर कहीं ना कहीं बहुत खाली खाली सा लगता है। उनके बगैर जो जिंदगी है थोड़ी अधूरी सी लगती है। तो मुझे लगता है कि बुजुर्गों का हमारा साथ होना बहुत ज़रूरी है हर तरह से, क्योंकि वो हमें अच्छा रास्ता दिखाते हैं। ज़िंदगी के कई ऐसे पहलू हैं जिनको से वो हमें रूबरू कराते हैं, और कई बार वो हमें समझाते भी हैं, डांटते भी हैं और प्यार भी करते हैं। लेकिन कभी कभी उम्र का एक फासला होता है, एक उम्र के बाद हाँ हो सकता है कि उनके अंदर सहन शक्ति ना हो और वो आपकी बातों को आपके नज़रिए से ना समझ पाए, लेकिन फिर भी वो आपका कभी बुरा नहीं चाहेंगे। तो मैं तो ये मानती हूँ कि बस हमारे घर में जितने भी बुज़ुर्ग या बड़े व्यक्ति हैं उनका हमें सम्मान करना चाहिए, उनका मान रखना चाहिए और एक ऐसा कंफर्ट जोन उन्हें देना चाहिए जिससे वो हमारे साथ खुशी खुशी रह सके। अभी हम ये गाना सुनते हैं और इन्जॉय करते हैं।

पीड़ितों के स्मरण और श्रद्धांजलि का आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। आज 21 अगस्त को ये मनाया जाता है। 2017 में यूएन के द्वारा इस दिन को मनाए जाने की शुरुआत हुई और इसका मुख्य उद्देश्य आतंकवाद से पीड़ित या प्रभावित लोगों को याद कर उन्हें सम्मानित करना तथा मानव अधिकारों की रक्षा करना है। समाज में शांति, एकजुटता और मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और इसके लिए ये दिन पूरी तरह समर्पित है। आतंकवाद केवल व्यक्तियों ही नहीं बल्कि पूरे समाज में एक गहरा घाव दे जाता है और इस दिन पीड़ितों की जो आवाज़ है उसे सुनकर आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता को मजबूती देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। तो चलिए हम सभी एक इनिशिएशन लेते हैं कि हम भी आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होंगे और इसका सामना करेंगे और साथ ही साथ मजबूती से हम इसे अपने देश में कभी भी पनपने नहीं देंगे।

कुछ जंग होती है जो अपने आप से होती है और कुछ ऐसी जंग होती है जो अनदेखी, अनसुलझी और अनजानी सी होती है। और ऐसी ही जंग होती है आतंकवाद की। जी हाँ, आतंकवाद के

दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में चल रही विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में रोमांच लगातार परवान चढ़ रहा है। कोर्ट पर भारतीय खिलाड़ियों की जुनून, दर्शक दीर्घाओं में लहराते तिरंगे और शानदार रैलियों पर दर्शकों की तालियों ने भारत की मेजबानी को और भी खास बना दिया है। बेशक 5 बार की विश्व चैंपियनशिप की मेडलिस्ट पीवी सिंधु और छुपेरुस्तम साबित हो रहे आयुष शेट्टी की चुनौती भले ही थम गई हो, लेकिन भारतीय बैडमिंटन की तस्वीर अब भी उम्मीदों से भरी है। युगल में भारतीय खिलाड़ी अब भी पदक की रेस में डटे हैं। दिल्ली की धरती पर अपने ही दर्शकों के सामने अब भारतीय शटलरों के पास हार की निराशा को पीछे छोड़कर नए जोश के साथ आगे बढ़ने का मौका है, क्योंकि चैंपियनशिप अभी बाकी है और भारत की उम्मीदें भी। विश्व चैंपियनशिप के चौथे दिन महिला युगल में त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद का शानदार अभियान क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गया। त्रिशा गायत्री ने प्री क्वार्टर में आज जापान की रेन इवांगा और काई नाका निशी की जोड़ी को 21-16, 21-12 से हराया। पहले गेम में भारतीय जोड़ी ने 21-16 से जीत हासिल की। दमदार स्मैश और बेहतरीन क्रॉस कोर्ट रिटर्न से दबदबा बनाए रखा। जापानी

0: जोड़ी दूसरे गेम में बिल्कुल रिदम में नहीं दिखी, ज्यादातर शॉट गैलरी और बैक लाइन के बाहर गिरी। हालांकि त्रिशा गायत्री ने नेट पर कई अंक गंवाए भी। गायत्री ने माना मुकाबला काफी कड़ा था, शुरुआत में शॉट सही नहीं पड़ रहे थे।
1: इनिशियली was a pretty neck to neck, but then I think we looked to our coaches and they gave us some tips. So I think we were attacking a lot more in the second half of the first game and the second set. Yeah, it worked in our favor. दो तीन पॉइंट के बाद समझ आया कैसे खेलना है।
0: पहले गेम के बाद दूसरा गेम भारतीय जोड़ी के लिए आसान रहा। त्रिशा ने कहा कोच के गुरुमंत्र बेहद काम आए।
1: They gave us a few tips that were really helpful mentally and physically. We implemented it. He just told us to stay calm, focus on attack.
2: I think we just want to take it more focused and everything. We came here with a goal.
0: आपसी तालमेल के बारे में त्रिशा ने कहा कि अपनी कमजोरी और ताकत को बेहतर जानते हैं।
2: The rotation and the attacking, it's one of our strength. While playing also, it's really working. When we are leading also, like a little bit calm, because at this level, we need to be really calm and just be in that moment. Every point is matters.
0: महिला एकल में भारतीय स्टार शटलर पीवी सिंधु का सफर प्री क्वार्टर में चीन की वेंग जी के सामने थम जरूर गया, लेकिन रैंकिंग में अपने से बेहतर और उम्र में अपने से 5 साल युवा चीनी खिलाड़ी के खिलाफ सिंधु ने दिखा दिया कि 31 साल की उम्र में भी उनमें पुराना जोश और दमखम अभी बाकी है। सिंधु को 3 गेमों के कड़े मुकाबले में 21-11, 15-21, 21-17 से हार का सामना करना पड़ा। पहले गेम की शुरुआत में सिंधु पिछड़ रही थी, लेकिन रफ्ता उन्होंने रफ्तार पकड़ ली और स्कोर 7-7 कर दिया। लेकिन चीनी खिलाड़ी के तर्कश में विविधता भरे शॉट थे। पहला गेम वेंग जी ने 21-11 से जीत लिया। घरेलू दर्शकों के समर्थन ने सिंधु में नई ऊर्जा भर दी। दूसरे गेम में सिंधु का प्रभाव पूरे उफान पर था। उन्होंने 3-0 की बढ़त ली और फिर उसे 7-2 कर दिया। हालांकि वेंग ने वापसी की और स्कोर 15-15 की बराबरी पर ले आई, लेकिन सिंधु उस मिट्टी की नहीं बनी जो आसानी से हार मान ले। दूसरा गेम 21-15 से जीतकर उन्होंने मैच में वापसी की। निर्णायक गेम में कांटे की टक्कर हुई, 5 बार तो स्कोर बराबरी पर आ टंगा। पहले 9-9, फिर 13-13, फिर 15-15, 16-16 और 17-17। कोई हार मानने को तैयार नहीं था, लेकिन ऐसे में वेंग की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया। लेकिन मेडिकल ब्रेक के बाद वे फिर कोर्ट पर उतरी, लेकिन जल्द ही फिर इंजरी की शिकायत की, पर दर्द के बावजूद डटे रहने का फैसला किया और अंतिम 2 अंक लेने के बाद जीत हासिल कर कोर्ट पर लेट गईं। सिंधु ने माना मुकाबला बेहद कड़ा था, लेकिन उन्हें और संयम की जरूरत थी।
3: थोड़ा और पेशेंस रहना था मेरे साइड से। बहुत अच्छा चल रहा था गेम 1, गेम 2 और गेम 3 भी बहुत इक्वल चल रहा था। इन द ओवरऑल गेम लाइक स्पेशली इन द एंड, बिकॉज आई कांट सी एनी लूप होल्स इन बिटवीन द पॉइंट्स, द लास्ट 3 पॉइंट्स जस्ट चेंज द गेम इज व्हाट आई फेल्ट। आई शुड हैव बीन लिटिल पेशेंट, दैट्स व्हाट आई कैन सी फ्रॉम टुडेस गेम। एंड व्हेन यू लूज यू नीड टू डील विद इट एंड बाउंस बैक स्ट्रॉन्गर फ्रॉम योर मिस्टेक्स।
0: पुरुष युगल में सात्विक रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी को प्री क्वार्टर में उतरने का मौका मिल ही गया। पहले दौर में उन्हें बाई मिला था और दूसरे दौर में स्कॉटलैंड की जोड़ी चोट के कारण हट गई थी। विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीत चुके सात्विक चिराग ने मलेशिया के जुनेदी आरिफ और येप रॉय किंग को 3 गेम के मुकाबले में 21-23, 21-19, 21-17 से हराया। रोमांच के शिखर तक पहुंचे मुकाबले के बाद दर्शकों का जोश पूरे आईजी स्टेडियम में गूंज उठा। सात्विक चिराग ने रोमांचक जीत के बाद अपनी प्रतिक्रिया में कहा,
4: जब भी हम कोर्ट पे जाने वाले थे पक्का सोचा था कि ऐसा होने वाला है, टफ होगा, इट वोंट बी इजी, थोड़ा कोर्ट कंडीशंस भी डिफरेंट रहेगा। वी वर रेडी फॉर इट, वी वांट प्लेइंग एट आवर बेस्ट, वी हैव टू प्ले द राइट काइंड ऑफ गेम, बिकॉज इफ यू कीप इट सिंपल इनसाइड द कोर्ट पॉइंट्स आएंगे। वी न्यू लाइक वी वांट प्लेइंग एट आवर बेस्ट, बट देयर हैव बीन सिचुएशंस इन द पास्ट वेयर वी हैव नॉट प्लेड एट आवर बेस्ट, बट वी हैव गॉट बैक एंड आई थिंक वी जस्ट try to tell each other that eventually things will turn into your favor, just keep it simple, keep it inside the court and don't really complicate things.
0: भारतीय खिलाड़ियों के अन्य मुकाबलों की बात करें तो युवा शटलर आयुष शेट्टी का स्वप्निल सफर प्री क्वार्टर में इंडोनेशिया के 11वीं वरीयता प्राप्त अल्वी फरान के सामने 21-19, 21-11 से थम गया। आयुष ने शुरुआत में 3 अंक बटोरकर अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद फरहान ने वापसी की और स्कोर 7-7 पर ले आए। दोनों खिलाड़ियों के बीच 1-1 अंक बटोरने को लेकर कड़ी जद्दोजहद चली। मैच पेंडुलम की तरह कभी आयुष और कभी फरहान के पाले में झूलता नजर आ रहा था। अंत में इंडोनेशियाई खिलाड़ी ने पहला गेम 21-19 से जीत लिया। दूसरे गेम में आयुष फरहान के बीच फिर कड़ी टक्कर हुई, लेकिन फरहान ने अंततः 21-11 के साथ दूसरा गेम और मैच अपने नाम कर लिया। आयुष ने माना कि पहले गेम में मौके थे, लेकिन वह इसे भुना नहीं पाए।
5: He was playing really sharp today. I had my chances in the first game, couldn't convert it. And I think second game he was playing with more confidence and he was putting a lot of pressure from the net. I think that made the difference. Definitely he was not giving much chance, but I think when I had my chances, I was not

0: really sharp getting the lines. That made a lot of difference, I would say. He played a much better badminton and he was a better man.
1: आयुष के खिलाफ जीत हासिल करने वाले फरहान ने कहा,
2: I know Ayush have a lot of pressure because he play in a home show, right? That's why I took that for my motivation and I'm just gonna be like, when I was leading, I'm just gonna be present and just think that only one by one. So I think that's the main point.
1: कहते हैं खेल में कोई हारता नहीं है, या तो जीतता है या सीखता है। विश्व चैंपियनशिप के मंच पर आयुष शेट्टी की तीसरे दौर में हार के साथ चुनौती जरूर टूट गई, लेकिन अपने पहले ही मुकाबले में दुनिया के नंबर एक शी युकी को हराने वाले भारत के इस युवा खिलाड़ी ने साबित कर दिया प्रतिद्वंदियों को उन्हें हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। मिश्रित युगल में ध्रुव कपिला और तनिषा की जोड़ी को चीन की दुनिया की छठे नंबर की जोड़ी गुआ चीन वा और चैन फेंग ने 21-16 21-5 से हरा दिया। इस जोड़ी ने माना कि वे चीनी जोड़ी की तेजी का सही ढंग से सामना नहीं कर पाए।
3: हमारे हाथ में बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं था, उन्होंने पूरा मैच काफी अच्छे से कंट्रोल किया था। यही कहना चाहूंगी, हमारे साइड से बहुत गलतियां हुई है, उनको काफी इजी पॉइंट्स मिल गए थे, हमने बहुत ज्यादा मिस्टेक्स किया, उसकी वजह से मैच ऐसा लगा कि उन्होंने बहुत इजीली मैच जीते हैं।
1: तनिषा ने कहा कि वे अपनी गलतियों पर काम करेंगे और मजबूत वापसी करेंगे।
3: इट्स सर्टेनली वेरी डिसअपॉइंटिंग दैट वी आर आउट ऑफ द वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, बट आई थिंक आई जस्ट लाइक टू टेल माय सेल्फ एंड ध्रुव दैट दिस इज नॉट द लास्ट मैच एंड दैट वी हैव सो मेनी मोर मैचेस टू गो। इट्स जस्ट एन एक्सपीरियंस, इट्स डिसअपॉइंटिंग, बट वी हैव मच बिगर इवेंट्स कमिंग अप। द ओनली थिंग आई कैन टेक बैक फ्रॉम दिस मैच इज अ लॉट ऑफ लर्निंग। वी गॉट टू गो बैक, वॉच आवर मैचेस, लर्न अ लॉट फ्रॉम इट एंड प्रिपेयर बेटर, कम बैक बेटर, एंड आई एम श्योर देयर बी अ विन इन आवर बैग।
1: भारत के अलावा अन्य मुकाबलों की बात करें तो महिला एकल में दुनिया की नंबर एक दक्षिण कोरिया की एन से यंग ने डेनमार्क की मिया बिलिच फेल्टेट को 21-16 21-10 से हराया। पुरुष एकल में 2021 के विश्व चैंपियन सिंगापुर के लोहो किन यू को कनाडा के विक्टर लाई ने 22-20 21-18 से पराजित कर दिया। पिछली विश्व चैंपियनशिप में विक्टर ने लोहो किन को हराकर ही कांस्य पदक जीता था। पुरुष युगल में दुनिया की नंबर एक और पिछली चैंपियन जोड़ी दक्षिण कोरिया के किम हॉन हो और सो सुयुंग जो ने इंग्लैंड के बेन लेन और सीएन वेंडी को 21-13 21-16 से पराजित कर दिया। महिला एकल में पूर्व चैंपियन जापान की नोजोमी ओकुहारा ने भारतीय मूल की अमेरिकी खिलाड़ी इशिका जायसवाल को 21-11 13-21 21-12 से हरा दिया। इसके अलावा चौथे दिन डेनमार्क के रास्मस गेमके ने तीसरी वरीयता के जोनाथन क्रिस्टी को 11-21 21-13 21-18 से हराकर उलटफेर कर दिया। अब पांचवें दिन सात्विक चिराग का सामना क्वार्टर फाइनल में चीन के लियांग वेई कैंग और वांग चेंग से होगा, जबकि त्रिशा और गायत्री की भारतीय जोड़ी चीन की जिया यीफेन और झांगशू जियांस के साथ खेलेगी। महिला एकल में दक्षिण कोरिया की एन शे यंग के सामने चीन की हान यूई होंगी और पुरुष एकल में एंडरसन का सामना जापान के कोदाई नाराओका से होगा। भारत की पदक की उम्मीदें अब युगल मुकाबलों पर है, देखते हैं अपनी मेजबानी में पदक के लिए जुगलबंदी कितनी कारगर रहती है। प्रोड्यूसर शाहनवाज खान, एडिटर वंदना भारद्वाज और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से मोहम्मद शाहिद आजमी की रिपोर्ट के साथ मैं नवीन कुमार शर्मा।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री।

जैसे ये गाना इस माहौल को बिल्कुल कंप्लीट कर रहा है, उसी तरीके से स्पोर्ट्स भी आपकी लाइफ में एक ऐसा ही इंथुजियाज्म क्रिएट कर रहा है। और स्पोर्ट्स की बातें ना हो गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में तो फिर क्या बात है भाई, बात तो होनी ही चाहिए। और आपको बताते चलें कि स्पोर्ट्स में हलचल हो क्या रही है, और आपने बैडमिंटन चैम्पियनशिप चल रही है उसका तो बिल्कुल सुन लिया है, और अब आगे आपको और भी चीज़ें हैं और भी स्पोर्ट्स हैं उनके बारे में बताते हैं। दलीप ट्रॉफी 2026 के साथ भारत के घरेलू क्रिकेट सीजन की शुरुआत 23 अगस्त से हो

होगी और टूर्नामेंट में 6 जोन हिस्सा लेंगे। पहले दिन 2 क्वार्टर फाइनल खेले जाएंगे, जबकि जो पिछले साल की चैंपियन और थी सेंट्रल जोन और सब विनर थी साउथ जोन, ये सीधे सेमीफाइनल में उतरेंगे। 6 सितंबर को दलीप ट्रॉफी की फाइनल मैच को देखने को आपको मिलेगा। और अब जब क्रिकेट की बात हो रही है तो भारत ने गाले में श्रीलंका को पहले टेस्ट में 165 रन से हरा दिया और शानदार जीत हासिल की। लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी, 5 में से 4 दिन तो बारिश ही होती रही, जैसे तैसे करके जो ये मैच है वो फाइनल हुआ और भारत ने एक अच्छी खासी लंबी मतलब स्कोर से जीत हासिल की। और जब बारिश होने के बावजूद भी भारत ने जीत ली तो इसकी सराहना तो किसी न किसी की बनती है ना। तो हाँ भाई, ऋषभ पंत ने ग्राउंड्समैन और स्पोर्ट्स स्टाफ के सहयोग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कहा है और उनकी मेहनत को दिल से सराहा है। ऑफ कोर्स अगर ऐसा ना होता तो भारत इतनी अच्छी जीत हासिल ना कर पाती। अब हॉकी की बात की जाए, कल FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2026 की सीरीज में भारत की महिला टीम का मुकाबला इंग्लैंड से हुआ और ये जो मैच था ये कल ड्रॉ रहा। भाई समाप्त तो ड्रॉ पर हुआ, लेकिन साथ ही आपको बताते चले कि भारत की जो महिला टीम है वो दूसरे दौर में पहुंच गई है। इस वक्त अपनी पूल में यानी कि डी पूल में वो दूसरे नंबर की सबसे ज़्यादा स्कोरर है और इसकी वजह से वो अगले पायदान में पहुँच चुकी है। और अब भारत जो है सेमीफाइनल की तो उम्मीद उसकी बढ़ी हुई है, बनी हुई है। और जैसे ही ये पायदान उसकी क्लियर होती है सेमीफाइनल में मकाम जरूर उनका हासिल होगा। उम्मीदें करनी चाहिए, उम्मीदों पर ही दुनिया कायम है और उम्मीद ही है जो इंसान को आगे बढ़ाती है। तो स्पोर्ट्स तो एक ऐसी उम्मीद है, हमारी मेहनत, हमारी सफलता और हमारी दुआएं, ये सारी चीज़ें जो हैं भारत की जो स्पोर्ट्स टीम है उनको आगे लेके जा सकती हैं। पूरी मेहनत के साथ हमारे खिलाड़ी मजबूत बने हुए हैं FIH हॉकी वर्ल्ड कप में और हम दुआ यही करते हैं कि कोई ना कोई जो सफलता है उनके हाथ ज़रूर लगे। अभी एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, मैं हूं बबीता रावत। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। और जब बात होती है आज के दिन को की, तो आज के दिन हम उन लोगों को भी याद करते हैं जिन्होंने भारत के नाम के साथ अपने नाम को जोड़ करके उसे ऊंची बुलंदियों पर पहुंचाया। और इनमें से ही एक है इस्मत चुगताई, लिहाफ, टेढ़ी लकीर, एक बात, कलियां, जंगली कबूतर, दिल की दुनिया, बहरूप नगर, बहुत सी ऐसी रचनाएं उन्होंने लिखी हैं। और इस्मत की आज जयंती है। और कहानीकार के रूप में विख्यात इस्मत चुगताई महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर अपनी रचनाओं से बेबाकी से पुरुष प्रधान समाज में उन्होंने मुद्दों को चुटकीले अंदाज में पेश किया था। और ये बड़ा जोखिम उठाया था। 31 अगस्त 2015 में बदायूं उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। और इस्मत चुगताई ने ठेठ मुहावरेदार गंगा जमुनी भाषा का इस्तेमाल किया, जिसे हिंदी उर्दू की सीमाओं में कैद नहीं किया जा सकता। गालिब अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड, नेहरू अवार्ड, इकबाल अवार्ड उनसे उन्हें सम्मानित किया गया। और उनकी जो लेखनी है बिल्कुल अलग तरीके की थी और महिला प्रधान थी, और कहीं ना कहीं आज के समाज को वो कहीं प्रदर्शित भी करती रही है। तो उन्हें करते हैं हम नमन। और ये गाना

ये जो समय है ना अगस्त का महीना, ये स्वतंत्रता का एक उत्सव मनाने के लिए है। और जब 1947 में इस उत्सव को मनाया जा रहा था, 15 अगस्त 1947 को देश की स्वतंत्रता का ऐतिहासिक अवसर, जी हाँ, इस ऐतिहासिक अवसर पर जब सुबह सुबह लाल किले में अपनी शहनाई के सुरों से के जरिए देश का स्वागत करा था, वो थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। जी हाँ, आज उनकी पुण्यतिथि है और भारत की विविध संस्कृति और विविध धर्मों का देश है। ऐसे में यहाँ ऐसे कई महान हस्तियों का जन्म हुआ, उनमें से एक जो है वो साझी संस्कृति और सशक्तता के प्रतीक है, उनका नाम है

उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, शहनाई वादक के तौर पर हम उन्हें जानते हैं और भारत रत्न तानसेन पुरस्कार जैसे सम्मान उन्हें मिले हैं। बहुत उत्कृष्ट योगदान रहा है उनका भारत के प्रति और कहीं ना कहीं हम उनके ऋणी हैं, क्योंकि ऐसे जो उस्ताद होते हैं वो शायद मुझे लगता है कि बहुत कम ही होते हैं जो जन्म लेते हैं, और भारत की धरती पर उनका जन्म एक बहुत बड़ी बात है और आज उन्हें हम नमन करते हैं। और उन्हीं का, जी हाँ, उन्हीं का एक गाना है, फिल्मों में वो बहुत कम ही किया है उन्होंने काम, और उन्हीं की एक फिल्म है गूंज उठी शहनाई, उसमें उनकी शहनाई की गूंज सुनाई देती है, तो आप उसे सुनिए। और अगले प्रोग्राम यानी कि गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का अगला सेगमेंट नुपुर लेकर आ चुकी हैं आपके लिए अगले घंटे में, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए आगे।

नमस्कार, आकाशवाणी रेनबो पर यह वक्त है मुख्य समाचार का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। पुणे में आज ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 12वीं बैठक होगी। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इसकी अध्यक्षता करेंगे। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत आज जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक शुरू होगी। दो दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ और लद्दाख में स्थापित करने को मंजूरी दी। सर्वोच्च न्यायालय ने देश में विद्यार्थी प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की जांच के लिए

5 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने पर बैठक की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा है कि उत्तर की चुनौती प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एनटीए ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज कर दिया है। झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड लोक सेवा आयोग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के राज्य सरकार के निर्णय पर रोक लगाई। सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात को मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को वर्ष 2047 तक समावेशी और विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए मास्टर प्लान जारी किया। ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिनों में 2 जहाजों का अपहरण किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना चीन की लियांग वे किंग और वांग चोंग से होगा। महिला डबल्स में थ्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी चीन की जिया यी फैन और झांगशू शियान के साथ खेलेंगी। और महिला हॉकी विश्व कप में भारत ने इंग्लैंड के साथ ड्रॉ खेलकर दूसरे दौर में जगह बनाई। आज भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। ये थे आकाशवाणी रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार।

हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? फिट एंड फाइन, हेल्दी एंड स्मार्ट। और जरूरी है रहना आपका स्मार्ट, क्योंकि आप ही तो हैं हमारे स्टार्स, और हमारे ये स्टार्स फिट एंड फाइन, हेल्दी एंड स्मार्ट रहे, बस यही दुआ रहती है। इसी दुआ के साथ स्वागत है आप सभी का गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर के दूसरे सेगमेंट में मैं हूँ आपके साथ नुपुर कुलश्रेष्ठ, और साथ ही साथ और भी बहुत सारी बातें हैं जो होंगी आपके साथ इसी सफर में जिसका नाम है आकाशवाणी रेडियो। तो जुड़ जाइए आप भी हमारे साथ, दिल से दिल तक का ये साथ है, तो दिल से दिल तक में होंगी बहुत सारी बातें, बस जुड़े रहना होगा। चाहे आप कोई भी काम करें, रेडियो का साथ तो हर वक्त आपके साथ होता है, और गाने हैं जो आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी लाते हैं, आपको रिवाइव कर देते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं। तो रिफ्रेश होने के लिए, रिवाइव होने के लिए आपका हमारे साथ यूं ही बने रहना बहुत ज़रूरी है।

आकाशवाणी रेनबो के सफर में है आप, मैं हूँ आपके साथ नूपुर कुलश्रेष्ठ, और सफर तो जारी है बिल्कुल आकाशवाणी रेनबो पर 102.6 पर हम आपके साथ जुड़े हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए बिल्कुल इसी तरीके से, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो आपके साथ हमें इस सफर साझा करनी है, तो बहुत कुछ आपसे कहना है, बिल्कुल बातें करते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि आपको ज़रूरी है बताना कि कैसा रहेगा मौसम का हाल, और मौसम

कि अगर हम बात करें तो ये जो बारिश है इसका आनंद हम ले रहे हैं, और छपाक वाली वो जो हरकत थी ना, जो हम करते थे जब छोटे थे तब, तो कि कहीं पानी भरा है तो बस छपाक किया और जो साथ में है उसे भिगो दिया। तो भीगने में तो आनंद आता है, लेकिन भीगने के बाद अपना पूरा ख्याल रखें कि घर जैसे ही पहुंचे अच्छे से शावर लें, कपड़े बदलें और अपने आप को और चीज़ों से बचा लें। जीवन में आनंद जो है वो नहीं ख़त्म होना चाहिए, उसका आनंद बना रहना चाहिए। लेकिन जीवन को कैसे हम खूबसूरत बनाए रखें, बीमारियों से बचे रहें, इसका पूरा ध्यान आपको रखना चाहिए। तो बारिश के इस मौसम में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पर तो हम बहुत सारी बातें करती ही हैं। बस बातें ना करें, उन बातों का ख्याल भी रखें, है ना? क्या खाना है, खुद को हाइड्रेटेड रखना है, मास्क लगाना है। अगर बाहर निकल रहे हैं, आपको लग रहा है कि कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, तो उससे अपने आप को पूरी तरीके से बचाना है, अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखना है। आप बहुत सारे जो बदलाव है उसको ला सकते हैं। फ्रेश फ्रूट्स खाइए, सब्जियां खाइए, और उसके बाद काढ़ा पीजिए अगर आपको लगता है कि गले में किसी भी तरह की कोई भी आपको समस्या हो रही है। तो हर समस्या से पहले समाधान पर जाइए ताकि आप बचे रहें हर तरह की बीमारी से। और आज कैसा रहने वाला है मौसम का हाल, ये भी बिल्कुल आपको बता देती हूँ। आज का जो अधिकतम तापमान रहेगा वो रहेगा 35 डिग्री सेल्सियस, और न्यूनतम रहेगा 28 डिग्री सेल्सियस। और साथ ही साथ दिन में हल्की बारिश बौछारें होने की संभावना है, और रात में बारिश की, तेज़ बारिश की संभावना बताई जा रही है। तो बिल्कुल ध्यान रखें, टाइम पर घर पहुँचें, आनंद लें हर मौसम का। और हर मौसम में हम आपके साथ जुड़े हैं, इसी तरीके से आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ।

वैसे मेट्रो में सफ़र करने का अपना ही एक अलग मज़ा है ना? और लाइफ लाइन है हमारी मेट्रो, आराम से हम पहुंच जाते हैं, सुकून के साथ पहुंच जाते हैं सफ़र में। और जब भी सफ़र करते हैं तो बहुत सारी बातें भी नोटिस होती हैं। कई बार क्या होता है कि लोग इतने लाउड होते हैं, अपनी बातें कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, भूल जाते हैं कि और भी लोग हैं। और कई बार आपको ना मतलब वो सीरियल्स डेली सोप देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप वहीं पर वो बहुत सारी बातें सुन सकते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जस्टिस की बातें भी वहाँ पे होने लग जाती हैं, कि जैसे सीट पर आप बैठे हैं और सामने कोई खड़ा हुआ है और जब आप उठेंगे तो उनको बैठना चाहिए, लेकिन कई बार आप क्या करते हैं, मतलब कायदे से, मतलब सोचिएगा जैसे आपके सामने कोई खड़ा है, हम वेट कर रहे होते हैं ना, अगर कोई उठेगा फिर हम बैठेंगे क्योंकि हम सामने खड़े हैं, है ना। तो ऐसा हुआ कि जो बैठी थी उन्होंने, जैसे ही वो सीट खाली हुई तो उनके अपनी फ्रेंड को सीट देने के लिए वो शिफ्ट हो गई, और शिफ्ट हो गई तो दूसरा जना बैठ गया वहाँ पे। उन्होंने बोला ये तो आपने गलत किया कि ऐसे तो नहीं करना चाहिए था, ये सीट पे मुझे बैठना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि हम तो बहुत देर से खड़े हैं। तो उन्होंने कहा लेकिन कायदे से तो मुझे बैठना चाहिए ना, तो मतलब चाहे आप कहीं से भी आ रहे हो, ऐसे ट्रैवल कर रहे हो, तो ऐसी ऐसी ना बहुत सारी बातें हो जाती हैं। फिर समझ लोग आसपास देखते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, और फिर सब अपनी अपनी बातें करते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप सोचते हैं कि कोई आपसे उम्र में बड़ा है और आपको लगता है कि उन्हें आपसे ज़्यादा ज़रूरत है बैठने की, तो आप उनको सीट दे देते हैं, लेकिन आप जब सीट दे देते हैं उसके बाद जब आपके साथ वाली सीट खाली होती है तो वो उनके साथ जो उनके बच्चे होते हैं या कोई भी होता है वो उनको ऑफ़र करते हैं। बल्कि ऐसा भी होना चाहिए कि आपने उनको सीट दी है और अगर उनका बच्चा और आप सेम उम्र के हैं तो आपको सीट दे देनी चाहिए। तो ये सब जो बातें हैं ना, थोड़ा सा अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो आपको भी समझना चाहिए। और हाँ, ये जो शिफ्ट होने वाला है ना, अपनी फ्रेंड को ऐसे बुला के बिठा लेते हैं और कई बार तो ऐसे बैग भी रख देते हैं, इतनी मतलब जल्दबाजी में ना, मतलब सबको ऐसा होता है कि मुझे सीट मिल जाए तो ऐसे बैग भी रख देते हैं कि अब ये सीट मेरी हो गई। तो आप भी तो वो नहीं है जो ऐसा करते हैं। और ये सारी तो बातें मेट्रो के अंदर होती रहती है, लेकिन जो मेट्रो से जब हम सफ़र करते हैं, कितना सुकून है, कितना टाइम पे हम पहुंच जाते हैं, और सच में वाकई ये लाइफ लाइन है, मेरे लिए तो रही है और मुझे लगता है कि आपके लिए भी बिल्कुल है। और मेट्रो में ट्रैवल करना, बिल्कुल आराम से आप पहुंच जाइए, और उसके बाद जो इतनी सारी बातें हैं ना, इतनी सारी बातें मतलब आपका मूड बिल्कुल चेंज कर देती हैं। सबके बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं और आपको ये भी समझ में आता है कि आप बहुत लकी हैं, बहुत चीज़ों से बचे हुए हैं। तो ये सफ़र यूं ही जारी है आपके साथ, आप जुड़ रही हैं हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो के सफ़र में, जिसका नाम है, जी हाँ, गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR।

0: जी हाँ, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जिंदगी के मायने बताता ये खूबसूरत गीत, जितने सुंदर बोल उतनी ही सुरीले अंदाज में मुकेश साहब ने इस गीत को गाया है और उनकी गायकी के हम सब दीवाने हैं। दर्द भरे नगमों का बादशाह उन्हें कहा जाता है और हमारे मुकेश चंद माथुर जी, हाँ, जिनको हम प्यार से मुकेश कहते हैं, मुकेश साहब हिंदी सिनेमा के सबसे महान और लोकप्रिय पार्श्व गायकों में जाने जाते हैं। और अगर आप भी उनकी इसी गायकी के अंदाज को एक बार फिर से जीना चाहते हैं, शाम का एक हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं, पहुंच सकते हैं मल्हार संगीत कला केंद्र और मुकेश स्मृति कला संगम की ओर से जो कार्यक्रम तुम जो हमारे मीत ना होते जिसका आयोजन किया जा रहा है, वहां पर क्या खास रहेगा। खास तो देखिए बहुत है, क्योंकि मुकेश साहब और उनके चाहने वाले अगर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं गीत, तो ये तो बहुत ही खास है। लेकिन और भी जुड़ी कुछ बातें हैं इस कार्यक्रम से और उनको जानने के लिए हम जुड़ते हैं प्रदीप शर्मा जी से, जो कि इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो हमारे साथ हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? हेलो जी सर, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो जी सर, आप हमें सुन पा रहे हैं? आपको हमारी आवाज़?
1: हेलो सर, मैं राजस्थान के झुंझुनू जिले से अरविंद कुमार बात कर रहा हूँ जी।
0: हेलो सर, आप हमें सुन पा रहे हैं? हम फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं और जानते हैं इस इवेंट के बारे में और बहुत सारी जानकारी उनसे हासिल करते हैं। आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए इसी सफर में और एक बहुत ही खूबसूरत सा जो गीत है मुकेश साहब की आवाज़ में, ये सुनते हैं और लौट कर आते हैं और जानकारी लेते हैं इस इवेंट के बारे में।

और इस खूबसूरत आवाज़ का आनंद आप भी लेना चाहते हैं तो बिल्कुल कहाँ आपको पहुँचना है और कहाँ जो उनके फैंस हैं वो पहुँच सकते हैं, बिल्कुल आपको बताते हैं, जुड़ते हैं प्रदीप शर्मा जी के साथ। हेलो हेलो हेलो बिल्कुल जानना चाहेंगे कि हम उनसे बिल्कुल कनेक्ट करना चाहते हैं और ये जो जानकारी है मैं चाहती हूँ कि वो आप तक पहुँचाएँ, आपको पूरी जानकारी दें और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ उनके साथ जुड़ने की। हेलो, तो किसी कारणवश हमारी उनसे बात नहीं हो पा रही है और ये जो कार्यक्रम है एक बार फिर से कोशिश करते हैं। हेलो हेलो हेलो, तो बिल्कुल मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो कार्यक्रम है तुम जो हमारे मीत ना होते, और इस कार्यक्रम में आप पहुँच सकते हैं। कई कलाकार आर्टिस्ट हैं जो मुकेश जी के जो गीत हैं वो आप तक पहुँचाएंगे अपनी आवाज़ में, और बहुत ही ये जो शाम है और भी खूबसूरत इस मायने में है क्योंकि मुकेश जी के जो नेफ्यू हैं, नीस हैं, वो भी इस शाम का हिस्सा बनेंगे। तो आप यहाँ पर बिल्कुल पहुँच सकते हैं और आपको कहाँ पहुँचना होगा इसकी जानकारी भी मैं आपको दे देती हूँ। और हम आपको बता दें, इंडियन इस्लामिक कल्चरल सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली में आपको जुड़ना होगा और आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और समय रहेगा शाम 5 बजे। आज है 21 अगस्त और ये ट्रिब्यूट है जो दिए जा रही है मुकेश साहब जी को। 27 अगस्त को उन्होंने हमसे विदा ली थी और उनको याद करते हुए एक बेहद खूबसूरत शाम का आयोजन किया जा रहा है। तो आप ज़रूर पहुँचिएगा, उनको याद कीजिएगा, क्योंकि हम कहते हैं ना और हम समझते भी हैं कि इंसान हमारे बीच ना हो लेकिन जो यादें हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती। और बेहद खूबसूरत जो गीत हैं उन्होंने हमें दिए हैं जिनको हम बार बार सुनना चाहते हैं और हम चाहकर भी उनको अलविदा नहीं कह सकते। वो हमारे दिल में, हमारी यादों में हमेशा रहेंगे इन गानों के साथ। एक और बेहद खूबसूरत सा नगमा मुकेश साहब की आवाज़ में आप सभी के लिए।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: मम्मी, बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
3: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
2: अरे मम्मी, एक घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
3: हैं? इतनी जल्दी?
2: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ कर बस मिनटों में मेरठ।
4: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
5: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
6: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाए अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
7: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। Good morning, Delhi NCR. Always wherever you are. 102.6 आपके लिए।

अपना हर दिन हर पल बिंदास होकर बिल्कुल जीना चाहिए। और ये जो गाने हैं ना, उफ, ये तो सब कुछ ही कह जाते हैं। आपके हर इमोशंस की बात यहाँ पर आ जाती है। खुशी है, एक्साइटमेंट है, किसी चीज़ की जल्दबाजी है, हर मूड के सॉन्ग हैं। तो बस इन गानों का आनंद लीजिए जानकारी के साथ और जुड़ रही हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो के इस सफ़र में। और इस सफ़र में अगर आप भी एक दिन और कुछ वक्त बिताना चाहते हैं खूबसूरत नज़ारों के बीच में, प्राकृतिक नज़ारों के बीच में, तो फिर मौका है, बहुत ही खूबसूरत सा एक मौका है आपके पास और आप पहुँच सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अमृत उद्यान की। और 16 अगस्त से 15 सितंबर तक ये जो अमृत उद्यान है वहाँ पर आप पहुँच सकते हैं। और समर एनुअल्स एडिशन जो है उसका आप आनंद ले सकते हैं। तो यहाँ जाने के लिए आपको कहाँ पहुँचना होगा, आप उधर सकते हैं। अगर मेट्रो से ट्रेवल कर रहे हैं तो आप केंद्रीय सचिवालय से शटल बस जो सेवा है वो भी उपलब्ध है और आप इन नज़ारों का बेहद खूबसूरती से आनंद ले सकते हैं। बाल वाटिका, बॉन्साई गार्डन, बरगद का झुरमुट, सेंट्रल लॉन, बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा जो आपका मन मोह लेगा। लेकिन जाने से पहले क्या आपको करना है, इन फूलों की सुंदरता देखना है। सुंदरता को देखकर आपको जो सुकून मिलने वाला है, उस सुकून के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। वो सिर्फ आप वहाँ पहुँच कर उसका आनंद ले सकते हैं। तो पहुँचने से पहले एंट्री जो टिकट है वो नहीं है, लेकिन आपको इस खूबसूरत बगीचे के दीदार करने के लिए टिकट की जो बुकिंग है वो पहले से करानी होगी। आपको visit.rashtrapatibhavan.gov.in पर जाना होगा और आप अपना जो दिन है, किस दिन आप जाना चाहते हैं, समय है, वो जो स्लॉट है उसको बुक कर सकते हैं। आपको कुछ पे नहीं करना है, लेकिन ये जो स्लॉट है आप उसको बुक कर सकते हैं। और साथ ही आप जिस दिन जा रहे हैं तो 10 बजे तक भी आप बुकिंग कर सकते हैं, इसलिए सारा आनंद आप तक है। लेकिन हाँ, आपको पहले से बुकिंग करनी है और बुकिंग करके आप आनंद ही आनंद ले सकते हैं। और उसके बाद क्या, बहुत दिन तक आपको ये जो खुशबू है, वो जो नज़ारे हैं बेहद खूबसूरत से, वो याद आएंगे। जुड़ रहे हमारे साथ इसी सफ़र में जिसका नाम है गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। मैं हूँ आपके साथ नुपुर कुलश्रेष्ठ।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।

जी हाँ, आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, और कुछ ही देर में आपके साथ जुड़ेंगी बबीता रावत और आप सुनेंगे प्रोग्राम दिल की तराने, गाने नए पुराने। उसके बाद आपके साथ होंगे मैचलेस म्यूजिक आर में आशीष अब्राहम, और उसके बाद बॉलीवुड की खबरों के साथ आपके साथ जुड़ेंगे बॉलीवुड रील्स में रंजन अरनेजा। मैं बिल्कुल श्रेष्ठ, अब गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR से इस प्रोग्राम से आपसे लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार।

नमस्कार, प्रस्तुत हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। देश के भविष्य के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय बाधाओं का समाधान करने का आह्वान किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के मात्र दो छंद गाने के फैसले की आलोचना की, पूरा वंदे मातरम गाने पर बल दिया। भारत आज पुणे से 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा, वहीं जयपुर में होगी ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होकर 3 सितंबर तक चलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा, उत्तरों की चुनौती देने की प्रणाली निष्पक्ष है, इसके महंगी होने की चिंताओं को खारिज किया। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को वर्ष 2047 तक समावेशी और विश्वस्तरीय शहर बनाने के लिए मास्टर प्लान जारी किया। सर्वोच्च न्यायालय ने देश में छात्र प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा रद्द करने के राज्य सरकार के निर्णय पर रोक लगाई। सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 2 जहाजों का किया अपहरण, चालक दल में 6 भारतीय शामिल। अमेरिका में ईरान सरकार के साथ उसके संबंधों का हवाला देते हुए हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। और खेलों में हॉकी विश्व कप दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज एम्सलेविलिन के भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी
1: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। मैं हूं बबीता रावत आपके साथ। प्रोग्राम शुरू हो चुका है।
2: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: 10 बजे तक आप नए पुराने गीतों के साथ मेरे साथ रहेंगे और सुनते रहेंगे, एंजॉय करते रहेंगे आकाशवाणी रेनबो।

दिल के दराने गाने नए पुराने हो प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और इस वक्त जो टेम्परेचर है वो 31 डिग्री के लगभग है इस जगह का। और जब बात हो रही है टेम्परेचर की तो आपने देखा ही परसों अचानक से बारिश की छींटे आने लगी और ऐसा ही कुछ होने वाला है अभी कुछ ही दिनों में, क्योंकि आसमान में बादल छाए हुए हैं और मुमकिन से भी मुमकिन आज या कल नहीं तो परसों में बारिश ज़रूर होगी दिल्ली एनसीआर में। तो खुश हो जाइए दिल्ली वालों, आप लोगों को मौसम का आनंद लेने को मिलेगा और वैसे भी वीकेंड है तो आप मौज मस्ती कर सकते हैं, अच्छे से मौसम में बाहर घूमने जा सकते हैं, आउटिंग कर सकते हैं अपने अपने नेबर्स के साथ या अपने घर वालों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। और AQI लेवल 107 है, लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि बहुत ख़राब भी नहीं है और बहुत अच्छा भी नहीं है। बारिश होने की वजह से ये थोड़ा सा अच्छा हुआ है कि AQI लेवल का जो है पहले की कंपैरिजन में अभी सुधार हुआ है। और हम यही चाहेंगे कि दिन ब दिन जो है दिल्ली एनसीआर की जो हवा है, आबो हवा है, वो सुंदर हो जाए, अच्छी हो जाए और हम अच्छे से सांस अपने फेफड़ों में भर करके और अच्छी स्वस्थ ज़िंदगी जिए। अभी फ़िलहाल ये गाना आप सभी लोगों के लिए।

0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: आपके लिए लाए हैं आज हम एक रेट्रो सॉन्ग, राहगीर फिल्म से 1968 में ये फिल्म रिलीज हुई थी और लता मंगेशकर की आवाज में इस गाने को आप एंजॉय कीजिए। प्रोग्राम है दिल के तराने, गाने नए पुराने, मैं हूं बबीता रावत आपके साथ।

0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
4: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त,
2: पता का चाय गजब का स्वाद।
3: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
4: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
5: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, मैं हूं बबिता रावत आपके साथ। और अब जो गाना मैं आपको सुनाने वाली हूं वो है फिल्म धूल का फूल से, और महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की प्यारी सी आवाज में आप इस गाने को सुनेंगे।

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
3: दिल की तराने, गाने नए पुराने में अब एक रेट्रो और सॉन्ग आपको सुनाने जा रही हूँ, जहरीला इंसान फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में।

नहीं नहीं मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, अभी यहीं पर हूँ। और आपको ये बताने के लिए कि अगले आप कौन कौन से प्रोग्राम सुनेंगे और कौन कौन से आपके फेवरेट आरजेस आपके साथ रहने वाले हैं। 10 बजे प्रोग्राम होगा वेस्टर्न म्यूजिक का, मैचलेस म्यूजिक आर्स, आशीष अब्राहम होंगे आपके साथ। उसके बाद 11 बजे प्रोग्राम होगा बॉलीवुड ट्रेल्स, रंजन अरनेजा होंगे आपके साथ। और उसके बाद प्रोग्राम होगा, जी हाँ, फिर से वेस्टर्न म्यूजिक, प्ले इट कूल, आशीष अब्राहम फिर से होंगे आपके साथ। और रंजन अरनेजा लेकर आएंगे आज बिंदास बोल, और बिंदास बोल में आप बिंदास होकर बोलिए कौन सा प्रोग्राम आपको अच्छा लगता है और क्या आपको नया चाहिए। और अगर कोई दिक्कत भी हो तो वो भी बता सकते हैं हमारे, हमसे या हमारे प्रोग्राम से। कुछ भी आपको लगता है कि हमको आपका सजेशन चाहिए अच्छा सा, जो हमारे प्रोग्राम्स को बहुत अच्छा बना सके, बस आप लिख कर भेज दीजिए। वैसे मेल के थ्रू आप भेज सकते हैं इसे, feedback@rainbow.gmail.com पर। और व्हाट्सएप नंबर तो है ही, आप इसके द्वारा भी हम तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं। और इसके बाद प्रोग्राम होगा आशियाना सेगमेंट में, आज होगा प्रोग्राम रेनबो डेस्टिनेशन ट्रैवल एंड टूर है, और कहाँ घुमाती हैं आपको सृजन, ये आज वही बताएंगी। और उसके बाद रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम 3 बजे, डिजीज इन रेनी सीजन टॉपिक होगा आज का, एक्सपर्ट डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता सीनियर डायरेक्टर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन से होंगे। इसके अलावा 4 बजे प्रोग्राम मेलफोजन, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, और होंगी सृजन आपके साथ, बहुत सारी बातें होंगी। आज तो वीकेंड है ना, इसलिए कुछ न कुछ तो हमारे यूथ के लिए नया होना ही चाहिए। शैली भाषांजलि होंगी लेकर के सिटी लाइट्स, और उसके बाद सीमा सती मैसेज मसाला मिक्स लेकर के आएंगी, और लिपिका दास वेस्टर्न म्यूजिक का बंच फ्राइडे फिएस्टा लेकर आएंगे आपके लिए ठीक 7 बजे। और फिर 8 बजे प्रोग्राम होगा म्यूजिक मस्ती, सीमा सती होंगी आपके साथ। 9 बजे विकास कौशिक होंगे आपके साथ, आपकी याद आती रही 9 बजे प्रोग्राम होगा। और 10 बजे फिर से लिपिका आपके साथ होंगी, और वीकेंडर प्रोग्राम होगा 10 बजे होगा। और 10 बजे के बाद 11 बजे विकास फिर से होंगे आपके साथ रंगे महफिल में, और रंगे महफिल सजाएंगे आपके साथ। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ यूं ही आकाशवाणी रेनबो पर, 7 रंगों से सजा और अलग अलग प्रोग्राम लेकर के लिए आपके लिए आता है और आपकी खुशियां चाहता है और आपके साथ जुड़ा रहना चाहता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ आप भी।

वैसे देर नहीं हुई है और अब जो है हम जा तो रहे हैं, लेकिन हमारे जाने के बाद कोई ना कोई आता जरूर है और आशीष आ चुके हैं अगला प्रोग्राम लेकर के लिए आपके लिए। और अब वेस्टर्न म्यूजिक का भी आप आनंद दीजिए जम करके, और मैं फिर मिलूंगी आपसे किसी दिन किसी रोज कहाँ पर, यहीं पर आकाशवाणी रेनबो पर। इंतजार कीजिएगा मेरी आवाज सुनने के लिए, और वैसे भी आप मुझे पता है बहुत बेसब्र रहते हैं अपने फेवरेट आरजेस की आवाज सुनने के लिए। जब मिलेंगे हम आपसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।

0: बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
1: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सराय कालेखा से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में,
0: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में, आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में,
1: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
0: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: क्या है बब्बल, जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: Well, I'm sure many of you definitely remember this track. Of course, the 90s kids would definitely would have got that trip down memory lane, nostalgia there, and the soulful voice of Sonu Nigam, that was Deewana Tera from the year 1999. And of course, Sonu Nigam, no introduction needed, but for the uninitiated, Indian playback singer, music director, dubbing artist and actor, is considered one of the most versatile singers in India with a wide vocal range. His performances include a wide range of genres like classical music, devotional music, ghazals, qawwali, rock and pop music, among others. Well, 10:52 a.m. by the studio clock, it's time for a short little break. And we'll be back with Kanye West.
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी

0: रोज एक अंडा,
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाए अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
3: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
4: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

एफएम स्टूडियो घड़ी में सुबह के 11 बज चुके हैं। लीजिए पेश है आकाशवाणी रेनबो पर एफएम मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। देश के भविष्य के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय बाधाओं का समाधान करने का आह्वान किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के मात्र दो छंद गाने के फैसले की आलोचना की, पूरा वंदे मातरम गाने पर बल दिया। भारत पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कर रहे हैं, वहीं जयपुर में होगी ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होकर 3 सितंबर तक चलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा, उत्तरों को चुनौती देने की प्रणाली निष्पक्ष है, इसके महंगी होने की चिंताओं को खारिज किया। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को वर्ष 2047 तक समावेशी और विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए मास्टर प्लान जारी किया। सर्वोच्च न्यायालय ने देश में छात्र प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के राज्य सरकार के निर्णय पर रोक लगाई। गृहमंत्री अमित शाह ने आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी नेता कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 2 जहाजों का किया अपहरण, चालक दल में 6 भारतीय शामिल। अमेरिका ने ईरानी सरकार के साथ उसके संबंधों का हवाला देते हुए हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। और खेलों में हॉकी विश्व कप दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज एम्स्टलवीन में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से। तो ये थे आकाशवाणी रेनबो पर मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी और प्रोग्राम शुरू हो गया है बॉलीवुड ट्रेल्स और

वो ट्रेल्स में आज की सुबह मैं हूं आपके साथ रंजन। आज है फ्राइडे, सो थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, और बहुत सी सिनेमा गोअर्स को फ्राइडे का खास तौर से इंतजार रहता है। तो बस पिश सफर शुरू हो गया, आपके पसंदीदा सितारों की होगी बातचीत। क्या मचा रखी है उन्होंने हलचल, और कहां लगा रहे हैं वो ठुमका। दिस एंड लॉट्स मोर सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड ट्रेल्स पर।

जी हाँ, शो मी द ठुमका। ऑब्वियसली जब गाने में इतना दम हो, बीट इतनी मस्त हो, तो आपका डांस खुद ब खुद से डांस होना बड़ा लाजमी है। लेकिन अगर आप इस समय यू नो ड्राइव कर रहे हैं, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप डांस नहीं करें। आप ट्रैफिक लाइट पर ध्यान दीजिए और रेड लाइट जम नहीं करना है, ज़्यादा जल्दी में मत रहिए, बिकॉज जल्दी का काम शैतान का होता है। और ऐसा ही कुछ काम करने चाह रहे हैं मूवी के अंदर, डोंट गेट मी रॉन्ग, सलमान खान इज गोना प्ले मॉन्स्टर। जी हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। मॉन्स्टर टाइटल से एक मूवी है जो बनाई जाएगी, और इसकी जो रिलीज है 2027 ईद में है, तो भी बड़ा समय है, उस हिसाब से रिलीज के ऊपर काम किया जाएगा। एंड द न्यूज इज दिस कि भाई सलमान खान के जो बॉडी डबल यानी स्टंट करने के लिए जिन्हें रखा गया था, उनकी तबीयत थोड़ी नासाज है, तो इस वजह से सलमान खान ज़्यादातर स्टंट्स और कर रहे हैं। बट आई एम जस्ट वंडरिंग, सलमान इस उम्र में आके अब ज़्यादा स्टंट्स नहीं करना चाहिए? आई थिंक ही कैन रियली वेरी वेल। आप किसी और को भी तो हायर कर सकते हैं, हाँ या ना? आई मीन दैट्स सो सिंपल। वैसे खैर, ये तो भी बहुत फिल्म में अभी काफ़ी टाइम है, ज़रूरी है। अगर आप लगते हैं सलमान की बॉडी डबल, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं भाई। इतनी तकलीफ सलमान अपने आप को क्यों देंगे? आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स आकाशवाणी रेनबो पर। हम पहुंच रहे हैं आप तक दिल्ली के दिल से 102.6 मेगाहर्ट्ज पर और ढेरों फ्रीक्वेंसीज पर पूरे भारतवर्ष में।

एक आर्टिस्ट और म्यूजिक लेवल में कभी क्रिएटिव डिफरेंस हो तो बात समझ आती है, कभी पैसे को लेके कोई दिक्कत हो तो भी बात समझ आती है, लेकिन अगर कोई म्यूजिक लेबल आपको हैरास करने लगे, परेशान करने लगे, तो फिर बात समझ नहीं आती है। कुछ ऐसा ही अंदेशा जताया है, रादर कंप्लेन की है यो हनी सिंह ने, कि कोई एक म्यूजिक लेबल है, ही इज नॉट नेमिंग द लेबल राइट नाउ बट वी कैन वेरी वेल गेस, ऐसे बहुत से म्यूजिक लेबल हैं और वो उनके गाने, अभी वो कह रहे हैं कि मेरे और भी रिलीज हो सकते थे मेरे एल्बम्स में, ही इज बीन प्लेइंग, ही इज बीन मेकिंग लॉट ऑफ म्यूजिक, तो उसको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, या समहाउ कोई हो सकता है इनका कुछ अनुबंध रहा हो जहां पर उनके गानों को रिलीज नहीं किया जा रहा है। आई थिंक हनी सिंह हैज अ पॉइंट देयर। तो वैसे मैं बताना चाहूंगा हनी सिंह को ये बात कि म्यूजिक लेबल्स ना सिर्फ एक आर्टिस्ट को बल्कि कई दफा ऐसा भी होता है अगर कोई न्यूज चैनल एक स्टोरी प्रमोट करते हुए उनके म्यूजिक का कहीं थोड़ा सा भी अंश ले लें तो म्यूजिक लेबल्स इस तरह से बिहेव करने लग जाते हैं जैसे कि वो लुट पुट गए हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर उनके म्यूजिक के बारे में कुछ अच्छी बातें कही जा रही हैं, जहां उनके गाने का कुछ 2-5-10 सेकंड का हिस्सा लगाया जा रहा है, तो उसके लिए भी उन्हें रॉयल्टी चाहिए होती है। यही है अजब गजब बॉलीवुड। जुड़े रहें, सुनते रहें हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो पर बॉलीवुड ट्रेल्स।

आपने देखी होगी ये फिल्म, अगर नहीं देखी है तो अच्छा ही किया है, बहुत अच्छी तो नहीं थी, ठीक ठीक थी। आई एम हैव सीन दिस मूवी बट समहाउ टाइम पास ओके। चलिए हम बात कर रहे हैं आपसे कि हनी सिंह की जो हमने बात छेड़ी है, वैसे अगर आपको पता ना हो तो जो गाने हम यहाँ पे भी बजाते हैं, हर गाने के लिए आपको व्हेन यू प्ले वन सॉन्ग ऑन एयर तो ऑब्वियसली उसकी कुछ रॉयल्टी होती है जो उस म्यूजिक कंपनी को जाती है। ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिसर्च, हमने कहीं सुना था कि 20 साल के बाद म्यूजिक रॉयल्टी फ्री हो जाता है, बट यहाँ तो कुछ 60 साल का दौर बताया जा रहा है। खैर इस पे थोड़ी कन्फ्यूजन है कि एक्चुअली कितने साल के बाद कोई म्यूजिक जो आप बनाते हैं इट्स फ्री टू यूज़, आपको पता हो तो आप ज़रूर बताइएगा। वैसे हाँ, यहाँ पे मैं सवाल जो पूछने जा रहा हूँ वो तो ये है कि बॉलीवुड सरताज अगर बनना चाहते हैं आप आज, तो इट्स वेरी सिंपल, आप हमें कीजिए व्हाट्सएप 9868107070 पर। और हमारा आज का सवाल बड़ा सिंपल सा है, एक मूवी आई थी 2003 में तेरे नाम, सलमान खान ने उसके अंदर जो रोल प्ले किया है, जो किरदार किया है, उस किरदार का आपने नाम बताना है और सिंपल, हो सकता है आज आप बन जाएं बॉलीवुड में बॉलीवुड सरताज।

कौन कहाँ मिलेगा और कब बिछड़ेगा ये तो कोई नहीं जानता बाबूमोशाय, हम सब रंगमंची कठपुतलियाँ हैं ना। ऐसा एक डायलॉग था, काका जी कह गए। और मूवी वो एक अलग दौर था, और आजकल की मूवीज़ जो

0: मैं घर पे ही कॉकटेल टू देख रहा था एंड यार मैं 1 घंटे में पूरी नहीं देख पाया। मैं आया टू स्विच पर कुछ और देखने लग गया। वो पकड़ नहीं रह गई है, पता नहीं स्क्रिप्ट्स में क्या बात है भाई। कुछ स्क्रिप्ट्स पे भी काम कीजिए, अदरवाइज ब्यूटीफुली शॉट, अच्छा लगा देख के। विदेश के आप नज़ारे देख सकते हैं। आपको ट्रैवल करना है ना, तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप मूवीज़ के थ्रू भी देख सकते हैं। अब जैसे देखिए, हम आपको बताएंगे आज किसका बर्थडे है, वो थोड़ी देर में बताएंगे, और वो सवाल एक बार फिर से दोहराएंगे जिसे हम कहते हैं बॉलीवुड सरताज। तो हो सकता है आप लकी हो, बहुत से मेरे पास यहाँ पर मैसेज जाना चालू हो गए हैं। मैं बिना देखे कह रहा हूँ, बिकॉज मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि बहुत सारे मैसेजेस आना चालू हो गएंगे। और जिनको नहीं पता, नंबर एक बार फिर दोहरा देते हैं, 9868107070, 9868107070। इस पर व्हाट्सएप करना है, सवाल फिर से दोहराऊंगा। छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, लौट के आएंगे। आप सुनते रहें बॉलीवुड ट्रेल्स।
1: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
2: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगमपुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
1: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
3: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
4: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
5: हिमालय की गोद से लेकर
6: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
5: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
6: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
5: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
6: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
5: तो सुनना ना भूलें
6: रेनबो डेस्टिनेशंस
5: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
7: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
8: कोयल सी तेरी बोली,
9: हाय
8: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
9: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
8: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
9: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
5: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

जी हाँ, हाई हील पे नचे तो तू बड़ी जचे। और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का कार्यक्रम बॉलीवुड ट्रेल्स। कभी कभी ऐसा लगता है कि मन भी जो है एक बच्चा है। बच्चा ही क्यों, आई थिंक स्कूली बच्चा है। इट वॉज सच वंडरफुल ईयर्स, जब हम स्कूल में पढ़ते थे कितना मजा आता था। नहीं हाँ, अब अगर आज के स्टूडेंट से पूछे तो हो सकता है दिल से समथिंग एल्स। लेकिन मैं इतनी बातें क्यों कर रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि आप बने बॉलीवुड ट्रेल्स में आज बॉलीवुड सरताज। उसका सिंपल सा सवाल है, आप मुझे बताइएगा कि एक मूवी आई थी 2003 में तेरे नाम, उसमें सलमान खान ने जो रोल जो किरदार प्ले किया था उसका नाम बताइए और हमें व्हाट्सएप कर दीजिए 9868107070 पर, और हो सकता है कि मैं आपको आज बना दूँ बॉलीवुड सरताज। और अपने फोन को रखिएगा अपने पास, तो यहीं रहिए हमारे साथ क्योंकि हम हैं आपके साथ आकाशवाणी रेनबो पर। मैं हूं आपके साथ रंजन। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग।

जी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बॉलीवुड ट्रेल्स और स्टेशन आपको पता ही है, हमारा स्टेशन है 102.6 एफएम रेनबो। आप चाहें तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप जो है वो है बड़ा सिंपल, न्यूज ऑन एयर, और उसके बाद ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया में कहीं भी आप जाएंगे अपने स्मार्टफोन के माध्यम से हमें आप अपनी जेब में अपने दिल के करीब लेके अपने साथ ट्रेवल कर सकते हैं। तो फिर हमारा ये साथ बना रहेगा 24/7।

जी आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल से, मैं हूं आपके साथ रंजन। और आज है किसी का बर्थडे और वो कोई या वो किसी कौन है, वो कौन खास है, उनका नाम है भूमिका चावला। इन्होंने आज 21 अगस्त का दिन है, इनकी आज जन्मदिन है, तो हम इन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। विश हर अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। वैसे भूमिका अभी मूवीज से दूर है, एक मूवी आई थी जो मैंने अभी उसका जिक्र भी किया, तेरे नाम 2003 में, इट वॉज अ गुड मूवी, आई थिंक इट वॉज ब्लॉक बस्टर। सलमान इनके साथ हैं, उससे जुड़ा हमने सवाल भी आपसे पूछा। इसके अलावा उन्होंने बहुत सी साउथ के अंदर बहुत फिल्में की हैं, हिंदी में भी कुछ एक फिल्में की हैं, लेकिन तेरे नाम में जो इन्होंने छाप छोड़ी वो वाकई काबिल तारीफ है। सो ऑल वी कैन से इज दैट दिल्ली की ही लड़की हैं ये भूमिका, दिल्ली में रही, यहीं पढ़ी बड़ी, उसके बाद शी मूव टू मुंबई जहां पे इन्होंने ना सिर्फ मूवीज में काम किया बल्कि कुछ एक सीरियल्स में भी, कुछ चैनल्स के लिए इन्होंने शुरुआत में काम किया। शी स्टार्टेड हर करियर एज अ मॉडल। तो फिर हम यही कहना चाहेंगे कि आज का दिन भूमिका आपके लिए आकाशवाणी की पूरी टीम की तरफ से, ये गाना आपकी तरफ एज अ बर्थडे प्रेजेंट, इससे ज्यादा हम दे भी कह सकते हैं। थोड़ी देर में हम लेके आएंगे आपके सामने हमारे आज के बॉलीवुड सरताज को। सुनते रहें आकाशवाणी, आकाशवाणी का रेनबो चैनल बॉलीवुड ट्रेल्स।

0: जी हाँ, मखमली आवाज उदित नारायण की, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का कार्यक्रम बॉलीवुड ट्रेल्स। हमारे साथ हमारे बॉलीवुड सरताज इस समय जुड़ गए हैं, लेट्स से हम उनसे बात करने चाहते हैं। क्या वो ऑन एयर हैं? हेलो
1: जी सर।
0: गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अपना नाम बताइए।
1: थैंक यू सर। राजीव कुमार सर।
0: राजीव कुमार जी, मेरठ से।
1: जी सर।
0: वंडरफुल, और क्या बात है, आपने सही जवाब दिया। जवाब तो बहुत से लोगों ने सही दिया है, लेकिन आज आप बनते हैं बॉलीवुड सरताज। एक बार फिर से दोहरा दीजिए कि तेरे नाम में सलमान खान ने जो किरदार प्ले किया था उसका नाम क्या था मूवी में?
1: राधे मोहन सर।
0: अरे वाह सर, वाह, राधे मोहन, राधे मोहन। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप बनते हैं बॉलीवुड सरताज, तो खास क्या करोगे राजीव? आज पहली बार बने हो?
1: जी हाँ सर, पहली बार बनाऊँ सर।
0: अच्छा, ऐसा क्या खास करेंगे? कुछ मुंह मीठा कर लीजिए, आप तो कन्फेक्शनरी की दुकान बता रहे हैं, तो ज्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा।
1: जी सर।
0: अच्छा देखिए, कुछ लोगों ने ना आधा ही नाम बताया, कुछ लोगों ने सिर्फ राधा लिख के भेजा। तो वैसे देखिए, राधा में मोहन छिपे हैं तो मुझे पता है, लेकिन यार किरदार पूरा बताओगे आधे जवाब तो आपको नहीं, मैं किसी और को नहीं बना सकता था। तो खैर, आपसे बात हुई, बहुत अच्छा लगा। बट आपसे मैंने जब कॉल किया, मैंने आपको, आपने कहा मैं रेडियो बंद करके

0: मस्त हो गया था अपने काम में, तो भाई आपको क्या विश्वास नहीं था जब मैं कह रहा हूँ कि आप बन सकते हैं आज? तो आज आपका लकी दिन है दोस्त।
1: जी हाँ, जी हाँ सर।
0: हाँ, तो आगे से ध्यान रखिएगा।
1: जी सर।
0: रेडियो बंद नहीं होना चाहिए। चलिए
1: सर, मैंने पोस्ट कर दिया था, मैंने कहा सर।
0: हाँ बताइए बताइए।
1: मैंने सर पोस्ट कर दिया था एफएम अपना। हाँ। मैंने कहा मुझे फोन आया, मैं कहा फिर मैं पास ही खड़ा था एफएम के, मैं कहा आवाज साफ नहीं आएगी।
0: चलिए ठीक है, इसी तरह से यूं ही प्यार से हमें दिन भर सुनते रहें। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, तो बस अब यही कहना चाहेंगे कि बॉक्स ऑफिस की रिपोर्ट भी आपको हम लगे हाथ दे देते हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद लौट के आएंगे, आपको बताता हूँ कि बॉक्स ऑफिस पे कौन सी फिल्म ने क्या किया है धमाल और कौन कर रही है कमाल।
2: राहुल, अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
3: अरे सर फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
2: इम्पॉसिबल
3: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, एक घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
4: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगम पुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
5: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, न हमसे मिलता है न साथ खाना खाने आता है, तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
6: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे, मुझे HIV है।
5: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
7: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है, हम सब से मिलने से नहीं।
8: इग्नोर नहीं, याद करो।
9: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
10: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
11: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
10: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
12: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
10: ठीक है,
12: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो, जो HR कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
11: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
10: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
13: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
10: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
11: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
10: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
11: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
10: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
11: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
10: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
11: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
14: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
15: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
16: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान, इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप सुन रहे हैं बॉक्स ऑफिस की खबर बताने हम आपको जा रहे हैं। आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स और दो फिल्में रिलीज हुई थी अभी कुछ दिन पहले, लास्ट वीक बंटवारा 1947 और इसका जो अभी तक हफ्ते भर में जो बिजनेस हुआ है लगभग 45 करोड़ के आसपास लगभग सिमट गया है और इसको पछाड़ दिया है अवारा पंटू ने, जिसमें इमरान हाशमी स्टार कर रहे हैं। समहाउ पीपल हैव लाइक दैट मूवी मोर देन बंटवारा। और एक दिक्कत और बताई जा रही है, इट इज बीन सेड इन द प्रेस के आमिर खान साहब ने, क्योंकि इस मूवी के अंदर पैसे लगाए, उनका प्रोडक्शन से ये मूवी बनी है, तो OTT पे जो वो बेचना चाह रहे थे वो समहाउ सनी के हिसाब से वो चाह रहे थे कि इसके राइट्स बेच दिए जाएं, जो आमिर ने नहीं दिए फॉर अ सर्टन अमाउंट। खैर कभी कभी ऐसा होता है कि आपके आसपास जो लोग हैं वो आपकी केयर नहीं करते।

0: जी हाँ, सरकास्टिक से स्माइल में ऐसा ही कुछ मैसेज लिख के भेजा है जुहे ने ऑस्ट्रेलिया से। अरे भाई, मैं रिक्वेस्ट कर रहा था रेडियो बंद नहीं करें और हमें पूरा दिन सुनते रहें, बिकॉज ऐसा ही हमारे जो सरताज बने हैं वो ये भी कह रहे थे कि दिन भर सुनते हैं। इसीलिए मैंने कहा भाई आप तो आई नो आप स्माइल कर रही हैं, स्माइली, और इस समय तो ऑस्ट्रेलिया टाइम डिफरेंस है, 5-1 घंटे आगे है। अच्छा, अगर आप हमें सुन रही हैं। खैर, अगला कार्यक्रम रहेगा प्लेट कूल, आशीष इब्राहिम आपके साथ रहेंगे। फिलहाल रंजन को दीजिए इजाज़त, मैं आपसे मुलाकात करूँगा 1 बजे। लेकिन चलते चलते बता दूँ कि एक फिल्म बनाई जा रही है गांधी जी पर, जिसमें गांधी जी का किरदार प्ले करेंगे मनोज वाजपेयी। जैसे ये खबर मुझे पता लगी और मुझे सही में मनोज के अंदर गांधी जी की वो छवि भी दिखने लग गई। और दीपिका पादुकोण ने जो मूवी छोड़ी थी स्पिरिट, आई थिंक दैट वाज फॉर द रीजन कि वो 10% डिमांड कर रही थी प्रॉफिट्स में से, सो दीपिका को उस प्रोजेक्ट को छोड़ना पड़ा।
1: जैसे हाँ।
0: अगर मैं मूवी बनाऊंगा तो दीपिका, आई प्रॉमिस यू आई विल गिव यू 20% ऑफ द प्रॉफिट्स। टेक केयर, बाय बाय।

0: But as of now, it's time for a short little break.
1: मम्मी बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
2: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
1: अरे मम्मी एक घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
2: हैं इतनी जल्दी?
1: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ कर बस मिनटों में मेरठ।
3: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुर होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
4: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है, तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
5: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे, मुझे HIV है।
4: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
6: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं,
7: इग्नोर नहीं, याद करो।
8: HIV एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
9: अब होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली।

स्टूडियो घड़ी में दोपहर की 1 बज चुकी है। लीजिए पेश हैं आकाशवाणी पर FM रेनबो मुख्य समाचार। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक चल रही है। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लाभ छोटे और सीमांत किसानों सहित सभी किसानों तक पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें एक पहल प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान PM आशा है। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करेगा। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पत्र के साथ एक पोस्ट साझा की। पत्र में श्री वैष्णव ने बताया कि शहीद कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर के रास्ते जम्मू तवी और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस को मंजूरी दे दी गई है। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने अंतर्राज्यीय डिजिटल अरेस्ट साइबर धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ कर पंजाब और राजस्थान से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी नेता कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुंबई के कुर्ला पूर्व इलाके में आज तड़के क्रेन के घरों पर गिर जाने से 8 लोग घायल हो गए। जम्मू कश्मीर में स्कूल शिक्षा विभाग ने अपने कर्मचारियों के लिए व्यापक स्थानांतरण नीति अधिसूचित की है। इसका उद्देश्य तबादलों और नियुक्तियों में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता लाना है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आज सुबह इस्लामाबाद के एक निजी अस्पताल में चिकित्सीय जांच के बाद रावलपिंडी की अदियाला जेल वापस भेज दिया गया। ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिनों में दो जहाजों का अपहरण कर लिया है। खबरों के मुताबिक लुतुफ में तुर्की के हथियार और उपकरण थे, जिन्हें मोगादिशु में एक सेना प्रशिक्षण केंद्र ले जाया जा रहा था। अमेरिका ने ईरानी सरकार के साथ उसके संबंधों का हवाला देते हुए हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए। और खेलों में हॉकी विश्व कप दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज एम्स्टेलवीन में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से। तो ये थे आकाशवाणी पर FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: आकाशवाणी आपकी अपनी वाणी। और आज है बड़ा खास दिन, आज है 21 अगस्त। मतलब वैसे तो देखिए हर महीने में 21 तारीख आती है, आज है फ्राइडे। और फ्राइडे भी खास क्योंकि महीने का तीसरा शुक्रवार है। और आज के दिन अगर आप इंतजार कर रहे हैं मेरे वाला सॉन्ग का, तो वो नहीं आएगा क्योंकि आज हमारा खास कार्यक्रम आता है बिंदास बोल। तो बिंदास बोल की शुरुआत करेंगे थोड़ी देर में, कुछ समय बाद, लेकिन उससे पहले एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम भी आपको सुनाएंगे। हम आपको अपना नंबर बता देते हैं, हमारा नंबर रहेगा 9868107070, दैट्स 9868107070। तो फिर आपके मन में कोई भी विचार हो, हमारे कार्यक्रम को आप लगातार सुनते रहते हैं, या फिर आपने कभी गाए बगाए कभी एक आध बार हमारे प्रोग्राम सुने हैं और कोई प्रोग्राम अच्छा लगता है या फिर नहीं लगता है, जो भी आपके मन में जैसे भी विचार आते हैं आप उन्हें हमारे साथ साझा कर सकते हैं। यू कैन शेयर योर

0: थॉट्स और हमें बेहतर बनने का एक नज़रिया दिखा सकते हैं, एक राह दिखा सकते हैं। तो आप हमें मैसेज ज़रूर कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा 9868107070 पर, और अपनी बातें हम तक पहुंचाइएगा। आपकी कुछ ईमेल्स भी मेरे पास यहां पर हैं, तो ये सब भी लेंगे। आपको ढेर सारी बातों के साथ साथ प्यारे प्यारे गीत तो हम सुनाते ही रहते हैं। फिलहाल समय हुआ है स्पॉन्सर प्रोग्राम का, तो मिलते हैं उसके पार।
1: इंडियन कैंसर सोसाइटी कहने आए हैं ये बात, कैंसर को हराना है हमारे साथ, कैसे इससे लड़ना है सुनो हमारी बात, क्योंकि कैंसर नहीं है लाइलाज, दुख में सुख में हम हैं आपके साथ, इंडियन कैंसर सोसाइटी।
2: नमस्कार। अगर एक दिन आपकी अपनी ही आवाज आपसे रूठ जाए तो कैसा लगेगा? हम बोलते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, अपने प्यार और अपने दर्द को आवाज देते हैं, लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं कि इस अनमोल आवाज की भी देखभाल जरूरी है? हम अपनी आंखों का, दिल का ध्यान रखते हैं, लेकिन आवाज का ध्यान अक्सर तब आता है जब वह बदलने लगती है। When your voice is trying to warn you, तो जाग जाइए, आवाज का ध्यान रखें, स्वर यंत्र के कैंसर को समय रहते पहचाने। मैं हूं मीनाक्षी चड्ढा, डायरेक्टर जागृति इंडियन कैंसर सोसाइटी से, और आज हम बात करेंगे स्वर यंत्र यानी लैरिंग्स या कहें तो वॉइस बॉक्स के बारे में। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि कैंसर का नाम सुनकर घबराइए मत, आज इलाज के तरीके पहले से कहीं बेहतर हैं। यदि बीमारी समय पर पकड़ में आ जाए तो बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इसलिए आज का उद्देश्य डराना नहीं बल्कि जागरूक बनाना है। आज की वार्ता के स्पॉन्सर्स हैं इंडियन कैंसर सोसाइटी, जिनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी आवाज कैसे बनती है, हम कैसे बोल पाते हैं? हमारे गले में एक छोटा सा अंग होता है जिसे स्वर यंत्र या वॉइस बॉक्स कहते हैं। इसके भीतर स्वर तंत्रियां होती हैं। जब हम सांस छोड़ते हुए बोलते हैं तो ये स्वर तंत्रियां कंपन पैदा करती हैं और आवाज पैदा होती है। यही वॉइस बॉक्स हमें बोलने, गाने, हंसने और रोने की क्षमता देता है। साथ ही खाना खाते समय ये हमारी सांस की नली की भी रक्षा करता है, यानी आकार में छोटा लेकिन काम में बहुत बड़ा। लैरिंग्स का कैंसर क्या है? जब इसकी कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं तो कैंसर बन जाता है, धीरे धीरे विकसित होता है। इसीलिए शुरुआती संकेतों को पहचानना जरूरी है। ये किन लोगों में इसका खतरा अधिक होता है? सबसे बड़ा कारण है टोबैको। चाहे वह बीड़ी हो, सिगरेट हो, हुक्का हो, गुटखा हो या खैनी हो, जर्दा या पान मसाला हो, हर प्रकार का तंबाकू नुकसान पहुंचाता है। यदि तंबाकू के साथ शराब का सेवन भी हो तो खतरा और भी बढ़ जाता है। इसके अलावा बढ़ती उम्र, लंबे समय तक धूम्रपान, कुछ केसेस में एचपीवी संक्रमण, बहुत अधिक धूल धुएं या रसायनों के संपर्क में रहना, लगातार एसिडिटी या संतुलित आहार की कमी भी जोखिम बढ़ा सकते हैं। लेकिन याद रखिए, जोखिम होना और बीमारी होना दोनों अलग बातें हैं। इसके लिए सजग रहना जरूरी है। सोचने की बात है कि कौन से लक्षण हमें सतर्क कर सकते हैं। यदि आपकी आवाज 2 से 3 सप्ताह से अधिक समय से बैठी रहे तो इसे मामूली बात मानकर टालिए मत। इसके अलावा आवाज का भारी होना या बदल जाना, बोलने में कठिनाई होना, गले में लगातार खराश रहना, निगलने में दर्द होना, गर्दन में गांठ, लगातार खांसी, खांसी में खून आना, कान में दर्द जबकि कान बिल्कुल ठीक हो, बिना वजह वजन कम होना, ऐसे लक्षण होने पर ENT विशेषज्ञ से परामर्श ले। इन लक्षणों का मतलब हमेशा कैंसर नहीं होता। कई बार

इन्फेक्शन, एलर्जी या दूसरी समस्याएं भी कारण हो सकती हैं। लेकिन लगातार बने रहने वाले लक्षणों की जांच जरूरी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जांच बहुत कठिन होगी, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर्स पहले आपकी पूरी बात सुनते हैं, आवाज कब से बदली, तंबाकू का सेवन करते हैं या नहीं, अन्य लक्षण क्या है, फिर एक छोटी सी कैमरा वाली ट्यूब से वॉइस बॉक्स के अंदर देखा जाता है। ये जांच कुछ ही मिनटों में हो जाती है। यदि जरूरत हो तो छोटा सा टिश्यू का नमूना लेकर बायोप्सी की जाती है। यही जांच निश्चित रूप से बताती है कि कैंसर है या नहीं। अब इलाज कैसे होता है? इलाज तो बीमारी की अवस्था पर निर्भर करता है। यदि बीमारी शुरुआती स्तर पर हो तो कई बार केवल रेडियोथेरेपी या छोटा सा ऑपरेशन ही पर्याप्त होता है। कुछ मामलों में लेजर सर्जरी की जाती है। यदि बीमारी का स्तर ऊंचा हो तो सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी का संयोजन किया जाता है। आज का इलाज केवल जीवन बचाने तक सीमित नहीं है। डॉक्टर्स प्रयास करते हैं कि जहां तक संभव हो मरीज की आवाज, निगलने की क्षमता और जीवन की गुणवत्ता बनी रहे। प्रश्न उठता है कि सर्जरी के बाद क्या व्यक्ति बोल सकता है? ये सवाल लगभग हर मरीज पूछता है। तो जी हाँ, ज्यादातर मरीज फिर से बोलना सीखते हैं। आज स्पीच थेरेपी, वॉइस प्रोस्थेसिस और आधुनिक तकनीकों की मदद से लोग फिर से अपने परिवारजन से बात करते हैं, नौकरी करते हैं और सामान्य जीवन जीते हैं। आवाज है जीवन की पहचान, इसे सहेज कर रखिए। समय पर जांच, सही उपचार, यही संदेश सब तक पहुंचाइए। कई लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि यदि वॉइस बॉक्स को निकालना पड़े तो कुछ मरीजों में बीमारी अधिक बढ़ जाने से वॉइस बॉक्स को निकालना पड़ सकता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन समाप्त हो गया। आधुनिक तकनीक ऐसे समय पर ही काम आती है। क्या इससे बचाव संभव है? तो सही उत्तर है जी हाँ, बिल्कुल। सबसे प्रभावी उपाय है तंबाकू बिल्कुल छोड़ दीजिए। यदि आप तंबाकू छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार असफल हो रहे हैं तो डॉक्टर्स की मदद लें। आज इसके लिए दवाएं और काउंसलिंग दोनों उपलब्ध हैं। शराब की सेवन ना करें या सीमित रखें। हरी सब्जियां और फल अधिक खाएं। नियमित व्यायाम करें। एसिडिटी का सही इलाज कराएं। लगातार आवाज बैठी रहे तो डॉक्टर से मिलें। सालों तक धूम्रपान करने वाले लोग अपनी नियमित ईएनटी जांच करवाते रहे। कई लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब अब तो तंबाकू की आदत सी बन गई है, पर उन्हें ये बताना जरूरी है कि इस शरीर की अच्छी बात ये है कि शरीर हर उम्र में सुधार की कोशिश करता है। जिस दिन कोई तंबाकू छोड़ता है उसी दिन से शरीर खुद को ठीक करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। यदि अकेले छोड़ना कठिन लगे तो डॉक्टर की मदद लें। आज दवाएं, परामर्श और निकोटीन रिप्लेसमेंट जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अब इसमें परिवार की भूमिका क्या है? यदि आपके घर में कोई व्यक्ति तंबाकू खाता या पीता है तो उसे डांटने की अपेक्षा समझाइए। प्यार से की गई बात कई बार ऐसी आदत छुड़ाने में अधिक मदद करती है। यदि किसी का इलाज चल रहा हो तो उसे मानसिक सहारा दे। कैंसर का इलाज केवल दवाओं से नहीं बल्कि परिवार के विश्वास और साथ से भी आसान हो जाता है। मरीज का मनोबल बढ़ाइए, उसके साथ बैठिए, उसको समय दीजिए और उसका सुने। कुछ आम भ्रांतियां हैं इस विषय में, जैसे कि आवाज बैठी है अपने आप ठीक हो जाएगी। तो मेरा कहना है जरूरी नहीं, यदि 3 सप्ताह से अधिक हो जाएं तो फौरन जांच कराएं। कैंसर का मतलब मौत, बिल्कुल गलत है ये। शुरुआती अवस्था में इलाज से बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। ऑपरेशन हुआ

0: तो कभी बोल ही नहीं पाएंगे।
1: अरे ऐसा नहीं है, आज आधुनिक यंत्रों से, तकनीकों से मरीज फिर से संवाद करना सीख जाते हैं। श्रोताओं, हम अपने मोबाइल का कवर बदल लेते हैं, गाड़ी की सर्विस करा लेते हैं, लेकिन अपनी आवाज की देखभाल उसे क्यों अक्सर भूल जाते हैं? लगातार बैठी हुई आवाज शरीर का एक संदेश हो सकती है। समय पर जांच, सही इलाज और स्वस्थ जीवन शैली से इस बीमारी पर काफी हद तक विजय पाई जा सकती है। अपनी आवाज को संभालिए, क्योंकि यही आपकी पहचान है, आपके रिश्तों का माध्यम है और आपकी भावनाओं की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। सेहत की रखवाली में छोटी छोटी बातें न टाल, समय पर जांच जो करा ले, खुशियों से भर जाए उसके हर साल। अभी समय है इंडियन कैंसर सोसाइटी के विषय में बताने का। आईसीएस का उद्देश्य है कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाना और कम खर्चे में अच्छी क्वालिटी की फैसिलिटीज देना। हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है 9910516562, 9910516562। इस नंबर पर आप कभी भी कैंसर से रिलेटेड अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। एक इमोशनल सपोर्ट ग्रुप है कैंसर सहयोग, इसमें वॉलंटियर्स दिल्ली और एनसीआर के हॉस्पिटल्स में विजिट करते हैं, पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज या केयर गिवर्स को इमोशनल सपोर्ट देते हैं। प्रशांति, ये आईसीएस का हीलिंग और रिहैबिलिटेशन सेंटर है, जहां आफ्टर कैंसर नॉर्मल लाइफ जीने में पेशेंट्स को हेल्प दी जाती है। यहाँ ब्रास एंड प्रोस्थेसिस प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट है कैंसर जागृति, ट्रेन्ड वॉलंटियर्स जगह जगह जाकर कैंसर अवेयरनेस टॉक्स देते हैं। रेडियो टॉक्स भी एफएम रेडियो 106.5 रेनबो पर हर फ्राइडे को होती है। अब बात करते हैं स्क्रीनिंग की। आईसीएस का एक डिटेक्शन सेंटर है, जिसका एड्रेस है 42 बाबर रोड दिल्ली, जो मंडे टू फ्राइडे 9 AM to 12 PM खुला रहता है। यहाँ ब्लड टेस्ट, चेस्ट एक्सरेज एंड फिजिकल एग्जामिनेशन किए जाते हैं, और वो भी बहुत कम पैसे में। आईसीएस ने रिसेंटली एक ऐप लॉन्च किया है, राइज अगेंस्ट कैंसर, जिसका उद्देश्य है कि एक ही जगह पर पेशेंट को पूर्ण और सही इन्फॉर्मेशन मिले। आईसीएस की भरपूर कोशिश है कि भारत को पूर्णतः कैंसर मुक्त बना सके। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ डॉक्टर्स, एक्सपर्ट डॉक्टर्स की कुछ कैंसर्स के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी है। तो मैं ये कहती हूँ कि स्वस्थ रहिए, सजग रहिए और अपनी आवाज की कद्र कीजिए। धन्यवाद।
2: इंडियन कैंसर सोसाइटी कहने आए हैं ये बात, कैंसर को हराना है हमारे साथ, कैसे इससे लड़ना है सुनो हमारी बात, क्योंकि कैंसर नहीं है लाइलाज, दुख में सुख में हम हैं आपके साथ, इंडियन कैंसर सोसाइटी।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, गुड आफ्टरनून, आकाशवाणी पर आप हैं मेरे साथ। मेरा नाम है रंजन और कार्यक्रम शुरू हो गया है बिंदास बोल। देखिए, आप लोग कंफ्यूजन होती है, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो उस समय भी कह रहे हैं कि मेरे वाला गाना सुना दीजिए, विच इज वेरी सिंपल। आप देखिए, इस तरह से याद कर लीजिए कि हर महीने के तीसरे शुक्रवार, द थर्ड फ्राइडे ऑफ एवरी मंथ, हम आते हैं आपके साथ लेके कार्यक्रम बिंदास बोल। उसका रीजन ये है कि ये वो कार्यक्रम है जहां पर हमारे सभी कार्यक्रमों के बारे में आप अपनी राय रख सकते हैं, अपनी शिकायत रख सकते हैं, अपनी तारीफों के पुल

सकते हैं, हमारी तारीफ कर सकते हैं, हमें और उत्साह के साथ भर सकते हैं कि हम आपकी सेवा में यूं ही 2400 घंटे हाजिर रहें। जैसे इरशाद जहां विद्या विहार मुंबई से लिखती हैं, उन्होंने हमें ईमेल किया है और लिखती हैं कि रेडियो सुनते सुनते हम बड़े होते गए, च्वाइस बदलती रही मगर रेडियो साथ रहा। दोपहर से मम्मी बहनों के प्रोग्राम सुनती, पापा समाचार, हॉकी और क्रिकेट खेल की आंखों देखा हाल, कमेंट्री सुनते रहते, बच्चों का कार्यक्रम, मूवी के संपादित अंश, मैं और बुआ दोनों इसे अवश्य सुनते, साथ में हवा महल हम सब सुनते शौक से। इस तरह रेडियो परिवार का सदस्य बन गए और रेडियो श्रोता दिवस की भी हमें हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं, जो पीछे भी बीता ही है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि देखिए पूरे महीने की ये ईमेल्स होती हैं और फ्राइडे थर्ड यानी थर्ड फ्राइडे ऑफ एवरी मंथ हम आप तक पहुंचते हैं और आपकी बात आप तक पहुंचाते हैं। भाई इसमें आपने बहुत पुराने हमारे कार्यक्रम का भी जिक्र किया है, यानी अपने बचपन से लेके आप आज तक बड़ी हो गई हैं। एक खास चीज आपने बातों बातों में कह दी है और वो सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बुआ की दुआ भी आपके साथ है। मुझे ऐसा लगता है बुआ आपके साथ ही है ना, ऐसा ही है ना, बुआ आपके साथ रहती हैं या ज्यादा समय बिताती हैं। तो थोड़ा अगर इस बारे में अगली बार बताएंगे तो और भी अच्छा लगेगा। खैर मुक्ति सैनी का प्रोग्राम इन्हें बहुत अच्छा लगता है ये। वैसे आपने और भी बात बता रही है कि 5:30 लगभग शाम को हमें सुनना चालू करती हैं, 6 बजे तक वॉक करती हैं, उसके बाद मैसेज मसाला मिक्स सुनती हैं, 7 बजे से अपनी दुआ नमाज में लग जाती हैं, 8 बज जाते हैं, डिनर का समय हो जाता है और रेडियो सुनते सुनते चाय पीती हैं। इस तरह उम्र में यही शाम होती है, यानी इस उम्र में इसी तरह शाम होती है। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा इरशाद जहां जी, मुंबई से आपने स्पेशली इतने प्यार से अपने दिल की बातें कहीं, अपने घर की बातें कहीं, अपनी बुआ के बारे में बताया, अपने माता पिता बहनों का, और बचपन से लेके हमारा जो ये रिश्ता है यूं ही आगे फलता फूलता रहेगा, ये हमारी दुआ है, ये हमारी कामना है। अगला गाना इस कार्यक्रम का जो पहला गाना है वो स्पेशली हम डेडिकेट कर रहे हैं आज हमारे दिल को। देखिए आपने क्या बात कर दी सोनू, आपने कहा हम आपका नाम नहीं लेते, मुझे याद पड़ रहा है मैं गाए बगाए हर कार्यक्रम में आपकी बात करता हूं। और ये गाना आपने पीछे किसी कार्यक्रम में मेरे से रिक्वेस्ट किया था, उस समय कंप्यूटर जी ने नहीं दिखाया था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, आपकी पसंद से ही आज कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सोनू, अब तो मान जाइए।

सुखलाल बाला वेस्ट बंगाल से लिखते हैं कि जो सर बॉलीवुड ट्रेल प्रोग्राम में आपके गाने कम चलाया करें, मैसेज ज्यादा लिया करें, हम सबका नाम लीजिए मेरे वाले सॉन्ग में। मुझे ऐसा लगता है कि आप मैसेज चुन चुन कर लेते हैं।

जी हाँ, एक बार आ गए हम आपसे और बार बार आपसे पुनः यही निवेदन है कि अपनी बातें आप बिंदास होके रखिए, जैसे सुखलाल बालाजी ने कहा है। देखिए, आप लिखते हैं कि मैं चुन चुन के मैसेज लेता हूँ, 4 महीने हो गए। अब देखिए, आपका मैसेज सामने आया, हमने लिया ना। अब आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स।

शहर से हैं या फिर विदेशों में भी जो लोग बसे हैं हमें सुनते हैं, और हम कभी भी कुछ भी काम चुन चुन के नहीं करते हैं. मतलब देयर इज नेवर दिस थिंग इन अवर माइंड कि हम खास किसी का नाम लें और उसे चुनने में बैठे. इतना हमारे पास समय इतना समय नहीं होता सर. आप कभी लाइव चेयर पे बैठ के देखिए, हॉट सीट है, अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं. खैर, आरजे आपका नाम क्या है? जब भी आपको सुना नाम नहीं सुना. सुनीता शर्मा शालीमर बाग से कैसी बात कर रही हैं सुनीता जी? एक क्यों जी गल करते पे तुसी. मेरा नाम रंजन है और आप कितनी बार आपने हमारे कार्यक्रम में अपनी रिक्वेस्ट का गाना सुना है? अब आप आवाज किसी से अगर कंफ्यूज कर रही हैं, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग. खैर देखिए, बहुत से लोग ऋषिकेश से, समय पुनीत रावत हमें मैसेज लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून कह रहे हैं, और बहुत से लोग हैं गाने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं. तो मैं फिर से पुनः हाथ जोड़ के अपने बुलंद आवाज में कहूंगा कि आज बिंदास बोल कार्यक्रम आ रहा है जहां हम बातें कर रहे हैं मीठी मीठी. और अब मैं कई दफ़ा कहता हूँ ना कि आप शिकायत भी भेज सकते हैं. देखिए मैं ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, इसका मतलब ये नहीं कि ज़रूरी है कि शिकायत भेज तारीफ़ें भेजो, तारीफ़ों मेरी तारीफ़ों के पुल बांध दो और उसके ऊपर जैसे कहीं अगर बारिश में पानी जमा हो जाता है तो उस पर चल के निकल सकते हैं आप. सोचने में क्या जाता है? आशीष कुमार झा लिख रहे हैं, अंग्रेजी में इन्होंने लिखा है, मैं इसका तर्जुमा कर देता हूं हिंदी में साथ के साथ, कोशिश करता हूं. हॉटलाइन बातें इधर उधर की जो कार्यक्रम आता था इन्हें बहुत पसंद था. सुबह 10 से 11 आता था जहां लिसनर्स अपने दिल की बात कहते थे, तो एक लिसनर दूसरे लिसनर को ऑन फोन ऑन एयर सुन पाता था. ये कह रहे हैं ऐसा कार्यक्रम वापस से लेके आइए. एंड देयर इज वन मोर रिक्वेस्ट जो मुझे भी लगता है कई बार कि ऐसा हो जाए तो अच्छा होगा. मैं बता रहा हूँ सीरियसली, आपकी और मेरे ख्यालात कितने मिलते हैं. आप कह रहे हैं कि सुबह 10 से 11 जो कार्यक्रम है और शाम को 7 से 8 जो पहले हिंदी का होता था अब वेस्टर्न का हो गया है, तो वो वापस से वही पुराना कर दीजिए क्योंकि हम लोग को पुराने आदत है और उस समय ज़्यादा लोग हिंदी सुनना चाहते हैं. ठीक है, वैसे देखिए सुबह जो 10 बजे का कार्यक्रम उसमें 3 हिंदी गाने तो हम सुनाते हैं ना, है ना, है ना, है ना. सो आपकी बात हमने समझ ली है, पढ़ भी दी है, सबको बता दी है. इसके अलावा हम अपने बड़े अधिकारियों तक ये बात पहुंचाएंगे और उसका देखिए रीज़न क्या है, मैं शायद ये आपको समझाता हूं. क्योंकि अब हम हर एक आरजे एक घंटे के बाद एक घंटा रेस्ट करके फिर दूसरे घंटे में आता है, तो वो कुछ ऐसा बात बनी होगी कि वो यू नो उस सिस्टम पे आ भी सकते हैं नहीं आ सकते हैं, थोड़ा इंतज़ार कीजिए. अभी तो आप जिस तरह से हमें सुनते रहते हैं आगे भी चेंजेस होंगे जैसे पहले चेंजेस होते रहते. देखिए नथिंग इज कॉन्स्टेंट, जीवन में कुछ स्थाई है तो वो चेंज है. सो नेहा का इन्हें प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है. साथ में आप लिखते हैं कि उनकी बातें, उनकी अदायगी बड़ी नेचुरल लगती है और उनको ज्यादा एयर टाइम देने की सिफारिश भी आप कर रहे हैं. बताइए कमाल ही हो गया. आप लोगों की ये खासियत है जिस आरजे को आप पसंद करते हैं, जिनकी आवाज आपको अच्छी लगती है, किसी का कहने का अंदाज, किसी के गाने बहुत अच्छे लगते हैं, तो अब मन करता है कि वो बार बार आए और लगातार आए. इसी तरह से तारीफें, शिकायतें, प्यार भरी बातें बिंदास होके लिखिए. हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है feedback@rainbow.gmail.com. और अगर तुरंत तुरंत जुड़ना चाहते हैं तो 9868107070 पर कीजिए व्हाट्सएप, जुड़ जाइए बिंदास बोल में.

0: जी आपकी मीठी मीठी बातें, मीठे मीठे बोल मेरे तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि कार्यक्रम ही है बिंदास बोल और आपकी प्यारी प्यारी बातें मेरे तक आ रही हैं। बड़े सारे व्हाट्सएप मैसेजेस भी आ रहे हैं, ईमेल्स भी बीच बीच में लेते रहेंगे। अब भैया व्हाट्सएप भी आप कर रहे हैं तो लेना बंदा है, बंदा है क्या? शशि कपूर साहब आए थोड़े से? नहीं कोशिश करूंगा। ओके सर, बीच बीच में जो इंग्लिश प्रोग्राम आते हैं क्यों आते हैं, जबकि ये तो हिंदी एफएम चैनल है? सॉरी सर, मैं पता नहीं था, ऐसा लिखते हैं। अरे नाम क्यों नहीं लिखते हो, आपका नाम ढूंढने के लिए वापस जाना पड़ता है। पुनीत रावत, पुनीत जी प्राइमरीली देखिए बहुत सारी लैंग्वेजेस की बातें होती हैं, स्पेशली हिंदी प्रोग्राम्स पे तो सबसे ज़्यादा जोर है ही है, साथ ही साथ कुछ अंग्रेज़ी कार्यक्रम भी हैं। अब देखिए बायलिंगुअल होना बड़ा अच्छा होता है, इससे बड़े छोटे बच्चे जो हैं अंग्रेज़ी का उनका ज्ञान बढ़ता है, अंग्रेज़ी को कैसे भाषा में किस तरह से बातचीत की जाती है, उनके उनका प्रोनंसिएशन ठीक होता है, तो इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। तो रेडियो सिर्फ आपका मनोरंजन नहीं करता, आपको इन्फॉर्मेशन भी देता है और पढ़ाई लिखाई में भी बड़ा मदद देता है। अभी जो पिछला कार्यक्रम मैं कर रहा था, कुछ स्कूल के बच्चे हमारे स्टूडियो में आए, उन्होंने पहली दफ़ा देखा लाइव प्रोग्राम कैसे होता है, कैसा स्टूडियो है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझे लगता है जब बचपन में मैं कभी गया होता स्टूडियो में तो मेरा विकास और अच्छा होता और ज़्यादा होता ठीक है। तो कुछ कुछ बीच में यू नो प्रादेशिक भाषाओं के कार्यक्रम भी हमारे रहते हैं, वो भी आप सुनते रहते हैं। कई बड़े सारे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स होते हैं कुछ खास प्रदेश के, वो भी आप तक पहुंचते हैं। क्रिकेट और न्यूज़ और साथ साथ स्पोर्ट्स की बातें भी होती हैं, तो ये मिला जुला के सब कुछ है। सिर्फ ये कह देने का, हाँ भाई सिर्फ हिंदी का ही कार्यक्रम चलेंगे, तो थोड़ी अपनी सोच को और विस्तार दीजिए। आई एम श्योर आप इन्जॉय करेंगे। जैसे मैंने कहा, सुबह का जो 10 से 11 का कार्यक्रम है उसमें बाकायदा 3 हिंदी के गाने भी बजते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जर्मनी से सनी कपूर हमें मैसेज कर रहे हैं कि रंजन जी हेलो, मैसेज मसाला मिक्स और आपकी याद आती रही इनके फेवरेट हैं, वंडरफुल, थैंक यू सो मच। जर्मनी में क्या टाइम हुआ है लिख के भेज दीजिएगा, वरना मुझे ऑनलाइन जाके चेक करना पड़ेगा। और रंजन जी आपने मेरी शिकायत के लिए दिल से जो ली उसका धन्यवाद, सॉरी भी लिख के भेज रहे हैं। नहीं सोनू, डोंट बी सॉरी यार, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत व्यस्तता होती है, आप लाइव प्रोग्राम करते हैं, हम ये रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते। इस समय जैसे ही मैं बोल रहा हूँ उसी समय मैं सोच रहा हूँ, उसी समय आपका मैसेज पढ़ रहा हूँ, अगला गाना क्या बजाना है वो देख रहा हूँ, कुछ स्पॉट्स हैं, कुछ ऐड हैं, कोई सामने से आ गया कमरे में, वो अगली न्यूज़ के लिए आ गया, कोई चेंजेस आ गए, lot of things are happening लेकिन हम आपको पता नहीं लगने देते ना, तो इसी कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं कि बिहाइंड द सीन्स क्या कुछ चल रहा होता है, ठीक है। अनिता वर्मा द्वारका से लिख रही हैं कि रोटेशन के साथ एक दिन नए सॉन्ग एक दिन ओल्ड सॉन्ग सुनवाइए, अनाउंसमेंट करें आज ओल्ड या नए सॉन्ग है दिन भर और इस तरह से चलेंगे। अरे वाह, आप तो मतलब दो कदम आगे ही चली गई अनीता जी। फिर उसमें ये हो जाएगा, देखिए आपकी बात भी सही है, आपका मूड उस दिन पुराने गाने सुनने का और चांस की बात है उस दिन हम सारे नए बजा रहे हैं, तो मिला जुला चलने दीजिए ना। रात के समय जब हमारे कार्यक्रम होते हैं, कुछ देखिए हमारा शेर व शायरी और नगमों से भरा और गज़लों से भरा कार्यक्रम आता है, उस समय आप अपना सुनिएगा तो आपको गज़लों का आनंद मिलेगा। उसके अलावा अर्ली मॉर्निंग आप सुनते हैं तो उसमें भी गाने हमारे थोड़े से समय के हिसाब से उतने ज़्यादा लाउड नहीं होते, तो ये ध्यान रखा जाता है। आप गौर से पूरा दिन सुनिए तो एंड यू कम टू नो कि भाई हम कहाँ क्या प्ले कर रहे हैं, क्या किस तरह के गाने, किस तरह की बातें हो रही हैं, वो समय के अनुरूप हम बात करते हैं। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लौट के आते हैं, कहीं मत जाइएगा, यूं ही सुनते रहें बिंदास बोल, ढेर सारी बातें ढेर सारे बोल, और ऐसे में आप खोल देते हैं कुछ आरजेस की फोन।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त,
2: पता का चाय गजब का स्वाद।
3: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
4: प्रिया ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है, 40 मिनट में बेगमपुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
3: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
5: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
6: हिमालय की गोद से लेकर
7: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
6: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
7: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
6: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
7: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
6: तो सुनना ना भूलें
7: रेनबो डेस्टिनेशंस
6: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
8: सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

जी हाँ, मिल गए छोरा छोरी, मस्ती थोड़ी थोड़ी। आई हेट लव स्टोरीज, आई हेट टीयर्स। पुष्पा देखिए जमाना क्या बदल गया। एक खन्ना साहब, राजेश खन्ना साहब ने कहा कि आई हेट टीयर्स पुष्पा, और अब हाल ही में फिल्म आई पुष्पा, और वो कहता है वहां पे नायक क्या कहता है, पुष्पा समझ के फ्लावर समझाई क्या। अरे फायर है मैं, फायर फायर। आपके मैसेज में भी बहुत फायर है, और आपके तड़कते भड़कते प्यार भरे मैसेज जब हम तक पहुंचते हैं, सचमुच दिल को बहुत सुकून मिलता है। ऐसा बड़ा प्यारा सा आपने लिखा है, प्रगति राज पटना से लिखती हैं, बिंदास बोल कार्यक्रम में सुन रही हूं, और मैं इस पर ये कहना चाहूंगी कि आज मेरा वाला सॉन्ग कार्यक्रम का टाइम थोड़ा आपको बढ़ाना चाहिए। ठीक है जी, ये बात मैं ऊपर तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, और हो सकता है समय बढ़ भी सकता है, यू नेवर नो, यू नो, या फिर कुछ दिन बढ़ सकते हैं मेरे वाला सॉन्ग के, थिंग्स कैन बी एडजस्टेड। आपकी तभी तो ये विचार हम यहाँ पे मांगते हैं आपसे। और जो लोग अभी अभी जुड़े हैं, हम बता देंगे 9868107070 हमारा नंबर है, व्हाट्सएप कीजिए, अपने नज़रिया भेजिए, आपकी नज़र में हमारे कार्यक्रम कौन से अच्छे हैं बुरे हैं, सब कुछ लिख के भेज दीजिए। डोंट वरी, डरिए मत, बिंदास होके बोलिए। हाँ सर जी, आदाब आदाब, आपके सारे प्रोग्राम पसंद आते हैं, खास तौर से रंगे महफिल बहुत पसंद आता है, मेरा वाला सॉन्ग हमें नज़रअंदाज कर दिया जाता है जी, मेरा वाला सॉन्ग में अच्छा ऐसा आपको लगता है। खैर, फारूक अली खान, फैजी

फराज फरहीन फरहान फारिया ताहिरा, नाम इतनी बार हमने लिया है आपकी, कितनी रिक्वेस्ट प्ले की हैं। अब देखिए, ज्यादा का इरादा है तो हम क्या कर सकते हैं। कस्बा गुन्नौर यूपी से आपने लिखा है, मन है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं, है ना। गा दूं एक लाइन, दिल है कि मानता नहीं, ऐसा होता है ना, बट कोई बात नहीं। मैसेज करते रहे, आपके प्यार भरे मैसेज आ रहे हैं। जैसे सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी और सिमरन मुखी ने हमारे पास ये मैसेज लिखा है, कमाल की बात है, आपने मैसेज भी कर दिया है, इसके अलावा आपकी ईमेल भी मेरे पास है। हाँ बताइए क्या शामिल किया जाए। आपने बाकायदा तारीखों के साथ लिख के भेजा है कि 14 अगस्त को जो कार्यक्रम हुआ था, मैं पहले आपकी ईमेल पढ़ देता हूँ, उसमें बॉलीवुड ट्रेल्स में बिल्कुल ठीक उत्तर भेजा था मैंने, MWS में मेरी पसंद का गीत सुने, मेरे वाला सॉन्ग में, मेरे वाला गाना है वैसे। देखिए आप हमें कन्फ्यूज कर रहे हैं, MWS क्या होता है, MWG लिखिए, पूरा नाम लिख के तो भेजिए, मतलब एक्स्ट्रा काम कराओगे, मेरा प्रोसेसर हैंग हो जाएगा। खैर, मैं अपनी पसंद का गीत सुनने के लिए मैसेज मैंने भेजा, दोनों ही कार्यक्रमों में हमारा मैसेज को इग्नोर किया गया। कैसी बात कर रही हैं आप सिमरन जी, अनीता जी, अब आप ऐसी बात करके मेरा मन दुखा देते हैं। देखिए आपके कई मुझे कार्यक्रम में, मैंने अपने पर्सनली कार्यक्रम में आपके कितनी बार गाने रिक्वेस्ट हैं जो प्ले किए हैं। हाँ, 14 तारीख को कोई और बना था बॉलीवुड सरताज, वो कार्यक्रम भी मैं ही कर रहा था बॉलीवुड ट्रेल्स, तो उसका रीज़न ये है कि अब इतने सारे मैसेजेस में उस दिन आपका मैसेज नहीं लिया गया, किसी और को बना दिया गया बॉलीवुड सरताज, तो इसमें कॉम्पिटिशन की भावना नहीं रखनी चाहिए कि भाई मेरा हर कार्यक्रम में मुझे ही सरताज बनाया जाए। तो थोड़ा रुकिए, हर किसी को एक महीने में, दो महीने में या तीन महीने के ठहराव के साथ बातें बनाया जा सकता है। हर हफ्ते अगर किसी को या हर कार्यक्रम में बना दिया जाए तो वो भी थोड़ा सा जाती हो जाएगी बाकी लिसनर्स के साथ। बाकी आप क्या समझते हैं ये आपके ऊपर है। आपने शायद यही बातें कुछ लिख के वापस से भेजी हैं, बट अब मैंने आपकी ईमेल भी ले ली है और आपके मैसेज में भी एक लगभग वही बात है, लबुलबाब यही है। सुनीता शर्मा शालीमार बाग से लिख रही हैं कि आपकी वॉइस के साथ आपकी प्रस्तुति भी बिंदास है। थैंक यू सो मच सुनीता शर्मा जी, अब आपको मेरा नाम आगे के लिए हमेशा याद रहेगा। तुलसी कुमार की आवाज में और केके की आवाज में आपके मन की भावनाएं, सभी श्रोताओं की भावनाएं, हमारे प्यारे से चैनल आकाशवाणी रेनबो के प्रति हमको प्यार हुआ।

0: जी आप सुन रहे हैं बिंदास बोल, मैं हूं आपके साथ रंजन। और देखिए आप लोग जो हम मैसेज में बात करते हैं, डॉली लिखती हैं कि शो एंजॉय हो कर रहे हैं हम, और पुष्पा का डायलॉग अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, कुछ तो आपको हमारी बातों में अच्छा लगा। इसके अलावा कह रही हैं कि अपनी बुआ को किसी ने याद किया था, मेरी बुआ को गए 5 साल हो गए हैं कुछ दिन पहले, आई मिस हर, ओ आई एम सो सॉरी डॉली जी। अपने जाते हैं तो वो दर्द पूरी उम्र रहता है, कम ज़्यादा होता रहता है, लेकिन यादें साथ रहती हैं। सुभाष घई साहब ने बड़ी प्यारी बात इस पे कही थी कि यादें बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं, समथिंग लाइक दैट, ऐसा ही कुछ है ना। मनमोहन सिंह सोनम काव्या और दक्ष यूपी रामपुर ज़िले के मंडवा हसनपुर गांव से लिखते हैं कि बिंदास बोल प्रोग्राम में सर एफएम रेनबो के सभी प्रोग्राम अच्छे चल रहे हैं। सर मेरा ये कहना है कि आप बात से बने बात प्रोग्राम दोबारा से चालू करने की कोशिश करें। और सर मेरी शिकायत भी है, चलो शिकायत अभी थोड़ी देर में लेता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि मैं कोशिश करूं कि बात से बने बात कार्यक्रम दोबारा चालू हो जाए। सर मैं तो पूरा किक स्टार्ट कर दूंगा, जैसे स्कूटर स्टार्ट करते हैं ना, डर मेरा बस चले, बिकॉज मेरा खुद बड़ा पर्सनली फेवरेट प्रोग्राम्स में से एक है। मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी कि इतना ज़्यादा वो कार्यक्रम मैंने जब किया था तो एक आदत सी हो गई थी, जब वो कार्यक्रम ऑफ एयर किया गया तो मैं एक्चुअली 5-7 दिन ठीक से खाना नहीं खा पाया। चलिए आप शिकायत कर रहे हैं कि बबीता मैम और प्रियंका मैम ये दोनों जब भी आती हैं मेरे वाले सॉन्ग में, बॉलीवुड ट्रेल्स में, मेरा मैसेज नहीं पढ़ती हैं, और कई बार नोटिस है कि मेरे वाला सॉन्ग प्रोग्राम हफ्ते में 7-8 दिन पेश किया जाए। यही बात अभी पीछे किसी एक लिसनर ने कही थी, वेल आपकी बात हमने सुन ली है। अगर एडजस्टमेंट हो पाई, हमारे नो रोस्टर में जगह बन पाई, हम दे पाए वो सात दिन तो ज़रूर ये कार्यक्रम लाएंगे, लेकिन उसके अलावा ही बहुत कुछ होता है, इसीलिए मैंने आपकी अर्जी जो है लगा दी है। खैर सावन का महीना, कोई भी गाना सुना दीजिए। आपने लिखा है अहमदाबाद से, तो सर आपने देर से ट्यून इन किया है, आज हम बिंदास बोल कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें हमारे सभी कार्यक्रमों का लबोलुबाब आप बता सकते हैं, क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, ये एक जुड़ाव टू वे कॉन्वर्सेशन है। जैसे जर्मनी में बैठे हुए सनी कपूर कह रहे हैं कि इस समय 10:00 अभी थोड़ी देर पहले कहा था 10:04 हुए हैं सुबह के, जर्मनी में बैठे, बड़ी अच्छी बात है भाई, काम पे नहीं जाना आपने, है सनी हमें आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि अगर जो लोग अच्छा सोचते हैं कई दफ़ा कि भाई पूरी दुनिया में कोई हमें कैसे सुन सकता है, तो आप भी सुन सकते हैं, हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, न्यूज़ ऑन एयर ऐप को डाउनलोड कीजिए, और फिर कहीं भी घूमिए फिरिए हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे। यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक, लौट के आते हैं, कहीं मच जाएगा।
1: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
2: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है, तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
3: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
2: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
4: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं,
5: इग्नोर नहीं, याद करो।
6: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
7: राहुल अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
8: अरे सर फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
7: इम्पॉसिबल
8: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, 1 घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
9: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगम पुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
10: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति,

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
2: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं बिंदास बोल, मैं हूं आपके साथ रंजन। अगर कोई प्रोग्राम मिस हो जाए तो कैसे सुने, हमारे पास लिख के भेजा है, नाम आपने अपना नहीं लिखा है। अंकित, यस, आपकी प्रोफाइल से जाके पता किया नाम। अंकित जी, देखिए ऐसा है, अगर कोई कार्यक्रम मिस हो जाए तो आप अपना फोन रखते हैं, उसमें अगले दिन का जब वो कार्यक्रम आता है, अगले दिन, अगले हफ्ते, जब भी, उसका टाइम डालिए और अलार्म लगा लीजिए, तो नेक्स्ट टाइम आप मिस नहीं करेंगे। और जाहिर सी बात है, मेरे साथ भी होता है कई दफ़ा, मैं जिस दिन स्पेशली अपने कार्यक्रम के लिए आता हूँ तो उससे पहले वाले दिन का कार्यक्रम जो होता है मुझे सुनने के लिए मैं आतुर रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता तो हो ना मेरे से पहले आरजे क्या करके उस दिन तो एक एक लड़ी सी पिरोते हैं हम, एक एक मोती जोड़ के। तो उसी तरह से आप कोशिश कीजिएगा। देखिए, पहले तो रेडियो रिकॉर्ड हो जाता था फ़ोन के अंदर, अब भी कुछ ऐसे ऐप होंगे जिसपे आप रिकॉर्डिंग ले सकते हैं, अपने किसी रिश्तेदार को बोल दीजिए, बताइए, इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ। सर, ओपी सर कहाँ पर है, हम सब लोग मिस करते हैं, काफ़ी दिनों से शो नहीं करने आए, 2020 के बाद प्रोग्राम से नहीं सुनाई देते हैं, लिखते हैं रमन वार्ष्णेय, तनुज रमन वार्ष्णेय, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से, व्यस्तता के कारण नहीं आ पा रहे हैं, जब भी समय लगेगा ज़रूर आएंगे, हम भी उन्हें दोहराते रहते हैं, समय निकाले आइए, आपको लिसनर्स मिस करते हैं। लॉन्ग टाइम, क्या लिखा है जी, 8 से 9 टाइम आउट शो, होपिंग दिस शोज कम बैक, अंग्रेजी में लिखा है, पढ़ी देता हूँ। लॉन्ग टाइम अगो वी यूज टू हैव टेक ऑफ एंड टाइम आउट शोज, आई थिंक बहुत पुरानी बात आप कर रहे हैं, अब तो मेरी भी मेमोरी से कहीं धूमिल है, ऐसे प्रोग्राम आते रहे होंगे जो अब नहीं है, तो नए नए कार्यक्रम जो आते हैं उन्हें आप ज़रूर सुनिए। कुछ तारीफ का भी हमारे पास बड़ा प्यारा सा एक मैसेज आया था, हाँ, देवभूमि से कविता लिखती हैं उत्तराखंड से, आपको, आप तो सबका मनोरंजन करते हैं, आपकी कॉमेडी भी बहुत अच्छी लगती है। देखिए, हम तो प्रयास करते हैं, हम कौन होते हैं, हमने जैसे पहले भी आपसे कहा, आप कई दफ़ा हम लोगों से इस तरह नाराज़ हो जाते हैं कि जैसे हम जानबूझ के आपके मैसेज नहीं लेते, और ऐसी बातें 2-3-4 लोगों ने बार बार कही हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने आपको बताया ना, क्योंकि हम और स्टेशंस की तरह नहीं हैं, कुछ रेडियो स्टेशंस आप सुनते होंगे उसमें जो आरजे बात करते हैं वो कई दफ़ा रिकॉर्डेड होता है, डेफर्ड

होता है, यहाँ सब लाइव होता है, तो उस समय हमें समय के अनुसार और क्लॉक को देखते हुए ब्रेक लेनी है, कितनी बात करनी है, कितना गाना सुनाना है, उसमें इतने सारे मैसेजेस में आपका मैसेज कहीं रह जाता है, जानबूझ के कोई भी आरजे नहीं करता, इस बात की मैं आपको तसल्ली दे सकता हूँ। यहाँ पे हम यही कहना चाहेंगे भाई, अब नेक्स्ट आरजे भी आ गई हैं स्टूडियो में, तो उन्हें देख के मुझे समझ में आ रहा है कि अब मेरे जाने का समय है, लेकिन चलते चलते कुछ एक नाम जरूर कोशिश करूंगा लूंगा, तब तक आप ये गाना सुनिए।

ये गाना मैंने इसलिए बजाया, आप सोचिए कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई आप हमारा मैसेज नहीं लेते, आपको क्या लगता है हम स्टूडियो बैठ के सीटी बजाते हैं ऐसे ऐसे? तो सीरियसली आपको सुनाने के लिए बजाइए सीटी, वरना बिल्कुल नहीं। आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर पूरी तरह से गौर करते हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस आपके ले पाएं, आपके नाम पढ़ पाएं, इसकी हमारी कोशिश रहती है। बस अब और समय इजाजत नहीं दे रहा है। और मैं यही कहना चाहूँगा, सनी का नोएडा से जो मैसेज आया था, पुराने प्रोग्राम्स की बात कर रहे थे, कोलार रोड भोपाल से राम बाबू साहब का, मालवीय जी का मैंने मैसेज ले लिया था। एक बार फिर से ये कुछ एक आरजे से नाराज़ हैं, सेम ही बात की, उनके मैसेज को नहीं लिया जाता है, जो मैं पहले ही उसका आंसर दे चुका हूँ। फिलहाल यहाँ पर रंजन को आप इजाज़त दीजिए, और अगले कार्यक्रम में रेनबो डेस्टिनेशन में आपके साथ रहेंगी सृजन, और वो आपको कहीं लेके जाएंगी, अब वो खुद ही बताएंगी। यहाँ से स्टूडियो से मुझे लापता होने का समय आ गया है। यह भी इसलिए प्ले कर रहा हूं क्योंकि अब आगे से शिकायत नहीं होगी ना आपकी कि मैसेज कहां हो गया लापता जी, कहीं नहीं गया। अगर ऑन एयर नहीं पढ़ पाते तो बाद में भी पढ़ते हैं, और आपके ये विचार, आपकी बातें, आपके सुझाव, आपकी तारीफें हमारे दिल के बहुत करीब रहती हैं। टेक केयर, बाय बाय।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 की फ्रीक्वेंसी से। लीजिए प्रस्तुत हैं 2 बजे के मुख्य समाचार। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की

अध्यक्षता में पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक चल रही है। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। भारत और ब्राजील ने दूर संचार और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाएं देने के संबंध में विधि स्नातकों के लिए अनिवार्य 3 वर्ष की वकालत की अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी है। झारखंड उच्च न्यायालय ने भारत सरकार द्वारा जीएसएससी, सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करेगा। इस रेलगाड़ी के उधमपुर स्टेशन पर रुकने की सुविधा का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया है। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल अरेस्ट साइबर धोखाधड़ी गिरोह का पर्दाफाश कर पंजाब और राजस्थान से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी नेता कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुंबई के कुर्ला पूर्व इलाके में आज तड़के एक क्रेन के घरों पर गिर जाने से 8 लोग घायल हो गए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आज सुबह इस्लामाबाद की एक निजी अस्पताल में चिकित्सीय जांच के बाद रावलपिंडी की अदियाला जेल वापस भेज दिया गया। अमरीका ने क्यूबा की निर्माण, खनन और धातु क्षेत्रों से जुड़ी 9 सरकारी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए। साथ ही क्यूबा की सरकारी कंपनियों के साथ कारोबार करने वाले अमरीकी नागरिकों पर भी पाबंदियां कड़ी की। सरकार ने इंडिया पोस्ट के नाम पर ऑनलाइन प्रसारित फर्जी सर्वेक्षण का खंडन किया, जिसमें 20,000 रुपये का नकद इनाम देने का दावा कर लोगों से उसकी निजी जानकारी देने को कहा जा रहा है। और खेलों में हॉकी विश्व कप दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज एम्सलेविन में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: आकाशवाणी एफएम रेनबो सुन रहे हैं 102.6 की मैजिकल फ्रिक्वेंसी से। मैं हूं दिल्ली की चाशनी गुड़ी सृजन, लेकर आई हूं कार्यक्रम आशियाना। और आज फ्राइडे स्पेशल रेनबो डेस्टिनेशन सुनेंगे आप, यानी आपको कहीं लेकर जा रही हूं मैं। तो कर लीजिए अपने बैकपैक को टाइटली टाई और चल दीजिए मेरे साथ इस सफर पर। ये सफर हमें लेकर जा रहा है दक्षिण भारत, जी हाँ, साउथ चल रहे हैं। और वो भी कहाँ, हम चले हैं चेन्नई। जी हाँ, चेन्नई, जिसे हम पहले मद्रास या चेन्नापट्टनम के नाम से भी जानते हैं। क्या आपको लगता है चेन्नई सिर्फ बीचेस और इडली का शहर है? नहीं, ये उन शानदार पर्यटन स्थलों में से एक है जहां पर जाकर आप अपने आप को रोमांचित और कई जगहों को देखकर तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। अक्सर फिल्मों में तो आपने इन जगहों को देखा होगा और मन करता होगा ना कि चल दें, तो चल देते हैं ना। चलिए उठाइए अपने बैग को, अपनी फैमिली को, और तैयार हो जाइए। तो चेन्नई पहुंचे कैसे आप? बाय प्लेन, बाय ट्रेन, बस, या फिर अपने व्हीकल से भी ड्राइव करके पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने व्हीकल से ड्राइव करके इतना लंबा, मतलब कहीं आप अगर दिल्ली से ही, हम मान लीजिए अमूमन इतना लंबा जा रहे हैं, तो आप दो जने तो ऐसे होने चाहिए जो कि परफेक्टली ड्राइव कर सकते हैं। चलिए अब हम बाय प्लेन पहुंचते हैं चेन्नई। तो इसके लिए आपको जाना है चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि देश, मतलब चेन्नई के जो सभी जगह हैं, बड़े बड़े शहर हैं, उनसे जुड़ा हुआ है। और देश के, यानी आप दिल्ली से चाहें तो भी चेन्नई एयरपोर्ट जा सकते हैं, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली के लगभग, मतलब यानी कि हर जगह से आप चेन्नई पहुंच सकते हैं बाय ट्रेन। और चेन्नई के अगर मुख्य स्टेशंस की बात करें, बाय रेल अगर आप जाना चाहते हैं, तो आप चेन्नई सेंट्रल, चेन्नई एगमोर, यहाँ तक की ट्रेनें कहीं भी ले सकते हैं। सभी लगभग बड़े शहरों से ही आप ये सफ़र कर सकते हैं चेन्नई तक का बाय ट्रेन। और अगर आपने सोचा है कि बाय रोड चलें, तो आप CMBT यानी चेन्नई मफसल बस टर्मिनल्स, जो कि लगभग सब बड़े बस अड्डों के साथ जुड़ा है, पड़ोसी राज्यों से जुड़ा हुआ है, इस तरह से बाय रोड आ जाइए। और क्या ध्यान रखना है? जी आपको ध्यान रखना है कहीं आपकी भी चेन्नई एक्सप्रेस मिस ना हो जाए। यस, गेट ऑन द ट्रेन।

जी हाँ, निकल न जाए कहीं चेन्नई एक्सप्रेस सफर पर निकले हैं रेनबो डेस्टिनेशन, मरीना बीच चले, कपलेश्वर मंदिर या फिर संतोम बेसलिका, ये सभी वो जगह हैं जहां पर कि आप चेन्नई के जरिए पहुंच सकते हैं। इन सभी पर बात करते हैं, लेकिन अभी तो आप गाना एंजॉय कीजिए। देखिए आप कहीं सच में तो चेन्नई नहीं पहुंच गए हैं।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर

0: बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
3: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
2: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
4: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं।
5: इग्नोर नहीं, याद करो।
6: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

102.6 रेनबो सुन रहे हैं आप और प्रोग्राम है रेनबो डेस्टिनेशन चेन्नई घूम रहे हैं हम और बेस्ट टाइम क्या है जान लीजिए यहाँ जाने का अक्टूबर से फरवरी। अब आप कहेंगे सृजन अभी क्यों लेकर चल दी, तो अभी आप प्लान करेंगे तभी तो दो महीने बाद अक्टूबर आते ही आप पहुँच जाएंगे ना चेन्नई। तो आप अभी से अपनी ट्रेन प्लेन टिकट जैसे भी आप जाना चाहते हैं ना प्लान करना शुरू कर दीजिए। अक्टूबर से फरवरी आप जा सकते हैं। कहाँ चलें, तो चलते हैं आपको अतीत में लेकर महाबलीपुरम। जी हाँ, चेन्नई में जब महाबलीपुरम आप पहुँचते हैं तो ये सचमुच एक अनमोल जगह है, जहाँ पर खासकर जब आप अपनी फैमिली के साथ होते हैं तो उन प्राचीन चट्टानों को देख कर जिन्हें काट कर मंदिर और मूर्तियों को बनाया गया है, आपको एक अनूठा सा एहसास होता है। इतिहास और ताज़ी समुद्री हवाओं का एक अनूठा संगम यहाँ महाबलीपुरम में है। आप क्या क्या देखेंगे यहाँ पर जाएंगे, तो आप शो टेंपल देखिए, पंचरथ देखिए, अर्जुन की तपस्या का स्थल देखिए, और पत्थर की जो मूर्तियां हैं ना आप वो खरीद सकते हैं और उन्हें अपने साथ भी ला सकते हैं। जी हाँ, पत्थर की कटाई इस ढंग से की जाती है कि उन्हें सुंदर मूर्तियों का आकार दिया जाता है। और एक एडवाइस दूं, देखिए अगर भीड़ से बचना चाहते हैं और महाबलीपुरम की शांति का आनंद लेना चाहते हैं ना, तो सुबह की कोमल रोशनी में इन स्मारकों को देखने के लिए निकल पड़िए। अगली जगह लेकर चल रही हूँ आपको पुलिकट झील। तो पुलिकट झील जो है अपने आप में एक जादू का एहसास दिलाती है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील कही जाती है और यहाँ पहुँच कर आप पक्षियों को देखिए, उन्हें अपने कैमरे से कैच कीजिए, कैप्चर कीजिए, लेकिन साथ साथ आंखों में उस जगह को, उस प्लेस को बसाने का प्रयास कीजिए। लेगुन में आप जो है नौका विहार कर सकते हैं, आप साथ ही यहाँ पर फ्लैमिंगो और पेलिकन जैसे जो प्रवासी पक्षी हैं उनका आना जाना देख सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि इन कलाकृतियों को आप अपने कैमरे से देख सकते हैं, दूरबीन से देख सकते हैं, और अगर आपके पास मोबाइल है जिससे अच्छी तरह से आप जूम कर पाएँ तो देखिए उसे दूर दूर तक घुमाइए और आपको कुछ अलग ही तस्वीरें, कुछ अलग ही चीज़ें नजर आएंगी। क्यों ना कोवलोंग बीच चलें। जी हाँ, चेन्नई का एक शांत तटीय स्थल है कोवलोंग बीच। आप यहाँ पर सर्फिंग कर सकते हैं, काइकिंग कर सकते हैं और समुद्र तट पर बस ऐसे ही रेत पर अपने निशानों को बनते देखिए, आपको एक अलग ही शांति का एहसास होगा। कुछ अन्य जगह हैं उन पर चलते हैं, लेकिन साथ साथ क्योंकि हमारे बॉलीवुड फिल्में भी वहाँ पर शूट हुई हैं, कुछ फिल्में जो है डब होकर जो है उन्हें यहाँ पर बनाया जाता है, तो सीन्स जो हैं, गाने जो हैं वहीं के धुनों में होते हैं, वो रोमांच, वो मस्ती उनमें झलकती है। तो चलिए, थैंक यू चिका।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे
3: जो हाँ दिल से ही बातें हो रही हैं मेरे साथ हैं यानी दिल्ली की चाशनी गुड़ी सृजन आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 की मैजिकल फ्रिक्वेंसी और चले हैं हम रेनबो डेस्टिनेशन चेन्नई के दौरे पर। तो कहाँ कहाँ जाना है देखिए आप चलिए वेदांगथल पक्षी अभयारण्य, ये जो है ना अपने आप में 40,000 से अधिक पक्षियों का घर है। वास्तव में हरा भरा स्वर्ग अगर इसे मैं कहूँ तो कोई दोराहे नहीं होगी, कोई उपमा नहीं है। आप जब भी इस तरफ निकलें तो आप अपने कंफर्टेबल शूज पहनिए, पानी साथ रखें क्योंकि अभयारण्य काफ़ी बड़ा फैला हुआ है, और साथ ही अपनी डायरी के लिए कुछ तस्वीरें क्लिक करना ना भूलें। मुत्तुकाडु चलिए चेन्नई से बस कुछ ही दूरी पर बैक वाटर की ये सबसे अच्छी जगह है, एक शांत स्थल है। आप यहाँ पर बोटिंग कर सकते हैं, विंड सर्फिंग कर सकते हैं और साथ ही सनसेट के साथ अपनी पोसेस देते हुए तस्वीरें खिंचवाना बिल्कुल ना भूलें। और पूरी इस भव्यता को आप देखना चाहते हैं ना तो अगर आप इसे वीकेंड के लिए प्लान कर रहे हैं तो मुझे लगता है इससे बढ़िया बात कुछ नहीं होने वाली। तिरुवल्लुवर, जी हाँ, संत तिरुवल्लुवर की किसान के तौर पर एक छोटा और शांत शहर है और चेन्नई के आसपास की जगहों में आप इसे एक्सप्लोर करना ना भूलें क्योंकि यहाँ पर आपको एक स्पिरिचुअल जो है शांति का एहसास होगा। साथ ही आप यहाँ पर वीर राघवा पेरुमल मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। मंदिर के दर्शन के साथ साथ पवित्र तालाब के चारों ओर घूमिए। सच कहूँ तो वहाँ सिर्फ शांति के लिए नहीं अपने आप को ढूंढने के लिए भी आप जा सकते हैं। और अब बारी आती है हमारे लिए शॉपिंग करने की। तो कांजीवरम सिल्क साड़ियाँ, माय गॉड, जब भी आप इसका नाम लेते हैं ना आपको वो सुंदर सुंदर गाड़ियाँ, वो साड़ियाँ और वो फैब्रिक्स याद आ जाते हैं और जिन्हें हाथ से किसी ने अपनी पूरी शिद्दत से बुना है। जहाँ कांजीवरम आप पहुँच जाइए, यहाँ पर साड़ियाँ देखने के साथ साथ संस्कृति और शिल्प का अनूठा संगम देखने को मिलता है। और यहाँ काली संथर टेम्पल जाना ना भूलें और साथ ही अपने साथ साथ स्वीट्स लेकर आएं क्योंकि कांजीवरम की मिठाइयाँ भी बहुत मशहूर हैं। क्रोकोडाइल बैंक चलिए, यहाँ थोड़ी दूरी बनाकर रखिएगा क्योंकि क्रोकोडाइल्स वहाँ पर बहुत सारे हैं और सैकड़ों मगरमच्छों, कछुओं को, सांपों को यहाँ पर सुरक्षित रूप से बाड़ों में रखा गया है। आपको रोमांचित कर देगा और स्पेशली अगर आपके साथ बच्चे हैं ना तो उनको इन्हें पास से देखने का अनुभव हमेशा के लिए उनकी स्मरण में बन जाएगा, उनकी याददाश्त में बन जाएगा। ध्यान रखिए जब आप इस तरह के किसी बैंक में जाते हैं जहाँ पर कि एनिमल्स हैं तो आपको उन्हें बिल्कुल भी कुछ अपने साथ लाया हुआ भोजन नहीं देना है। जो आपके गाइड आपको बता रहे हैं वो भी आप सुनिए और उस बात पर ध्यान भी दीजिए। नाचना गाना साथ साथ चलता रहेगा और बीट्स बिल्कुल अपबीट होने वाली है क्योंकि हम चेन्नई के सफर पर जो निकले हैं।

चेन्नई में नाचते नाचते येलागिरी और नागलपुर हिल्स, जी हाँ ये बहुत खूबसूरत हिल स्टेशंस हैं यहाँ के, और साथ ही आप टांडा फॉल्स भी जा सकते हैं जो आपको रोमांचित कर देगा। इन रास्तों पर, इन हरियाली भरे रास्तों पर थोड़ी दूर पैदल चलकर देखिए, शहरों की भागदौड़ से दूर कुछ अलग ही जिंदगी का एहसास होता है यहाँ पर।

देखिए चेन्नई के सफर पर निकले हैं तो मरीना बीच जाना बिल्कुल ना भूलें, सनसेट यहाँ पर आपको एंजॉय करना है, और यहाँ से आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी और कुछ शिल जो अपनी स्मृतियों के तौर पर खरीद के ला सकते हैं। बहुत अच्छा रहेगा जब आप इन्हें अपने घर पर सजाएंगे। मायलापुर देखना ना भूलें, चेन्नई की समृद्ध रंगीन संस्कृति में डूबा शहर मायलापुर। जी हाँ, 1500 साल से भी पुराना इतिहास है यहाँ का, और साथ ही अष्ट लक्ष्मी मंदिर चेन्नई में ही है, आप जरूर जाएं। वल्लुवर कोट्टम जो है भूल मत जाइएगा। एमजी फिल्म सिटी, जहाँ अगर फिल्मों को देखने का शौक है, कुछ सेट्स आपको देखने हैं, तो जरूर आप एमजी फिल्म सिटी को भी घूम आइए। और चेन्नई में कोली हिल्स जाने का प्लान तो बिल्कुल आपको मिस ही नहीं करना है। कोली हिल्स या कोली मलाई तमिलनाडु के नकलम जिले में है, और माउंटेन ऑफ डेथ के नाम से भी आप इसे जानते हैं, सुनते होंगे। ये पहाड़ न केवल अपनी सुंदरता के लिए बल्कि भगवान शिव को समर्पित अर्पलेश्वर मंदिर के साथ जो इसका धार्मिक महत्व है वो अपने आप में इस बात को और बढ़ा देता है। और चेन्नई में ही विवेकानंद हाउस भी आप जा सकते हैं। बहुत सी जगह मुझे लगता है एक बारी में तो बताना मुश्किल है, लेकिन आप ही क्यों ना कश्मीर टू कन्याकुमारी, दिल्ली टू चेन्नई, कैसे भी ट्रैवल करके पहुंच जाइए और उस सुंदरता को अपनी आंखों में बसा लीजिए।

चेन्नई में ही फोर्ट सेंट जॉर्ज म्यूज़ियम और गवर्नमेंट म्यूज़ियम एगमोर का, ये सभी वो जगह हैं जिन्हें कि आप मिस नहीं कर सकते हैं। और सेंट बेसिलिका, कपिलेश्वर मंदिर, मरीना बीच की हमने बात की, बहुत सी ऐसी जगह हैं जो कि चेन्नई की खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं। तो क्यों ना इस खूबसूरती को आँखों से जाकर विज़िट कर लिया जाए।

दूरियां तो दिलों की हैं, इन्हें मिटा दीजिए और उन सफरों पर निकल जाइए जो आपको अपने करीब लेकर आते हैं। रेनबो डेस्टिनेशन दिल्ली की चाशनी गुरी सृजन के साथ सुन रहे थे। बस कुछ ही देर में आप प्रायोजित कार्यक्रम NCERT सुनेंगे और 3 से 4 रेडियो डॉक्टर डिजीज इन रेनी सीजन विषय पर बात करेंगे।

0: जीत, आप सबको नमस्कार। स्वागत बहुत बहुत उमंग कार्यक्रम में। श्रोताओ, धमधा ग्राम सुखनी कला छत्तीसगढ़ से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
1: रिश्ते अनमोल होते हैं, इन्हें शब्दों से नहीं प्यार, विश्वास और सम्मान से सींचिए, क्योंकि सच्चे रिश्ते ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत होते हैं।
0: इस विचार के लिए आप सबको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। हमें पहला संदेश मिला है ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, वेदिका, वंश, निकेश, धर्मेंद्र, मेघा, नंदिनी और ममता बाई वर्मा का।
1: नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा, ऋषभ, कनक और भावना वर्मा।
0: और ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे जी का।
1: हरदोई जिले के नगर पंचायत कुरसठ गाँव के मोहल्ला रामनगर से राजेश कुमार विद्यार्थी और कोमल।
0: और ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा।
1: संजय नगर कॉलोनी नेपानगर से प्रभु दयाल शिवदे, शिवा, खुशी, जानू, मनीषा बसंतीबाई और गणेश शिवदे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। हमारा निवेदन वही है जो हमेशा होता है और वो ये है कि जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से और न सिर्फ सुनिए लेकिन दूसरों को भी सुनाइए।
1: जी
0: तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, इसी प्रकार से उमंग कार्यक्रम के साथ बने रहिए। अब प्रस्तुत है आज का प्रेरक प्रसंग।
1: जी
0: तो विमलेश जी, हमने कल चर्चा की थी तितली के संघर्ष की।
1: बिल्कुल।
0: आज किसकी चर्चा होने जा रही है?
1: अजीत जी, आज हमारी चर्चा होने जा रही है बाज की। हम सभी इस पक्षी के बारे में जानते हैं, ये अपनी तीक्ष्ण दृष्टि और शानदार उड़ान के लिए जाना जाता है। आज हम सुनेंगे बाज और मुर्गियों की कहानी।
0: श्रोताओ, इस कहानी का मूल भाव है स्वयं को पहचानिए। कहानी कुछ इस प्रकार से है, शायद आपने पहले भी सुनी हो लेकिन हर बार ये हमें अपने जीवन के बारे में कुछ न कुछ नया सोचने के लिए जरूर प्रेरित करती है।
1: तो करते हैं शुरुआत कहानी की।
0: जी।
1: एक दिन की बात है, एक किसान खेत से लौट रहा था। रास्ते में उसे एक पेड़ के नीचे बाज पक्षी का बच्चा पड़ा हुआ मिला। वो घायल भी था, शायद किसी तूफान में वो घोंसले से गिर गया था।
0: तो उस किसान ने सोचा, यदि मैं इसे छोड़ दूंगा तो शायद ये जीवित नहीं बचेगा। वो उस बाज के बच्चे को घर ले आया और उसे अपनी मुर्गियों और चूजों के साथ रख दिया।
1: जी।
0: वो बाज का बच्चा अब मुर्गियों के बीच ही बड़ा होने लगा।
1: वो वही खाता जो मुर्गियाँ खाती थी। वो जमीन पर दाना चुगता, मुर्गियों की तरह थोड़ा बहुत उछलता और छोटे छोटे पंख फड़फड़ाता, और जब मुर्गियाँ कुट कुट करती तो वो भी वैसा ही करने की कोशिश करता।
0: उसे मालूम ही नहीं था कि वो वास्तव में कौन है। उसे ये पता ही नहीं था कि उसकी क्षमता कितनी है।
1: जी।
0: एक दिन उसने आकाश में एक विशाल बाज को ऊंची उड़ान भरते हुए देखा। वो बादलों के बीच बिना किसी डर के शान से उड़ रहा था।
1: बाज के बच्चे ने आश्चर्य से अपनी मुर्गी माँ से पूछा, माँ वो कितना अद्भुत पक्षी है, वो कौन है? मुर्गी ने उत्तर दिया, वो बाज है, आकाश का राजा। बाज ने पूछा,
0: क्या मैं भी कभी उसके जैसा उड़ सकता हूँ?
1: मुर्गी हंस पड़ी, नहीं बेटा, हम मुर्गियाँ हैं, हम जमीन पर रहने वाले पक्षी हैं, इतनी ऊंची उड़ान हमारे बस की बात नहीं, हम उसकी तरह उड़ नहीं सकते। अजीत जी, फिर क्या हुआ, क्या बाज कभी उड़ पाया?
0: नहीं विमलेश जी, दुखद बात यह है कि बाज के बच्चे ने भी यही बात सच मान ली और उसने कभी उड़ने का प्रयास ही नहीं किया। वो पूरी जिंदगी मुर्गियों की तरह जमीन पर चलता रहा, कुट कुट करता रहा।
1: जी।
0: पता है, उसने उड़ने की जन्मजात क्षमता थी।
1: जी।
0: बस यदि वो थोड़ा और पंख फड़फड़ाता, अपने पंखों को फैलाता, उड़ने का प्रयास करता तो वो उड़ सकता था।
1: जी।
0: लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने मान लिया था कि उससे हो ही नहीं सकता।
1: और एक दिन इसी भ्रम में उसका जीवन समाप्त हो गया कि वो एक साधारण मुर्गी है। प्रिय श्रोताओ, ये केवल एक पक्षी की कहानी नहीं है, ये हम में से बहुत से लोगों की कहानी है। कई बार परिस्थितियां हमें ये विश्वास दिला देती हैं कि हम जितने हैं उससे अधिक नहीं बन सकते।
0: श्रोताओ, विद्यार्थी सोचते हैं कि वे और अच्छा नहीं कर सकते, कुछ विषय उनसे हो ही नहीं सकते।
1: जी।
0: लोग कहते हैं तुमसे नहीं होगा, तुम साधारण हो।
1: जी।
0: इतना बड़ा सपना मत देखो। और श्रोताओ, होता ये है कि धीरे धीरे हम भी उन बातों पर विश्वास करने लगते हैं, अपनी क्षमता भूल जाते हैं।
1: हम अपने पंख समेट लेते हैं और फिर पूरी जिंदगी उसी सीमा में जीते रहते हैं जो दूसरों ने हमारे लिए तय की है।
0: लेकिन इतिहास गवाह है, हर महान व्यक्ति ने एक दिन यह तय किया कि वह दूसरों की सीमाओं में नहीं लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार जिएगा।
1: आपने महान नर्तकी सुधा चंद्रन के बारे में अवश्य सुना होगा। जिस दिन उन्होंने सोच लिया कि कृत्रिम पैर के साथ वो नृत्य करके दिखाएंगी, एक इतिहास रच दिया गया।
0: और श्रोताओ, आपने पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा के बारे में भी सुना होगा कि एक पैर खोने के बाद भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। जी हाँ प्रिय विद्यार्थी श्रोता मित्रों, आपसे कहना चाहते हैं शायद आपके भीतर भी कोई ना कोई सपना है, कोई प्रतिभा है, कोई ऐसा कार्य है जिसे करने से आप डर रहे हैं। हो सकता है लोगों ने आपको बार बार निराश किया हो, लेकिन याद रखिए, दूसरे लोग आपकी पहचान तय नहीं कर सकते।
1: आपका भविष्य आपकी परिस्थितियां नहीं बल्कि आपका विश्वास तय करता है। यदि बाज अपने पंखों पर विश्वास करे तो आकाश उसका है, और यदि मनुष्य अपनी क्षमता पर विश्वास करे तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं।
0: तो हम कहना चाहते हैं,
1: अपने पंखों पर विश्वास कीजिए, और हाँ, किसी और से अपनी तुलना मत कीजिए, क्योंकि
0: आप हैं।
1: बिल्कुल,
0: आशा है आपको हमारी प्रस्तुति अवश्य पसंद आई होगी श्रोताओं। यदि आई तो जरूर लिख भेजिए प्रोत्साहन के दो शब्द। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से श्रोताओं, आज का प्रश्न है, नर्तकी सुधा चंद्रन किस नृत्य के लिए जानी जाती हैं, और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने कब एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: नर्तकी सुधा चंद्रन किस नृत्य के लिए जानी जाती हैं, और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने कब एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की।
0: आप हमारे प्रश्न का उत्तर भेज सकते हैं हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर, और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं,
0: और इन्हीं पुस्तकों को यदि आप ऑडियो बुक प्रारूप में भी सुनना चाहते हैं तो आपको जाना होगा NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर। इस चैनल पर जाकर आप हमारी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूप सुन सकते हैं। तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम पानी रे पानी, जल है तो कल है।
1: कार्यक्रम में जल की दुर्लभता को समझाते हुए बताया गया है कि पृथ्वी पर पेयजल की मात्रा बहुत ही कम है, शेष खारा जल है, इसलिए हमें जल बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए।
0: साथियों नमस्कार, पिछली बार आपने सुना था कार्यक्रम पानी रे पानी। इस कार्यक्रम में आपने सुना था एक कविता के माध्यम से जल चक्र की प्रक्रिया के बारे में। आइए अब सुनते हैं इसी कार्यक्रम का दूसरा भाग, पानी रे पानी, जल है तो कल है।
2: प्यारे बच्चों और साथियों, मैं हूं तुम्हारी दोस्त झुमकी,
3: और मैं हूं झुमरू।
2: नमस्कार।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश
0: और मैं हूं

0: तो झुमके, आज हम बच्चों से क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
1: ये तो बहुत सही सवाल किया है आपने। आज हम चर्चा करेंगे, करेंगे किस पर?
2: जल बचाओ।
0: तो झुमके क्यों?
1: वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि इन दिनों पानी की समस्या ही सबसे बड़ी है।
0: हाँ,
1: तो चलो शुरू करें।
0: और हाँ बच्चों, तुम्हें भी तुक मिलाना है, समझे?
3: जी झुमरो जी।
0: चलो झुमकी।
1: ठीक है ठीक है, तो चलो मैं शुरू करती हूँ।
4: रखो तुम नल हर दम, नहीं हो जब उपयोग, जल की एक एक बूंद का सदा करो सदुपयोग।
0: करते हो जब ब्रश तो नल को खुला कभी ना छोड़ो, नित्य प्रतिदिन ऐसा करके बूंद बूंद तुम जोड़ो।
5: झुमरू जी, किताबों में हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है, तो इसका मतलब हुआ पृथ्वी पर बहुत पानी है।

0: हाँ,
1: लेकिन यदि इतना पानी है तो पानी की कमी क्यों है?
2: क्योंकि इसमें से समुद्र का 96% जल खारा है और ये पीने योग्य नहीं है, है ना झुमरू जी?
0: हाँ बच्चों, पृथ्वी का सिर्फ 3.5% पानी ही पीने योग्य है, जिसमें से कुछ हिस्सा ग्लेशियरों में बर्फ के रूप में संरक्षित है।
1: लेकिन जल बचाने के लिए हम बच्चे क्या कर सकते हैं?
2: बहुत अच्छा सवाल किया है ये तो। चलो, बच्चे भी बहुत कुछ कर सकते हैं।
0: जैसे?
2: जैसे हम स्नान करते समय जल का उपयोग कम कर सकते हैं, है ना? और क्या कर सकते हैं?
0: बताओ बताओ।
2: मैं नहीं, अब बच्चे बताएंगे।
0: ठीक,
2: बताओ।
1: यदि हम किसी नल से पानी टपकता हुआ देखें तो हम उसे तुरंत बंद कर सकते हैं।
2: और
3: यदि बनना हो तो हम किसी बड़े को बता सकते हैं।
2: हाँ, बहुत अच्छे।
0: हाँ, ताकि उसकी मरम्मत हो जाए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया।
1: यानी हम बच्चे भी जल बचाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं।
2: तो अब हो जाए सबके लिए जोरदार
4: तालियां।
0: अच्छा, अब ये बताओ बच्चों, तुम में से किस किस के पास गुल्लक है?
5: मेरे पास बहुत बड़ी पैसे।
0: अरे वाह।
2: तो फिर ये पृथ्वी भी तो एक गुल्लक ही हुई ना, है ना, है ना, है ना? बोलो। जैसे गुल्लक में पैसे बचाते हैं, वैसे ही इस बड़ी सी गुल्लक में हम क्या बचा सकते हैं?
5: जल।
0: तो झुमकी, क्यों ना हो जाए इस पर एक सुंदर सी कविता। लेकिन ऐसी वैसी कविता नहीं, बल्कि तुक मिलाने वाली।
2: आपने तो मेरे मन की बात कह दी।
0: तो,
2: चलिए
0: शुरू हो जाओ।
2: बिल्कुल बिल्कुल, ये लीजिए। ये पृथ्वी मेरी गुल्लक है, हम इसमें जल बचाएंगे। आप भी कहिए।
0: हाँ हाँ। बूंद बूंद हम जल बचाकर। बच्चों, अब तुम्हारी बारी है।
5: जीवन सुखद बनाएंगे।
2: जीवन सुखद बनाएंगे। हाँ, जीवन सुखद बनाएंगे।

0: बस फिर क्या था, बच्चों ने थोड़े दिनों के बाद एक समूह बनाया, नाम रखा बाल जल प्रहरी।
1: और फिर बच्चों ने संभाली अपने अपने घरों और कस्बे में जल संरक्षण यानी पानी बचाने की जिम्मेदारी।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम पानी रे पानी, जल है तो कल है।
3: मेरा नाम साक्षी है, मैं एक आईटी कंपनी में काम करती हूँ। एक दिन ऑफिस से घर आते वक्त रात को एक कार सामने चल रही थी, उसने अचानक से ब्रेक मारा। पर उसकी टेल लाइट ही नहीं चली, बस एक छोटा सा डिम बल्ब था, वो भी धुंधला सा। मुझे लगा मैं सीधा टकरा जाऊंगी, एक छोटा सा बल्ब ही तो है, पर अगर ना चले तो सब कुछ अंधेरा हो जाता है।
4: वाहन चलाते समय टेल लाइट और ब्रेक लाइट का ठीक से काम करना जरूरी है, ताकि पीछे आने वालों को समय पर संकेत मिल सके।
2: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम हसरत मोहानी।
5: ये कार्यक्रम उर्दू के महान साहित्यकार जनाब हसरत मोहानी के जीवन और साहित्यिक उपलब्धियों पर आधारित कार्यक्रम हसरत मोहानी।
6: चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको, अब तक आशिकी का वो जमाना याद है।
7: सैयद फजलुल हसन नाम और हसरत तखल्लुस। 1875 में कस्बा मोहान जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। बास किताबों में उनका सने पैदाइश 1880 और 1881 भी मिलता है। वो एक कामयाब शायर और बेबाक सहाफी होने के साथ साथ एक सरगर्म सियासतदान और मुजाहिदे आजादी भी थे। अरबी फारसी की इब्तदाई तालीम मकतब में हासिल की। 1898 में गवर्नमेंट हाई स्कूल फतेहपुर से मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद 1899 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मौजूदा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। हजरत ने 12 साल की उम्र में शेर कहना शुरू कर दिया था। 1903 का साल हसरत की जिंदगी में बड़ी अहमियत रखता है। उन्होंने बीए का इम्तिहान पास किया। इसी साल वो अपने बागियाना ख्यालात की वजह से कॉलेज से निकाले गए। अब हसरत अलीगढ़ के मोहल्ला रसलगंज में किराए पर मकान लेकर रहने लगे। 1903 ही में हसरत ने एक इल्मियो अदबी रिसाला उर्दुए मौल्ला जारी किया। ये सिलसिला आखिर उम्र तक जारी रहा। उर्दुए मौल्ला में अदबी और सियासी दोनों तरह के मजामीन शाये हुए थे। हसरत मोहानी ने इसके जरिए कौमी इत्तेहाद, सेकुलरिज्म और कामिल आजादी की आवाज बार बार बुलंद की। वो आजादी के मतवाले थे। अंग्रेजी हुकूमत की उन्होंने खुलकर मुखालफत की और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। अप्रैल 1908 के उर्दुए मौल्ला में एक मजमून की इशात पर मुकदमा चला। अदालत ने उन्हें 2 साल कैद बामशक्कत की सजा सुनाई और 500 रुपए जुर्माना किया। जेल में हसरत ने किस तरह शबो रोज गुजारे, उनके इस शेर से अंदाजा किया जा सकता है।
8: कट गया कैद में माह रमजान भी हसरत, कट गया कैद में माह रमजान भी हसरत, घरचे सामान शहर का था ना इफ्तारी का।
7: कैद से रिहाई के बाद हसरत के सियासी ख्यालात में और शिद्दत पैदा हो गई। हसरत मोहानी के मिजाज में सादगी बहुत थी। उनके लिबास और रहन सहन को देखकर गुमान भी नहीं हो सकता था कि वो बुलंद पाया शायर, अदीब और सियासतदान हैं। एक मर्तबा कानपुर के एक सौदागर जो हसरत से अकीदत रखते थे, उनसे मिलने आए तो देखा कि वो कुछ लिख रहे हैं।
9: जी आदाब बजा लाता हूँ जनाब, मुहानी की खिदमत में।
8: अरे आप, आदाब अर्ज, आइए आइए, तशरीफ रखिए।
9: जी जी, शुक्रिया।
8: माफ कीजिएगा, जरा एक मजमून लिख रहा था, बस अभी आपसे मुखातिब होता हूँ।
9: कोई बात नहीं जनाब, कोई बात नहीं, आप आराम से अपना काम करें।
8: जी बस।
9: जी,
7: हसरत लिखते जाते और बीच बीच में उन सौदागर से बात भी करते जाते। हसरत की पुश्त पर एक फटा पुराना पर्दा लटक रहा था, वो पर्दे के पीछे से कुछ निकालते और मुंह में रख लेते और डेस्क पर रखी गुड़ की डली से थोड़ा गुड़ खा लेते। सौदागर साहब खामोशी से देखते रहते।
8: जनाब बस जरा सी देर और, बस यूं समझिए खत्म ही हुआ चाहता है।
9: जी जी, आप इत्मीनान से काम करें, बाखुदा मैं मजे में हूं। ये थोड़ा सा अजीब है, लिख भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, कैसे पूछूं।
7: जब जब्त ना हुआ तो अर्ज किया,
9: मुहानी साहब
8: जी,
9: ये पर्दे की ओट से निकालकर आप क्या खा लेते हैं, कुछ खादिम को भी आता हो।
8: चलिए फटी हुई बनियान दिखा ही देते हैं आपको।

0: हसरत ने पर्दे के पीछे से मिट्टी की हंडिया निकाली जिसमें सूखी रोटियां पानी में भीगी हुई थी।
1: ये लीजिए, खा लीजिए मियां, फकीरों का खाना तुम रईस ना खा पाओगे।
2: क्या सूखी रोटी पानी में भीगी हुई?
1: आज तीसरा फाका है, शुक्र है सूखी रोटी मयसर हो गई, बड़ी तस्कीन हो गई।
2: या खुदा,
1: नौश फरमाइए मियां,
2: लाइए
1: खाइए।
3: हम मशकूर हैं उन तमाम शूरा और सुखनवर हजरात के जो मुशायरे में शरीक हो रहे हैं।
0: हसरत मुशायरों में भी शरीक हुआ करते थे। मुशायरों के मुंतजमीन शूरा को सफर खर्च और कलाम सुनाने का मुआवजा बंद लिफाफे में पेश करते थे।
1: शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। गजल का आखिरी शेर है, मुलायजा फरमाए।
4: इरशाद ग्रामी
1: है मश्के सुखन जारी, चक्की की मशक्कत भी।
2: वाह क्या बात है, है मश्के सुखन जारी,
1: चक्की की मशक्कत भी।
2: वाह
1: एक तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी।
2: एक तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत। क्या बात, क्या बात।
0: बाद में मुंतजमीन ने उनकी खिदमत में लिफाफा पेश किया।
2: जना क्या खूब गजल कहते हैं आप।
5: मोहानी साहब, मुशायरे की रौनक बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जी शुक्रिया तो आप सब जनाब का, आपने इस नाचीज को मौका दिया।
2: आप इतनी दूर से यहाँ आए, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। ये लिफाफा हमारी तरफ से।
5: जी नहीं नहीं नहीं, नहीं। मोहानी साहब, ये तो महज टिकट का खर्च है जनाब।
1: माफ कीजिए, मुझे सफर का खर्च नहीं चाहिए। हाँ? नहीं, दरहकीकत बात यह है कि मैंने सफर पर कुछ खर्च ही नहीं किया है।
2: क्या?
1: जी, एक गार्ड मुझे अपने साथ डिब्बे में बैठा कर ले आया। टिकट तो नाचीज ने खरीदा ही नहीं।
5: अरे मुहानी साहब,
1: शेरो शायरी पसंद करते हैं वो गार्ड साहब, चंद अशार सुनाए, सुकून से सफर कट गया। बस वो आज वापस जा रहे हैं गार्ड साहब, ये टिकट हम फिर से वापस चले जाएं।
2: आप भी मोहानी साहब। लेकिन मोहानी साहब, नाचीज को इतनी खिदमत का मौका तो थे।
1: नहीं नहीं माफ कीजिए, ये तो आपके साथ ज्यादती होगी, मैं खामखा खर्च कैसे ले सकता हूँ आपसे।
5: मोहानी साहब, खामखा खर्च कैसा?
1: देखिए जनाब, जब मैंने कुछ टिकट पर खर्च ही नहीं किया तो आपसे इखराजात लेने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता।
2: मोहानी साहब, आपसे लफ्जों में नहीं जीत सकते हम। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी।
0: उस जमाने में स्वदेशी तहरीक शुरू हो चुकी थी। इस तहरीक का मतलब था कि अपने ही मुल्क की बनी हुई चीजें खरीदी और इस्तेमाल की जाएं, विदेशी माल का बायकॉट किया जाए। उन्होंने खद्दर का इस्तेमाल पहले ही शुरू कर रखा था। अवाम में भी स्वदेशी माल के इस्तेमाल को राइज करने के लिए हसरत ने अलीगढ़ के मोहल्ला रसलगंज में एक स्वदेशी स्टोर खोला जो कामयाबी से चला। 1920 में हसरत अलीगढ़ को खैरबाद कहकर कानपुर आ गए और यहां भी एक स्वदेशी स्टोर कायम किया। हसरत मोहानी अपने एक दोस्त के घर में मेहमान थे, कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी।
2: अरे लीजिए ना हसरत साहब, थोड़ा तो और लीजिए।
1: बस बस भाई, अब तो बहुत ज्यादा हो गया।
2: आपने तो कुछ खाया ही नहीं।
1: कुछ नहीं खाया, यहाँ गला कह रहा है कि माफ करो भाई, खाना गले तक आ गया। वैसे आज ठंड कुछ ज्यादा ही नहीं पड़ रही।
2: जी बजा फरमाया आपने, आज तो भला की ठंड है। मैं

0: ये लीजिए, आपका सोने का इंतजाम यहाँ कर दिया है, अब आप आराम करें।
1: इतना खूबसूरत और मुलायम कंबल।
0: जी, और काफी गर्म भी है। इसको ओढ़ के चैन से सोइए।
1: शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जी, शब्बा खैर।
1: शब्बा खैर।
0: बला की ठंड है,
1: लेकिन इतना कीमती और मुलायम कंबल, लगता है विदेशी माल है। नहीं नहीं नहीं, ये मैं नहीं ओढ़ सकता। मैं मुल्क के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मुझे सिर्फ देसी चीजें ही इस्तेमाल करने का हक है, और यही मेरा फर्ज भी है। तो जनाब कंबल जी, आप तशरीफ उधर ले जाए। अरे हसरत, तू रात बेकंबल ही गुजार ले।
2: हसरत रात भर सर्दी में कांपते रहे, मगर वो कंबल नहीं ओढ़ा, इस ख्याल से नहीं ओढ़ा कि ये विदेशी माल है। हसरत एक सच्चे मजहबी इंसान थे। उन्होंने नात और मनकबत के अलावा श्री कृष्ण की शान में भी अशार लिखे हैं।
1: मथुरा कि नगर है आशिकी का, दम भरती है आरजू उसी का, बरसाना ओ नंदगांव में भी, देख आए हैं जलवा हम किसी का, पैगामे हयाते जाविदा था, हर नगमा कृष्ण बांसुरी का।
2: अंग्रेज हुकूमत को हसरत मोहानी की सियासी सरगर्मियां कतई पसंद नहीं थी। 1913 में उनका प्रेस जब्त कर लिया गया। 1916 में उन्हें दोबारा जेल भेज दिया गया। 1918 में रिहाई मिली तो आजादी की जिद्दोजहद में फिर मसरूफ हो गए। हसरत मुकम्मल आजादी का मुतालबा करने वाले हिंदुस्तान के पहले मुजाहिदे आजादी थे। हसरत मोहानी को तीसरी बार 22 अप्रैल 1922 को 2 साल के लिए जेल भेजा गया। 1942 में हसरत कानपुर से यूपी असेंबली के मेंबर चुने गए और फिर पार्लियामेंट के मेंबर हुए। तहरीके आजादी के सिलसिले में उन्हें रईसुल एहरार के लकब से याद किया गया। उनका इंतकाल 13 मई 1951 को लखनऊ में हुआ। आज वो फिरंगी महल लखनऊ के कब्रिस्तान अनवार बाग में दफन है।
3: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम हसरत मोहानी, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
1: रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम सुनने वाले सभी श्रोताओं को के यानी कमल किशोर का नमस्कार। दोस्तों आप खुश तो बहुत होंगे ना, क्योंकि बारिश की ठंडी फुहार तन मन को भिगो रही है। प्रकृति ने हरियाली की चादर ओढ़ ली है और एक नई ताजगी का एहसास है ना, और मन मयूर झूम उठा है।

0: ये दोस्तों बारिश की रुम झुम और ये जो बारिश की जो बूंदे हैं उन्हें छू करके एहसास ऐसा होता है कि सारे तन में, तन बदन में, तन मन में एक ठंडक सी पहुंच गई है। और उमस भरी गर्मी के बाद तो झमाझम बारिश के बाद तो मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। पेड़ पौधों में हरियाली छा जाती है, नदी ताल तलैया पोखर सब लबालब भर जाते हैं। बरसात से राहत तो मिल जाती है लेकिन साथ साथ आफत भी आ जाती है। आफत, आप जरूर सोच रहे होंगे कि आफत के नाम पे तो बाढ़ ही है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ साथ और भी कई सारी बातें आ जाती हैं, कई सारी बीमारियां भी आ जाती हैं और वाटर बोर्न डिजीज की संभावना बढ़ जाती है। जब ऐसी संभावना हो तो सावधानी और सतर्कता भी जरूरी है, ये तो आप सभी जानते हैं। उन बीमारियों के बारे में जानकारी लेना और जरूरत पड़े तो डॉक्टर से तुरंत ही कंसल्ट करना भी आवश्यक हो जाता है। तो उन सब के लिए हम है ना, जी हमारा रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम है ना। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता जी, आप डायरेक्टर एंड हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन मैक्स अस्पताल में। डॉक्टर साहब हम आपका स्वागत करते हैं, नमस्कार करते हैं आपको।
1: धन्यवाद कमल जी।
0: और दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। बारिश का मौसम है तो नेचुरली, और रेडियो डॉक्टर का प्रोग्राम है तो हम बारिश के मौसम में होने वाली बीमारियों के बारे में जानेंगे। जी हाँ, डिजीजेस इन रेनी सीजन यानी बरसात के मौसम में होने वाली बीमारियां, इन सब के विषय में आज हम जानेंगे अपने डॉक्टर साहब से, यहाँ पर मौजूद हैं। और जब तक आप हमसे जुड़ते हैं चलिए हम आपकी ओर से कुछ सवालात कर लेते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब,
1: कमल जी आज बहुत अच्छा दिन है, कबीरदास जी का दोहा याद आया मुझे, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए।
0: जी
1: तो एज ए डॉक्टर मेरे लिए मेरे मरीज सबसे बड़े गुरु हैं। आज के दिन में हम श्रोताओं को गुरु मानते हैं तो क्योंकि गुरु ही हमें मार्गदर्शन दिखाता है, श्रोता ही हमें बताते हैं कि हमें क्या क्वेश्चनों का जवाब देना है, कैसे जवाब देना है। तो मेरे सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम और मेरे सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन।
0: तो डॉक्टर साहब, चूंकि ये बारिश का मौसम है, बड़ा अच्छा लग रहा है, बारिश हो रही है, देखते हुए अच्छा लग रहा है, भीगते हुए कभी कभी अच्छा लगता है, लेकिन कई बार भीगने से और बार बार भीगने से कई सारी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। और वास्तव में देखा जाए तो बरसात के मौसम में जो बीमारियां होती हैं उनका खतरा लगभग बढ़ जाता है, ऐसा क्यों होता है?
1: देखिए बरसात के मौसम को अगर हम डिवाइड करें तो एक एक करके जैसे अपन चलते हैं
0: जी,
1: तो सबसे पहले बरसात में जो होता है ह्यूमिडिटी, उमस
0: यानी कि नमी
1: उमस
0: जी,
1: उमस की वजह से जब आप जैसे अगर बरसात अभी नहीं भी हो रही है एक्टिवली तो भी जो मौसम है उसमें उमस बहुत ज्यादा होती है, उमस से पसीने बहुत ज्यादा आएंगे
0: जी।
1: तो ऐसे में हम अपने सभी श्रोताओं को ये बोलना चाहेंगे कि आप जब इस तरह का मौसम आए, रेनी सीजन जैसा मौसम आए, तो बेटर है कि आप कपड़े जो है कॉटन के पहने जो कि आपकी स्वेट को या जो पसीना है उसको एब्जॉर्ब कर सके,
0: सोख सके,
1: क्योंकि अगर वो सोखेगा नहीं तो आपको स्किन डिजीजेस का सबसे ज्यादा कॉमन खतरा होता है, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन हो गया, क्योंकि भीगे कपड़े होंगे तो फंगल इन्फेक्शन के डर होता है। तो शुरुआत में अगर हम ऊपर से शुरू करें तो स्किन इन्फेक्शन, किसी किसी को एलर्जी, इचिंग, ये सब चीजें बहुत ज्यादा होती
0: हैं, फोड़े फुंसियां शुरू हो जाएंगे
1: है ना। अगर कोई यंग बच्चे हैं तो उनके पिंपल्स थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं वो गर्मी के कारण।
0: अच्छा,
1: तो ये सब चीजें हमें गर्मी के मौसम में अगर हम ऊपरी तौर से स्किन डिजीज की बात करें तो। फिर भीगने की वजह से अगर हम बात करें तो भीगने की वजह से क्योंकि टेम्परेचर चेंज इतना ज्यादा हो जाता है कि शरीर के अंदर का टेम्परेचर और बाहर के टेम्परेचर में डिफरेंस होता है, तो आप जो कॉमन फ्लू जिसको हम बोलते हैं, जिसको खांसी जुकाम है ना, हल्का फुल्का बुखार आना, ये सब चीजें बहुत कॉमन होती हैं। फिर कुछ बीमारियां होती हैं जो खराब पानी की वजह से होती हैं
0: जी,
1: खराब पानी की वजह से, जैसे कि जो पीने का पानी थोड़ा सा खराब हो जाएगा
0: जी,
1: है ना, उसकी वजह से आंत्रशोथ या एंट्राइटिस जिसको हम बोलते हैं, अब इन्फेक्शन की वजह से हो जाएंगी। और फिर

0: बाद में पानी के स्टैग्नेशन यानी पानी के रुकाव की वजह से जो मक्खी मच्छर जो पनपते हैं उनकी वजह से बीमारियां होती हैं।
1: जी जी,
0: तो इस तरह से हम बीमारियों का क्लासिफिकेशन या डिफ्रेंसिएशन करते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, अभी आपने एक बात कही और मैं उसे बड़े गौर से सुन रहा था, और कई बार हमने देखा भी है और कई बार ऐसा लगता भी है कि जब बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, बाहर से आए, बहुत ज्यादा गर्मी लगी है और उसके बाद में पसीना पसीना हो गए हैं, और उसके बाद में कुछ लोग क्या करते हैं कि तुरंत जाकर के नहा लेते हैं, तो इससे किस प्रकार की बीमारी हो सकती है, कौन सा खतरा बढ़ सकता है?
0: जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कमल जी कि टेम्परेचर डिफरेंस किसी भी कारण से अगर एकदम से होगा तो उसकी वजह से ना बॉडी का एडेप्टेशन कई लोगों का हो जाता है, कई लोगों का नहीं हो पाता।
1: अच्छा,
0: तो हम लोग जो सलाह देते हैं वो ये देते हैं कि सपोज आप कहीं गर्मी से एकदम से आए हैं तो आप अंदर बैठिए, थोड़ी देर अपने पसीने सुखाइए, एक नॉर्मल पंखे में बैठिए, और जब पसीने सूख जाए और थोड़ा सा एक्लिमेटाइजेशन हो जाए फिर उसके बाद आप बाकी काम कीजिए। जैसे कि एकदम से आती ठंडा कोल्ड ड्रिंक या ठंडा पानी नहीं पीना है, ठीक है जी, अंदर आती एकदम से नहाना है, तो वो सब आपको थोड़ा सा एक्लिमेटाइज होके फिर करेंगे तो आपका शरीर जो है उसमें आपका साथ देगा और आपको कफ कोल्ड या जो किसी किसी को अगर आपने देखा हो तो एकदम से ठंडा पानी पी लिया आपने गर्मी से आते एकदम से गला पकड़ जाता है, तीन चार दिन तक फिर खराश खांसी और गले में दर्द रहता है, तो ये सब चीजें आप अवॉइड कर पाएंगे।
1: जी, तो इसमें जब इस प्रकार से जब बिल्कुल गर्मी से बिल्कुल ठंडक यानी कि शरीर को ठंडक मिलती है तो और इसमें किस प्रकार की परेशानी हो सकती है, क्या इसमें बुखार होने के फीवर होने के भी चांसेस रहते हैं?
0: देखिए, बुखार कोई बीमारी नहीं है, बुखार किसी न किसी बीमारी या किसी न किसी शारीरिक प्रक्रिया की वजह से होता है, तो जिसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। शरीर में किसी भी प्रकार का इन्फ्लेमेशन होगा तो वो बाहर जो दिखेगा वो बुखार के रूप में दिखेगा।
1: जी, जी।
0: जैसे अभी हम बात कर रहे थे खांसी जुकाम की, तो खांसी जुकाम होगा तो आपके गले में ये जो जीभ के पीछे की जो जगह होती है जिसको हम फेरिंग्स बोलते हैं इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, किसी किसी के नीचे छाती तक पहुंच जाता है, खराश होने लगती है, तो वो इन्फ्लेमेशन फीवर के रूप में प्रेजेंट करता है। तो बुखार बीमारी नहीं है, बीमारी का एक साइन है, एक रूप है बीमारी का,
1: लक्षण कैसे?
0: लक्षण
1: कैसे? जी डॉक्टर साहब, वैसे बहुत सारी बीमारियां तो हैं, तो बरसात के मौसम में अगर सबसे पहले कभी कुछ हो जाता है तो सोचते हैं कि ये बीमारी हो सकती है, तो सबसे पहला जो रिस्क होता है वो सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है?
0: सबसे बड़ा रिस्क तो जो कॉमन फ्लू होता है, जो हम कफ कोल्ड बोलते हैं, ये सबसे ज्यादा कॉमन होता है, जो कि बरसात के ऑनसेट के साथ ही स्टार्ट हो जाता है।
1: अच्छा,
0: और दूसरा जो होता है वो है एंट्राइटिस यानी आंत्रशोथ यानी पेट के इन्फेक्शन।
1: जी जी,
0: अब वो कोलेरा की वजह से हो, चाहे टाइफाइड की वजह से हो, चाहे दूषित पानी का मिश्रण जो आपके पीने के पानी में है उसकी वजह से हो, ये अलग अलग इसके स्रोत हैं जिसकी वजह से हो सकता है। कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं जो कि जो बरसात के पानी के साथ मिट्टी के रास्ते से नीचे, जैसे मिट्टी से पानी, बरसात का पानी एब्जॉर्ब होता है आपके जो ग्राउंड वाटर में मिल जाता है, और वो प्यूरिफिकेशन अगर उसका ठीक से ना हो तो वो उसको हम लोग पैरासिटिक इन्फेक्शन बोलते हैं।
1: यानी कि जो ग्राउंड वाटर है उसे हम डायरेक्ट ना पिए, उसे छान कर पिए, उबाल कर पिए, तो ये कुछ हद तक बीमारियों से बचा जा सकता है?
0: बहुत हद तक। अगर हम सबको बोलें कि भई आप उबला हुआ पानी पीजिए, उबले हुए का मतलब होता है कि आप उसको रोलिंग बॉइल 20 सेकंड्स कम से कम अगर आप बॉइल करके पियेंगे तो आपकी ये जो पेट वाली परेशानियां हैं, जो पैरासिटिक इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाएंगे, मिनिमाइज हो जाएंगे।
1: जी, तो इसमें डॉक्टर साहब आपने कहा कि 20 सेकंड्स तक, इसमें भी कुछ टेम्परेचर अगर कुछ क्या कहते हैं?
0: रोलिंग बॉइल कहते हैं सर। हाँ, इसको हाँ। मतलब जब बॉइलिंग शुरू हो तब आप उसको 20 सेकंड लगे।
1: अच्छा, तो यानी कि पूरी
0: कम से कम,
1: कम से कम,
0: कम,
1: तो कम से कम 20 सेकंड तक बॉइल हो जाए, उसके बाद ठंडा करके पिए या हल्का हल्का?
0: नहीं, ठंडा करके पिए,
1: ठंडा करके पिए, तो हल्के हल्के। कुछ लोग क्या कहते हैं कि चाय की तरह फूंक फूंक के पीते हैं।
0: देखिए सर, ये आपकी क्या आदत है और आपको कैसे पसंद है, हर एक की अपनी अपनी चॉइस है। हम ये एडवाइस करते हैं कि बॉइलिंग वाटर के बाद आप उसको ठंडा करके, चाहे आप साफ बोतल में रख के उसको फ्रिज में भी रख सकते हैं।
1: जी हाँ,
0: हमारा पर्पस है कि आप जो बॉइलिंग वाटर से हमारा जो बैक्टीरिया है या पैरासाइट्स है वो मर जाएं, ताकि आपको इन्फेक्शन की मात्रा, इन्फेक्शन कम से कम हो।
1: जी, तो डॉक्टर साहब यहाँ पर एक मैसेज हमारे पास आ गया है और इन्होंने लिखा है कि आपको यानी कि मुझे और डॉक्टर गुप्ता जी को गुड आफ्टरनून डॉक्टर साहब।
0: थैंक यू सर।
1: बरसात में बच्चों को नहाने का बड़ा शौक होता है, इन्होंने लिखा है, और ये कहते हैं कि बच्चे जानबूझकर भीगते हैं तो उनका डॉक्टर साहब क्या मार्गदर्शन करेंगे। ये लिखे हैं नरदेव सिंह चौहान जी कोटद्वार उत्तराखंड से, क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब?
0: बिल्कुल चौहान साहब, बच्चों का तो सबसे बड़ा शौक बरसात में घूमना है और बरसात में भीगना है। आप उनका बचपन मत छीने, उनको घूमने दें, उनको विचरण करने दें बरसात में, लेकिन जैसी वो घर आते हैं सबसे पहले उनका जो काम होना चाहिए माँ बाप का वो है कि कपड़े चेंज करें, उनका सिर सुखाएं और उनको थोड़ी देर के लिए बिठा दें और फिर ही कुछ खाने या पीने को दें। अगर हम ये सब चीजें अगर करेंगे
1: जी,
0: तो बच्चों को बीमारी का कोई दिक्कत नहीं
1: है। ये तो अच्छी बात बताया कि यानी कि शरीर भीगा नहीं होना चाहिए बरसात में भीगने के बाद में, उसको पोंछ करके सुखा देना चाहिए।
0: जी
1: जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब एक और,
0: एक और चीज कमल जी, कि कई बार क्या करते हैं कि बच्चे अंदर आती एयर कंडीशन में बैठ जाते हैं, तो वो चीज हमें अवॉइड करनी है।
1: ये सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि बड़ों को भी करना चाहिए कि आते ही कहीं से गर्मी से आ रहे हैं तो तुरंत ही उसी समय एयर कंडीशन में ना बैठें, बच्चों को भी ना बैठने दें, बल्कि एक नॉर्मल पंखे की हवा से, अगर आपके पास पंखे हैं तो पंखे की हवा से अपने शरीर को सुखाएं, उसके बाद ही आगे का जो भी कार्य है
0: जी,
1: खाना पीना है वो करें। डॉक्टर साहब एक और मैसेज आया है और ये है मोहित जी और इनकी उम्र है 43 ईयर्स, ये आगरा से हैं, कहते हैं कि शुड वी यूज बॉइल्ड वाटर OR और कैन यूज वाटर ऑफ RO फिल्टर्स ऑल्सो, यानी कि दोनों इन्होंने ये कहा है कि आप RO का वाटर यूज करना चाहिए या फिर बॉइल्ड वाटर, दोनों में क्या फर्क होगा?
0: जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग जब कभी भी हम पानी की उबालने की बात करते हैं तो इसमें दो क्राइटेरियाज हैं, जैसे मैंने बताया ना कि अगर हम दिल्ली या आसपास में रह रहे हैं तो 20 सेकेंड रोलिंग बॉइल अप टू 1 मिनट
1: अगर RO का पानी है तो भी।
0: जी मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो इसमें हम जो फोकस कर रहे हैं वो हम कभी भी पानी की जो TDM है उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, हम लोग फोकस कर रहे हैं आपके जो बायोलॉजिकल चीजें हैं जैसे कि बैक्टीरिया है, कोलेरा का जो है या पैरासाइट्स हैं उसको नष्ट करने की।
1: जी डॉक्टर।
0: अगर हम RO की बात करते हैं तो RO में कुछ अलग टाइप के RO भी आते हैं जो बैक्टीरिया को भी रोक सकते हैं, अगर आपका RO उस लेवल का है तो आप RO का पानी भी पी सकते हैं, लेकिन ज्यादातर RO का जो काम है वो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का है।
1: जी डॉक्टर।
0: तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ही अगर आपका RO कर रहा है तो फिर वो आपको इन्फेक्शन से यूजुअली नहीं बचा पाता।
1: जी तो कोशिश कीजिए कि पानी बॉइल हो जाए और वो भी 20 सेकंड, मिनिमम 20 सेकंड बॉइल हो जाए तो बेटर रहेगा।
0: इंटरनेशनल गाइडलाइंस के हिसाब से 1 मिनट भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि 20 सेकंड भी अगर आप कर लेते हैं तो भी बहुत अच्छा।
1: जी बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब हमारे साथ में हमारे एक श्रोता जुड़ गए हैं, आइए उनसे हम बातचीत करते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं। हेलो।
2: हेलो नमस्कार, कमल सर को भी नमस्कार और गुप्ता डॉक्टर साहब को भी प्यार भरा नमस्कार।
1: जी नमस्कार, आपका शुभ नाम?
2: मैं रघुवीर सिंह ठाकुर उत्तराखंड से बोल रहा हूँ।
1: जी रघुवीर जी बताएं कैसे हैं आप?
2: बस ठीक है डॉक्टर साहब भी। और मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे हम तो उत्तराखंड में पहाड़ों में जैसे कि बारिश तो होती थी, भीगते तो है रोजमर्रा की जिंदगी में, गाय के लिए चारा पत्ती लाना पड़ता है, तो एक तो भीगने से ये सुना है कि मच्छर काट देगा तो बीमारी हो जाती है जैसे मलेरिया वगैरह भीगने के तुरंत बाद। दूसरा ये है कि जैसे भीगने से कोई सर्दी जुकाम या ऐसा बदन में ऐसा हो जाता तो हम हॉस्पिटल तो रहते नहीं है तो लेकिन आसपास से कोई दवाई खा लेते हैं, तो ये क्या ठीक है कि नहीं है? और भीगने से कोई मच्छर काटने से कोई बीमारी तो नहीं होती?
1: जी डॉक्टर गुप्ता जी।
0: देखिए पहले मैं आपके दूसरे प्रश्न का जवाब दे दूंगा कि भीगने से जैसे अगर आपको खांसी जुकाम या गले में दर्द होता है तो अमूमन ये जो भीगने के बाद वाला होता है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होता, इसमें किसी एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती, अमूमन तो ये सेल्फ लिमिटिंग यानी अपने आप ठीक हो जाता है, आपने गर्म काढ़ा चाय पी उससे ठीक हो जाता है। तो और अगर नहीं ठीक होता है तो आप कुछ एंटी एलर्जिक या विटामिन की गोली लेते हैं उसी से ठीक हो जाएगा। अब अगर ये 3-4 दिन से ऊपर का है तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना है और वो डॉक्टर अपना टेस्ट करके देखेंगे, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो ही किसी एंटीबायोटिक की जरूरत है, अदरवाइज तो ये यूजुअली इसको हम लोग बोलते हैं कि सेल्फ लिमिटिंग है, अपने आप ठीक हो जाता है।
1: जी तो डॉक्टर साहब इसमें इन्होंने कहा कि भीगने के बाद में अगर मच्छर काट लेता है तो क्या इससे भी मलेरिया?
0: भीगने से मच्छर का कोई मतलब नहीं, मच्छर पनपेगा तब जब आपके पास स्टैग्नेंट यानी कि खड़ा हुआ पानी होगा, जैसे कि हमारे किसी पॉट में चला जाए, हमारे किसी बर्तन में रखा हुआ रह जाए या बाहर जो कूड़ा है या जो नालियां हैं उसमें पानी जो है उसका बहाव कम हो जाए तो मच्छर वहां से पनपेगा, और वहां से जो मच्छर पनपेगा वो मलेरिया या डेंगू या चिकनगुनिया इस तरह की बीमारी कॉज कर सकता है। भीगने के बाद मच्छर एक्टिव हो जाएगा या मच्छर की बीमारी ज्यादा हो जाएगी इसका मतलब सिर्फ उसी से है कि स्टैग्नेंट पानी में मच्छर का पनपना बढ़ जाता है, मच्छरों की तादाद बढ़ जाती है और इसका कोई भीगने से इसका कोई मतलब नहीं।
1: डॉक्टर साहब तो जो मच्छर होते हैं क्या जो हर मच्छर है यानी कि हर मच्छर के कोई भी मच्छर काटेगा तो बीमारी हो जाएगी, मलेरिया हो जाएगा?
0: नहीं, अमूमन ऐसा नहीं होता। मलेरिया जो है वो फीमेल एनोफिलीस मस्किटो से होता है, और जो चिकनगुनिया और जो डेंगी है
1: जी,
0: वो एडीज मस्किटो से होता
1: जी
0: है। तो ये दोनों मॉस्किटो अलग अलग होती हैं। तो अमूमन हम लोग बोलते हैं कि जो फ्रेश वाटर जो मॉस्किटो होती है वो एडीज होती है
1: जी,
0: और जो गंदे पानी में जो पनपती है वो एनोफिलीज होती है। तो अगर आपके नालियों में गंदा पानी है, एल्गी है, तो वहां पे जो पनपेगी वो एनोफिलीज मॉस्किटो।

0: होगी तो उस एरिया में मलेरिया की तादाद हो सकता है ज्यादा हो
1: जी।
0: और जिस एरिया में फ्रेश वाटर स्टैग्नेशन होता है, जिसमें जैसे कि बरसात का पानी है, आपके घर का जो वेस्ट वाटर है या जो रेन ड्रेन पाइप्स जहां पे खुलते हैं, वहां पे अगर स्टैग्नेशन ज्यादा होता है तो वहां पे एडीज मॉस्किटो की पनपने की चांसेस ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से चिकनगुनिया और डेंगू होता है।
1: जी डॉक्टर साहब, कई बार ये भी देखा गया कि जहां पर नाले नहीं है, पानी जमा नहीं हो रहा है, लेकिन जंगल झाड़ यानी कि झाड़ियां हैं, पेड़ पौधे ज्यादा हैं, वहां पर भी मच्छर होते हैं।
0: हाँ, लेकिन झाड़ियों में जो पेड़ पौधे में जो मच्छर होते हैं वो ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो उन झाड़ियों में नीचे थोड़ा बहुत पानी स्टैग्नेशन होता है। वहीं जैसे घास है, घास में डैम्पनेस होगी, बरसातों में जो डैम्पनेस है वो बढ़ जाती है, तो इवन अगर आपका जो घास है उसके ऊपर अगर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर भी पानी होगा तो मच्छर उसमें भी पनप जाएगा।
1: जी डॉक्टर साहब, ये डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया, ये तीनों मच्छर से ही होते हैं, लेकिन किस प्रकार के मच्छर से होते हैं अभी आपने बताया, लेकिन हम विस्तार से जानना चाहेंगे कि डेंगू या मलेरिया, चिकनगुनिया, इनमें क्या क्या अंतर होता है, इनमें क्या अलग अलग इसमें लक्षण दिखाई देते हैं। डॉक्टर साहब, जब तक अपने लिसनर्स के कॉल आते हैं तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर लौट कर आते हैं।
0: ठीक।

0: और इस लवली ब्रेक के बाद हम फिर लौट आए हैं और आपके सवालों को लेने के लिए तैयार हैं, आपको जानकारियां देने के लिए तैयार हैं और आपको अपने डॉक्टर साहब से बात करवाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जी हाँ, मुझे लगता है कि एक फोन कॉल आ गया है और उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो क्या पूछना चाहते हैं। हेलो
1: हेलो सर, मैं राधा गुप्ता बोल रही हूँ दिल्ली से। नमस्कार सर। नमस्ते सर, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
2: नमस्कार राधा जी।
1: सर मेरा क्वेश्चन ये है सर, जैसे ये मॉनसून सीजन शुरू हो जाता है तो सर मुझे सुबह उठते के साथ छींकें आनी शुरू हो जाती है, आँख से भी पानी आना।

0: आंखों से भी पानी आना शुरू हो जाता है सर, और मेरे सिर में भी थोड़ा हल्का हल्का दर्द होता है। तो सर ये क्या ये इन्फेक्शन है कोई सर, क्या ये एलर्जी है मुझे?
1: जी डॉक्टर साहब, देखिए पुख्ता तौर से तो मैं नहीं कह पाऊंगा राधा जी, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं उस तरह से अगर ये घंटे डेढ़ घंटे में ठीक हो जाता है तो अमूमन इस तरह की चीजों को हम एलर्जी का ही नाम देते हैं। इन्फेक्शन हम तब बोलते हैं जब साथ में बुखार भी हो आपको। तो
0: नो सर,

0: तो ऐसी कोई खास बात नहीं होनी चाहिए। तो आप अपने जो फैमिली फिजिशियन है उनसे मिलके आप कुछ विटामिन की दवाई लिखवा सकती हैं, और कुछ नेजल स्प्रेज भी आते हैं वो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन एक बार उनके कंसल्टेशन के बाद ही।
1: डॉक्टर साहब, इन्होंने ये भी कहा कि इनकी आंखों से पानी आने लगता है।
0: जी, आंखों से पानी के पर्याय अलग अलग हैं कमल जी। जैसे आंखों से खाली पानी आता है तो उसको हम एक तरह का एलर्जी मानते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है आंखें लाल भी होती हैं और आंखों में से मवाद या पानी आता है तो तब उसको हम कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं। तो अमूमन ये बरसात के मौसम में किसी किसी को हो जाता है, तो यूजली इसको भी हम ब्रॉडली फ्लू में बोलते हैं, इसको आई फ्लू बोल देते हैं या फिर कंजंक्टिवाइटिस बोल देते हैं। तो अमूमन इसमें भी किसी बड़े एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती है, तो क्योंकि ये अमूमन इसका जो स्रोत होता है वो वायरल होता है। तो आप बस आंखों को प्रोटेक्ट करना है, आपको हाइड्रेटेड रखना है और एक दूसरे से आंख
1: कांटेक्ट नहीं करना है।
0: आईज का कांटेक्ट गलत है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि आई, जैसे आपने आंख पहुंची अपने हाथ से, वो हाथ आपने किसी को लगाया और उसने फिर वो हाथ अपने आंख पे लगाया, ऐसे आई फ्लू फैलता है। देखने से
1: नहीं होता। कई लोग काला चश्मा लगा के रख लेते हैं।
0: काला चश्मा लगाने का पर्याय दूसरा है। काला चश्मा लगाना इसलिए क्योंकि फोटोफोबिया, यानी कि जब आप रोशनी में जाते हैं बाहर तो आंखें चौंधिया जाती हैं, तो उस चीज के लिए काला चश्मा हम लोग एडवाइस करते हैं। काला चश्मा आंख से आंख देखने से आई फ्लू होगा ऐसा नहीं, उस चीज के लिए नहीं दे रहे हैं।
1: अच्छा, यानी कि आप जब कभी इस प्रकार से आपको आई फ्लू हो जाता है तो आप अपने हाथों से, अगर आपने अपनी आंखों को पोंछ लिया है और उसके बाद किसी और के साथ में हाथ मिलाते हैं और के साथ में संपर्क में आते हैं, तो आपको भी यानी कि सामने वाले को भी आई फ्लू हो सकता है।
0: जी,
1: तो इससे बचना चाहिए।
0: हाँ बिल्कुल। एक तो अगर सपोज मुझे आई फ्लू है तो मैं अगर अपनी आंख पोंछ भी रहा हूं तो मुझे अपने हाथ को डिसइंफेक्ट करना होगा, या तो मैं बार बार अपना हाथ धोऊं साबुन से, या फिर मैं एक एल्कोहल
1: सैनिटाइजर
0: होता है उसको यूज करूं जिसमें कम से कम 60% एल्कोहल हो।
1: जी,
0: 60% एल्कोहल।
1: जी, और जो अपने जो कपड़े हैं उनको भी अगर एक बार पहनने के बाद में अगर उनमें भी चला जा सकता है।
0: इसलिए हम लोग कहते हैं कि कपड़े आपके हमेशा धुले हुए और साफ कपड़े पहनने हैं आपको बरसातों में, खासकर अगर आप रोज चेंज करते हैं तो और भी अच्छा।
1: जी जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक और श्रोता हमसे जुड़ना चाहते हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो
2: हेलो
1: जी, आपका शुभ नाम?
2: हाँ, मेरा नाम राजेंद्र है और मैं करमपुरा दिल्ली से ही बोल रहा हूँ।
1: जी, क्या पूछना चाहते हैं?
2: मेरी उम्र है
1: जी,
2: तो सबसे पहले तो एंकर साहब और डॉक्टर साहिबान दोनों को बेहद शालीनता से नमस्कार और आभार।
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।
2: डॉक्टर साहब, मेरे और पहला सवाल ये है कि जो वर्षा का पानी से कहा जाता है कि अमृत होता है, तो मैं जानना चाह रहा हूँ अगर हम इसको किसी साफ सुथरे बर्तन में स्टॉक करें, भर लें, तो क्या उस पानी से हमें आई वॉश करनी चाहिए और इसको हम पी भी सकते हैं, कैसे बना सकते हैं हम? कोई हर तो नहीं इससे बरसात के दिनों में दांत खाज खुजली कुछ ज्यादा ही हो जाती है, हाथ पर नेल्स होते हैं, नाखून और फंगस ये बढ़ जाते हैं, तो इसका हम घरेलू स्तर पर क्या उपाय करें? और तीसरा आखिरी सवाल ये है कि इन दोनों पार्क में ना जिम बहुत लग गई है, तो क्या बरसात दिनों में हमें जिम एक्सरसाइज करनी चाहिए मशीनों पे, जरा ये बताएं, बड़ी मेहरबानी होगी।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब,
0: देखिए पहला सवाल जो आपने कहा वो बिल्कुल सही कहा साहब, बरसात का पानी अमृत होता है। अगर बरसात नहीं हो तो देश में कुछ नहीं चले।
1: जी,
0: ना तो हमारे जो किसान भाई हैं उनकी उपज आएगी, ना देश चलेगा, ना देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। किसी भी चीज में अगर कुछ चाहिए तो हमें बरसात सबसे पहले चाहिए। तो इसलिए जो आपने कहा साहब, बरसात का पानी अमृत है, वो सबके लिए अमृत है। लेकिन अब उस बरसात के पानी का जो हम आजकल वाटर रिजर्वॉयर्स बनाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग ग्राउंड वाटर बढ़ाते हैं। लेकिन अगर हम उसी पानी को अगर किसी बर्तन में लेते हैं तो कच्चे पानी के उसमें ट्रीट होता है वो, यानी जो क्लासिफिकेशन अगर हम करें तो कच्चे पानी में ट्रीट होगा। अगर वो अनट्रीटेड पानी अगर हम यूज करते हैं तो उसमें इन्फेक्शंस होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आजकल अगर हम देखें तो बरसात के पानी में कुछ पोल्यूटेड चीजें भी आती हैं, जैसे जो हम अगर दिल्ली में ही रह रहे हैं तो अगर हम देखें
1: एनवायरमेंट की वजह से।
0: तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये है तो अमृत, लेकिन अगर उसको हम थोड़ा सा प्यूरिफाई कर लें और ट्रीट कर लें या उबाल लें तो उसको हम पीने में भी यूज कर सकते हैं, और जैसे आप बोल रहे हैं मुंह हाथ धोने में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बेटर है कि उसको ट्रीट कर लिया जाए।
1: जी, छान लें अच्छी तरह से, अगर उसे बॉईल कर लें और उसके बाद में इस्तेमाल करें तो बेटर होगा, आंखों के लिए भी और अपने जो पीते हैं उसके लिए भी, पेट के लिए भी।
0: दूसरा इन्होंने पूछा था कि स्किन डिजीजेस, तो उसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ये ह्यूमिड एनवायरमेंट होता है और पसीने ज्यादा होते हैं तो स्किन की डिजीजेस काफी कॉमन होती हैं। इसमें अमूमन तो जो हम एडवाइस करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, साफ, ड्राई, और अगर

0: हो सके तो प्रेस किए हुए कपड़े आप पहनेंगे, तो ये जो फंगल इन्फेक्शन जो हमारे कपड़ों पर लग जाते हैं या फंगल जो फंगस हमारे कपड़ों पर लग जाती है वो डेड हो जाती है, वो फिर वापस आपके शरीर को दोबारा इन्फेक्ट होने नहीं देती है।
1: जी डॉक्टर।
0: तो यूजली तो जैसे जैसे आप सूखापन करेंगे, अगर आपकी बॉडी इम्यूनिटी अच्छी है तो यूजली तो सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, किसी किसी को ऊपरी तौर से कोई क्रीम या किसी किसी को खाने वाली गोली की जरूरत पड़ती है। अमूमन ये बहुत ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन नहीं होते।
1: जी डॉक्टर। और इन्होंने जो फंगल इन्फेक्शन की बात की है और इन्होंने ये कहा कि खुजली वगैरह सब हो जाता है और नाखूनों की भी बात कर रहे थे थोड़ी बहुत कि इस प्रकार से नाखून बड़े होते हैं तो उसमें कुछ फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं क्या?
0: हाँ, जैसे मैंने बताया ना ये दांत खुजली फंगल इन्फेक्शन ही होते हैं, इसको हम लोग टीनिया बोलते हैं। तो इसका इलाज बहुत ही ईजी होता है। अमूमन जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, आपको शुगर नहीं है, आपको किडनी की दिक्कत नहीं है, लिवर की दिक्कत नहीं है, तो ये जल्दी ठीक हो जाते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, इन्होंने एक बात और कही कि आजकल कई जगह देखा जा रहा है कि पार्क्स में ओपन जिम है, अगर हम ओपन जिम में अगर अपना एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं तो इसमें एक्सरसाइज तो होता ही है, लेकिन क्या इसमें कुछ नुकसान भी हो सकता है कि इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी भी हो सकती है अगर शारीरिक रूप से लिया जाए तो? और सांस को जी
0: चलती बरसात में जिम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ह्यूमिड एनवायरनमेंट में अगर आप जिम एक्सरसाइज कोई भी करते हैं तो आपको बस ये है कि शरीर के पसीनों का ध्यान रखना है पहला, और दूसरा अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस है जो मैंने अपनी बातचीत के दौरान सबसे पहले बताया था, तो आपको टेम्परेचर डिफरेंस अवॉइड करना है। अगर आपकी बरसाती हवा चल रही है तो उसमें आप एक्सरसाइज करेंगे तो टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा बढ़ेगा तो उसमें आपको बीमार होने का या मांसपेशियों में अकड़न होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब एक और फोन कॉल आया हुआ है, उनसे हम बात करते हैं। हेलो
2: जी नमस्कार।
1: नमस्कार, आपका शुभ नाम बताएं।
2: पीपी गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ।
1: जी गौतम साहब बताएं।
2: हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जब बारिश होती है तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई बारिश में नहाने से घमौरिया वगैरह ठीक हो जाती है, तो हमारे बच्चे या हम लोग क्या बारिश के पानी में नहाएं तो हमारी घमौरिया या स्किन डिसऑर्डर सही हो जाते हैं? कृपया विस्तार से बताएं।
1: डॉक्टर साहब, क्या बारिश के पानी में नहाने से स्किन जो डिसऑर्डर्स हैं, घमौरियां हैं, वो क्या ठीक हो जाती हैं या इसके कुछ और रीजन होते हैं?
0: देखिए इसके बारे में मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है कि ठीक होते हैं कि नहीं होते हैं, लेकिन बारिश में भीगने से अगर साफ एनवायरनमेंट में आप भीग रहे हैं तो मजा जरूर आता है।
1: थोड़ी सी राहत मिल जाती है जो खुजली होती है, जो उसमें फंगस जो आ जाता है उसमें अगर भीग जाए तो हो सकता है कि थोड़ी सी परेशानी कम हो सकती है, खुजली कम हो सकती है।
0: बिल्कुल, मैं माफी चाहूंगा कि इस सवाल का मैं घमौरियों से रिलेटेड जो सवाल उन्होंने पूछा उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ एक अंदेशा जरूर लगा सकते हैं कि बारिश के जस्ट पहले जैसे उमस बहुत ज्यादा होती है, पसीने बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसकी वजह से अगर किसी किसी को कुछ दाने वाने हो गए और बरसात के बाद क्योंकि टेम्परेचर ठीक हो जाता है तो हो सकता है उस वजह से हो जाए, तो ये लेकिन ये मेरा
1: पर्सनल
0: थिंकिंग है, मतलब इसका कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड है कि नहीं ये मैं शायद हो सकता है अगली बार पढ़ के आपको बता।
1: जी जी जी जी जी, कोई बात नहीं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब एक मैसेज आया हुआ है, व्हाट्सएप मैसेज है, और ये कहते हैं कि गुड इवनिंग डॉक्टर साहब, क्या रेनी सीजन में सर्जरी करवा सकते हैं, आई सर्जरी?
0: हाँ, मतलब रेनी सीजन में सर्जरी का कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, ऐसा नहीं कि आप नहीं करा सकते या फिर करानी नहीं चाहिए।
1: जी
0: इसमें ऐसा कोई वो नहीं है, परेशानी नहीं है।
1: हाँ, लेकिन ये है कि जैसे कई लोग कहते हैं कि पसीना आ जाता है तो उसमें कुछ परेशानी हो सकती है, पानी चला जाता है तो उसमें परेशानी हो सकती है, इस प्रकार की कुछ समस्या हो सकती है क्या?
0: इसको हम देखिए ऐसा कमल जी, अगर हम आजकल की बात करें तो सर्जरी के बाद अमूमन आप 3-4 दिन तो घर में ही रहते हैं, तो घर में आपका टेम्परेचर इस तरह का नहीं होगा कि आपको पसीने आए।
1: जी
0: तो मुझे तो ऐसा कोई खास इसमें कारण नहीं लगता, इवन हमने भी अपने किसी मरीज को ऐसे सर्दी में या रेनी सीजन में सर्जरी ना कराने की सलाह अभी तक तो नहीं दी है।
1: जी डॉक्टर साहब, सरोज मल्होत्रा जी ही हैं साकेत रट से, और इनका कहना है कि कितना फीवर होने पर बच्चों या बड़ों को मेडिसिन लेनी चाहिए?
0: देखिए फीवर कितना का कोई क्राइटेरिया नहीं होता, फीवर का मतलब जब कभी भी शरीर का जो टेम्परेचर है अगर आपके थर्मामीटर में 99.5 से ऊपर का आ रहा हो तो उसको हम बुखार कहते हैं, तो जब बुखार हो अगर वो अपने आप नहीं उतर रहा है तो बेहतर है उसके लिए दवाई ले लें, और उसकी डोज जो है वो बच्चों और बड़ों के हिसाब से वजन के हिसाब से अलग अलग होती है, तो वो आपके डॉक्टर से सलाह लेके ही करें।
1: डॉक्टर साहब एक व्हाट्सएप मैसेज और है, अश्विनी शर्मा जी पूछते हैं कि जो आरओ वाटर से सिर्फ चाय और खाना बनाने का इस्तेमाल करते हैं और उसके अलावा जो दूसरा पानी होता है उसका हम इस्तेमाल करते हैं, तो इससे कुछ परेशानी हो सकती है क्या?
0: आरओ वाटर से बताया ना, वो आरओ वाटर से इलेक्ट्रोलाइट्स तो करेक्ट हो जाते हैं, अगर आपके आरओ में कुछ एडवांस्ड आरओ भी आते हैं जिसमें कि बैक्टीरियल और पैरासिटिक इन्फेक्शन का वो क्लेम करते हैं कि भाई ठीक हो जाते हैं, अगर ऐसा कुछ है तो आप वो यूज कर सकते हैं, लेकिन आप नॉर्मल अपने घर में अगर एक बड़े मर्तबान में या बड़े पति

0: में पानी गर्म करके, जैसे मैंने बताया ना, रोलिंग बॉयल में 20 सेकंड से लेके 1 मिनट तक का आपको रोलिंग बॉयल करना है, और उसके बाद उस पानी को ठंडा करके आप कैसे भी यूज कीजिए, चाहे आप उसको पीने में यूज कीजिए, खाना बनाने में यूज कीजिए, हर तरीके से वो पानी आपके लिए फिर सेफ रहेगा। आपको अलग से उसके लिए बोतल मंगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, हेपेटाइटिस, ये जानकारी मिलती है कि पानी प्रदूषित है और ये काफी लंबे समय के बाद भी इसके लक्षण नजर आते हैं, तो किस प्रकार के जो हेपेटाइटिस है ABCDE, तो इनमें सबसे खतरनाक, जैसे कि कल डॉक्टर साहब से भी हम बात कर रहे थे, तो ए जो है वो उसके लिए किस प्रकार होने चाहिए, बी के लिए क्या होने चाहिए, सी के लिए, डी के लिए, ई के लिए, उन्होंने सारी कुछ बताया। तो क्या ये पानी से जो जन्मते हैं, बैक्टीरिया निकलते हैं, फंगल या फिर इन्फेक्शन होता है, तो ये जो हेपेटाइटिस ए है इसके लिए किस प्रकार के, ये इसका किस प्रकार का लक्षण होता है और इसमें क्या करना चाहिए?
0: देखिए, हेपेटाइटिस ए और ई
1: जी,
0: ये दोनों प्रदूषित पानी से होते हैं। इसको हम लोग फीको ओरल रूट कहते हैं। जैसे सपोज अगर मुझे अगर हेपेटाइटिस ए है तो मेरे मल के थ्रू कहीं का पानी अगर दूषित हो जाएगा तो वो वायरस वहां चला जाता है और फिर जो वो पानी पिएगा उसको वो हेपेटाइटिस होने का डर रहता है। तो बरसातों में काफी कॉमन है, तो जो हमारा सीवर है वहां से पानी जो है ग्राउंड वाटर में चला जाता है,
1: मिक्स हो जाता है
0: और वो ग्राउंड वाटर अगर प्रॉपरली ट्रीटेड नहीं होता है तो फिर हेपेटाइटिस ए और ई उससे फैल सकता है। अब हेपेटाइटिस ए और ई को हम लोग अमूमन पीलिया का नाम देते हैं। जो हम लोग आमतौर पर पीलिया बोलते हैं वो हेपेटाइटिस ए और ई ही होता है। तो ये तो इसकी प्रक्रिया हुई फैलने की। इसमें यूजली जो सिम्टम्स होते हैं वो फीवर है, आपका खाने पीने की इच्छा बिल्कुल मर जाती है, आपको उल्टियां हो सकती हैं, दस्त हो सकते हैं, लैटिन किसी किसी की सफेद आनी शुरू हो जाती है, आपका पेशाब जो है बहुत ज्यादा पीला हो जाता है, वीकनेस हो जाती है, ये सब चीजें इसमें होनी शुरू हो जाती है।
1: आंखों का रंग भी कुछ पीला सा नजर आने
0: लगता
1: है।
0: जी बिल्कुल, आंखों का रंग भी पीला हो जाता है और शरीर बिल्कुल शिथिल हो जाता है, आपको बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है। तो ये सब चीजें इसमें हेपेटाइटिस ए और ई में होती हैं।
1: जी, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? डॉक्टर साहब, अभी हमने कुछ देर पहले बात की थी और किसी ने पूछा था कि एक लिसनर ने पूछा था क्या ग्राउंड वाटर जो है उससे भी कुछ संभावना बनी रहती है हेपेटाइटिस ए की या ई की?
0: जी, मैंने बताया ना, जैसे सीवर का पानी
1: जी
0: या जहां
1: मिक्स हो जाने पे वो जी, लेकिन अगर मिक्स ना हुआ हो और ग्राउंड वाटर जैसे कई जगह
0: अमूमन बरसातों में मिक्स हो ही जाता है।
1: अच्छा,
0: ग्राउंड वाटर का जो स्रोत है वो ऊपर से जब पानी नीचे जाएगा तो ही ग्राउंड वाटर बनता है।
1: जी जी, तो इसलिए उसका इस्तेमाल कुछ सोच समझ करके करना चाहिए।
0: जी, उबालना सबसे बढ़िया प्रक्रिया है बरसातों में, तो कम से कम आपको पानी उबाल के ही पीना चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब, हम बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं और इसमें एक डॉक्टर साहब बहुत कम सुनाई देने को मिलता है और वो है लेप्टोस्पायरोसिस। डॉक्टर साहब, ये किस प्रकार की बीमारी है, बरसात के मौसम में हो जाती है?
0: लेप्टोस्पायरोसिस अमूमन जो दूषित एनिमल्स के यूरिन को यूरिन की वजह से स्प्रेड होता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जो पानी है वो दूषित यूरिन से कंटेमिनेट हो जाता है
1: जी,
0: और उसकी वजह से लेप्टोस्पायरोसिस होता है।
1: इसमें इसके लक्षण क्या होता है डॉक्टर साहब?
0: लक्षण अमूमन फीवर, बहुत ज्यादा मसल एक, हेड एक, किसी किसी को ब्लीडिंग भी हो जाती है लैट्रिन में से और पेशाब में भी, आंखें बिल्कुल कंजक्टिवाइटिस या रेड आईज बोलते हैं, और अगर सीवियर होता है तो ये किडनी और लीवर को भी इफेक्ट कर सकता है आपके।
1: अच्छा, ये मतलब कुछ ज्यादा खतरनाक कह सकते हैं?
0: जी, अगर अगर ट्रीट नहीं होता है तो ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अमूमन जो आजकल हमारी एक प्रचलन हो गया है कैंड चीजें लेने का, जो आपने कैन खोला और कोई भी कोल्ड ड्रिंक पी लिया, जूस पी लिया, तो ये भी बहुत कॉमन है लेप्टोस्पायरोसिस का एक रीजन।
1: अच्छा।
0: क्योंकि जो जितने भी स्टोर रूम्स होते हैं या जितने भी वेयर हाउसेस होते हैं जहां पे ये स्टोर होते हैं, वहां पे चूहे हैं या जिसको हम लोग घूस बोलते हैं या रैबिट्स हैं या इवन डॉग्स हैं, उनके दूषित यूरिन, जैसे अगर उन्होंने वो कैन के ऊपर यूरिन कर दिया या यूरिन उस कैन के ऊपर जमा हो गया और आपने बिना धोए कैन को खोला और पी लिया आपने, जैसे कोई भी कोल्ड ड्रिंक या कोई भी जूस, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है आजकल लेप्टोस्पायरोसिस।
1: लेकिन डॉक्टर साहब, आपने कहा कि कैन की बात की है, तो आपने ये कहा कि इसके ऊपर अगर यूरिन है किसी चूहे का या फिर किसी और भी जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं उनके, तो आप ये तो कैन तो बंद होते हैं डॉक्टर साहब?
0: नहीं, कैन के ऊपर सर
1: जी,
0: जो कैन का एल्यूमिनियम का कैन है
1: जी,
0: उसके ऊपर जहां आप खोलते हैं उस एरिया के ऊपर तो बंद नहीं, मतलब खुला हुआ नहीं है, लेकिन वहां पे जो यूरिन है वो सूख जाएगा
1: जी।
0: तो जब आप खोलेंगे कैन को तो जो बबल्स या कोई भी जो लिक्विड है वो ऊपर जाएगा और फिर उसी को आप पिएंगे तो वो इन्फेक्शन उसके साथ ही अंदर चला
1: जी। और अक्सर बरसात में देखा जाता है कि चूहे घरों में घुस जाते हैं और बर्तन वगैरह में कहीं कहीं पर ये सब विचरण करने लग जाते हैं
0: जी, जी।
1: तो ये एक परेशानी का सबब हो सकता है।
0: और इसका बहुत छोटा सा सोल्यूशन है कि जब भी आप बाजार से कोई भी कैंड जूस या कुछ लेते हैं तो उसको बस अच्छी तरह धो लीजिए, ठीक है। इवन जैसे बर्तन को भी यूज करने से पहले आप धो लेंगे तो इसकी काफी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी कि आपको लेप्टोस्पायरोसिस इन्फेक्शन
1: हो। ये अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब, क्योंकि आज तो चलन हो गया है कैंड फूड का या फिर जूस का इस्तेमाल करने का। डॉक्टर साहब एक फोन कॉल है, उनसे बातचीत करते हैं। हेलो,
2: नमस्कार डॉक्टर साहब।
0: नमस्कार जी,
2: मैं किशन बोल रहा हूँ
1: जी।
2: मेरे को हर्निया का ऑपरेशन कराना था। एक मेरी उम्र 75 है, हर्निया मेरे जान के बगल में हो रखा है, राइट साइड की जान में, तो उसके ऑपरेशन के लिए ये समय सही है क्या
1: जी डॉक्टर साहब? इनको हर्निया
0: मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था। देखिए, इसमें मौसम से कोई मतलब नहीं है, सब कुछ डिपेंड करता है आपका हर्निया किस लेवल का है और ऑपरेशन होना है कि नहीं होना है, वो सब डिसीजन आपके सर्जन का है। लेकिन खाली मौसम की वजह से उसको डिले करना है ऐसा हमारी तरफ से कोई एडवाइस नहीं है
1: जी। किशन जी, आप कभी भी हर्निया का ऑपरेशन करा सकते हैं, डॉक्टर साहब का ये कहना है, इनकी सलाह ये है। और डॉक्टर साहब एक व्हाट्सएप मैसेज है, और ये एक बार फिर इन्होंने नरदेव सिंह चौहान जी ने कोटद्वार उत्तराखंड से पूछा है। एक बार इन्होंने प्रश्न पूछा था और इनका पूछना है, कहना है कि बरसात के मौसम में कैसा खान पान होना चाहिए और किन चीजों से परहेज करना चाहिए।
0: देखिए, खान पान के मामले में अगर हम बोलें तो ब्रॉडली आपको दो तीन चीजों का जरूर ध्यान रखना है। एक तो कच्चा खाना बिल्कुल अवॉइड कीजिए
1: जी।
0: आपका जो खाना होना चाहिए वो वेल कुक्ड और हॉट हम लोग बोलते हैं, यानी कि आपका खाना जो है अच्छी तरह पका हुआ होना चाहिए, और गर्म खाना और फ्रेश खाना खाएं, कभी भी पुराना रखा हुआ खाना ना खाएं
1: जी।
0: अगर हम बात करें फ्रूट्स की या नट्स की, तो हमेशा ट्राई कीजिए वो वाले फ्रूट्स लो जो कि आप पील कर सको, जो आप छील सको। यानी छिलका उतरा हुआ डायरेक्ट फ्रूट लेना बरसात के मौसम में थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है, और कट फ्रूट तो बिल्कुल ही नहीं।
1: डॉक्टर साहब इसमें तो फिर जैसे आपने कहा कि छील करके पील करके तो उसमें डॉक्टर साहब इसमें सेब है, अमरूद है, इस प्रकार के, तो इनको तो छिला तो नहीं जाता है?
0: नहीं तो, लेकिन आप अच्छी तरह धो तो सकते हैं
1: जी। अच्छी तरह धोया जा सकता है, धोकर ही खाना चाहिए
0: जी, बिल्कुल धोके खाना चाहिए। इवन कई लोग बरसातों में सेब को पील करके भी खाते हैं। इवन अगर अमरूद अगर आप खाते हैं तो अमरूद को आप अच्छी तरह वॉश करके जरूर
1: जी जी। तो ये अच्छी बात है कि जब कभी आप इस प्रकार के जो बिना छिले हुए छिलके
0: और धोने के लिए भी हम ये बोलेंगे कि ट्रीटेड वाटर से धोला जाए। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को आप ट्राई कीजिए कि वो ट्रीटेड वाटर से, यानी जो पोटेबल वाटर जिसको हम लोग पीने का पानी बोलते हैं, उससे धोया जाए
1: जी डॉक्टर साहब।
0: अनट्रीटेड वाटर या बरसाती पानी से बिल्कुल ना धोएं
1: जी डॉक्टर साहब। परहेज करने वाली बात है, तो किस प्रकार जो खान पान में आजकल देखा जाता है कि चटपटा खाने की आदत है लोगों को, ऑयली चीज खाने की आदत है, तो बरसात के मौसम में क्या इन सबको अवॉइड करना चाहिए?
0: देखिए, जो भी चीज आप, जैसे मैंने बताया ना, ऑयली चीज और चटपटी चीज अगर खाने भी चाहें तो ऐसी जगह से खाएं जहां पे एक तो फ्रेश मिल रहा हो और ऊपर से वो ओपन ना हो, जैसे कवर्ड हो। जैसे अगर आप कहीं कोई ऐसी तली हुई चीज खा भी रहे हैं तो कवर्ड चीज में रखी हो, उसमें मक्खी मच्छर ना हो
1: जी।
0: क्योंकि बरसातों के टाइम पे टाइफाइड होना या एंट्राइटिस होना ये बहुत ज्यादा कॉमन है
1: जी, इसलिए ढक करके रखें। और जो छील के खाने वाली चीज है उनको जरूर छील के खाएं, और अगर छील के नहीं खाते हैं तो उसे जरूर अच्छी तरह से ट्रीटेड वाटर से
0: बिल्कुल
1: छील के खाना चाहिए और धो के खाना चाहिए जी।
0: और आइडियली आपको हाथ धो के अपना खाना बनाएं और हाथ धो के ही खाना खाएं
1: जी। डॉक्टर साहब एक छोटा सा ब्रेक लें
0: जी, प्लीज
1: एक लवली सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं
0: जी।

0: और इस छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर लौट आए हैं और हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता जी। डॉक्टर साहब, अक्सर हम देखते हैं कि बड़े बुजुर्गों का बड़ा ख्याल रखा जाता है और रखना भी चाहिए, और जो नवजात शिशु होते हैं उनको भी बरसात के मौसम में कुछ अच्छी तरह से रखना चाहिए, तो ये किस प्रकार से उनका ध्यान रखे, किस प्रकार से बुजुर्गों का ख्याल रखे, ये दोनों आप थोड़ी सी जानकारी दे दें।
1: देखिए, कुछ जानकारी तो जैसे भी पूरे कार्यक्रम में देते ही आ रहे हैं कि टेम्परेचर डिफरेंस का ध्यान रखना है, भीगे कपड़े पहन के हवा में नहीं घूमना है। बुजुर्गों में दो चीजें हैं कि एक तो क्या है कि हम अगर सीनियर सिटीजन की बात करें तो मांसपेशियों में अकड़न या मांसपेशियों में दर्द, ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से या जो बरसाती हवा है उसकी वजह से
0: हो जाता है,
1: बढ़ जाता है थोड़ा सा। अगर किसी को ज्वाइंट की प्रॉब्लम है तो ज्वाइंट की प्रॉब्लम या ज्वाइंट पेन्स थोड़े से बढ़ जाते हैं किसी किसी को। दूसरा, अगर हम बात करें कि फ्रैक्चर्स की, तो ये बरसाती मौसम में थोड़े से ज्यादा कॉमन होते हैं, खासकर अगर हम बुजुर्गों की बात करें तो फिसलन की वजह से या डैम्प, जब जगह डैम्प होती है तो जब आप सुबह सैर करने जाएं या बाहर निकलें तो आप थोड़ा सा ध्यान से चलें। अगर आपको लगता है कि इस जगह फिसलन है तो बेटर है कि आप घर में ही वॉक करें या घर में ही कुछ एक्सरसाइज या टोनिंग एक्सरसाइजेस करें। नवजात शिशु की अगर हम बात करें तो उनके खान पान का आपको खास ध्यान रखना है। अगर आप मदर हैं तो आपको खुद को कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको खुद को कफ कोल्ड है या फ्लू जैसे सिम्टम्स हैं तो आप बच्चे को सबसे ज्यादा इन्फेक्ट कर सकते हैं। नवजात शिशुओं की इम्यूनिटी थोड़ी सी कम होती है एज कम्पेयर टू अदर, तो उस वजह से भी थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ेगा।
0: जी डॉक्टर साहब, अभी इम्यूनिटी की बात की डॉक्टर साहब, तो सभी को, बच्चों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को और जो एडल्ट हैं, जो नॉर्मल हैं, उनको भी इस बरसात के मौसम में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए?
1: देखिए, जैसे मैंने बताया, फ्रेश फ्रूट्स और विटामिन सी रिच फ्रूट्स, ये सब बहुत जरूरी होते हैं। अगर हम बात करें कि फ्रूट्स की, तो जैसे विटामिन सी रिच फ्रूट्स हैं, जैसे नींबू है या संतरे हैं, ये सब चीजें ज्यादा होनी चाहिए, इवन आंवला
0: जी,
1: तो ये सब हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं। थोड़ा सा प्रोटीन आपकी डाइट में थोड़ा सा एक्स्ट्रा होना चाहिए
0: जी। प्रोटीन के अलावा डॉक्टर साहब और किस प्रकार की चीजें ले सकते हैं? अगर खान पान की बात करें तो, अगर फ्लूड की बात करें, फ्लूड में किस प्रकार की चीज ले सकते हैं?
1: देखिए, फ्लूड में हम ORS ले सकते हैं, नींबू का, जो नींबू की शिकंजी होती है वो ले सकते हैं, और नारियल पानी ले सकते हैं। तो ये सब चीजें हम बरसात में, थोड़ा सा हाइड्रेटेड रहेंगे तो, क्योंकि उमस की वजह से अगर पसीना भी निकल रहा है तो प्लेन पानी पीने से बेहतर है कि हम ORS, नींबू पानी या नारियल पानी, इस तरह की चीजें ज्यादा से ज्यादा लें।
0: जी डॉक्टर साहब, बरसात के मौसम में टाइफाइड की शिकायत भी कुछ ज्यादा बढ़ जाती है, तो टाइफाइड में इसके लक्षण क्या होते हैं, किस प्रकार से इससे बचाव किया जाए?
1: टाइफाइड भी जैसे मैंने बताया ना, ये आंत्रशोथ यानी एंट्राइटिस का एक पार्ट है। इसमें क्या होता है कि आपको जो फीवर होता है वो थोड़ा सा लंबा चलता है एज कम्पेयर टू अदर वायरल फीवर
0: जी।
1: दूसरा, इसमें फीवर के अलावा आपको दस्त, उल्टी भी हो सकती है
0: जी।
1: और इसमें किसी किसी को कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं
0: जी।
1: तो अगर आपका फीवर 3-4 दिन से ज्यादा का चल रहा है, आपको लगातार दस्त हो रहे हैं, अगर आपको लगातार उल्टियां हो रही हैं, आपका एपेटाइट लूज हो रहा है, तो फिर आपको अपने डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए ताकि वो आपको एक बार टाइफाइड के टेस्ट करा के देख लें और फिर टाइफाइड का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दे दें
0: जी। डॉक्टर साहब, ये डेंगू

0: मलेरिया, चिकनगुनिया बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी थोड़ी, अगर अगर क्योंकि हमारे पास टाइम वक्त बहुत कम है, तो थोड़ी थोड़ी जानकारी दे दें कि इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं।
1: देखिए, शुरुआती लक्षण करीब करीब सबके सेम होते हैं, चाहे चिकनगुनिया हो, चाहे डेंगू हो, चाहे मलेरिया हो, सभी बुखार के साथ प्रेजेंट करते हैं और बुखार काफी तेज होता है। इसमें बस थोड़े थोड़े डिफरेंस हैं, जैसे कि चिकनगुनिया में ज्वाइंट पेन्स है या जो रैश जिसको हम बोलते हैं शरीर में जो लाल लाल चकत्ते होते हैं वो ज्यादा होते हैं, थकान बहुत ज्यादा होती है। डेंगू में अगर हम बात करें तो हेडेक बहुत ज्यादा होता है, मसल एंड ज्वाइंट पेन्स बहुत ज्यादा होते हैं, किसी किसी को आंखों में भी दर्द होता है। मलेरिया की हम बात करें तो मलेरिया में एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको बुखार ठंड लग के आएगा,
0: तेज ठंड लगती है,
1: तेज ठंड लगती
0: है, होती है
1: जी बिल्कुल, राइगर जिसको हम बोलते हैं, कपकपी होके और बुखार जो है। फिर उसमें कभी कभार हमें पता ऐसे चलता है कि भाई किसी किसी को हर 24 घंटे में आ रहा है, किसी किसी को हर 48 घंटे में आ रहा है, इस तरह का कपकपी वाला फीवर, तो वो मलेरिया की तरफ ज्यादा जाता है
0: जी। डॉक्टर साहब, बरसात के मौसम में यह भी देखा गया कि फूड पॉइजनिंग कई बार बढ़ जाती है, तो फूड पॉइजनिंग ये होता क्या है?
1: फूड पॉइजनिंग एक, जैसे मैंने बताया कि ये दूषित पानी का आपके खाने में मिश्रण
0: जी,
1: और वो आपके जब पेट में जाता है तो वो एक अलग टाइप की प्रक्रिया या इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन कॉज करता है, जिसको हम फूड पॉइजनिंग का नाम देते हैं
0: जी।
1: इसमें उल्टी, दस्त, बुखार, ये तीनों चीज हो सकती हैं। किसी किसी को बहुत ज्यादा हो जाती है तो लैट्रिन में से खून भी आ जाता है। तो ये फूड पॉइजनिंग के अलग अलग मानक होते हैं और अलग अलग ग्रेड्स होती हैं।
0: तो अगर किसी को इस प्रकार हो जाए तो उनको प्राथमिक उपचार यानी कि फर्स्ट एड किस प्रकार से किया जाए?
1: अगर आप किसी दूर दराज के इलाके में है तो सबसे पहले इसमें हमें जो प्राथमिक उपचार चाहिए वो है डिहाइड्रेशन ठीक करना, यानी कि आपको उस पेशेंट का पानी ठीक रखना है
0: जी,
1: यानी हाइड्रेशन प्रॉपर रखना है, चाहे ORS दें चाहे इंजेक्शन से दें, लेकिन वो प्राथमिक उपचार सबसे इम्पोर्टेंट होगा
0: जी। डॉक्टर साहब, बहुत सारी जानकारियां आपने दी और हमारे श्रोताओं ने भी कई सारे सवाल पूछे और उनका भी आपने बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया। मुझे लगता है कि अपने श्रोता हमारे इस कार्यक्रम से जरूर संतुष्ट होंगे और अगली बार एक नए टॉपिक के साथ हम फिर आएंगे डॉक्टर साहब। और अपने दोस्तों से हम ये कहेंगे कि बारिश का जो मौसम होता है वो खुशियां लेकर के लेकर आता है और स्फूर्ति लेकर के आता है, लेकिन बीमारियों से बचने के लिए सतर्क रहना भी जरूरी है, सावधानी रखनी जरूरी है, स्वच्छता, मच्छरों से बचाव जरूरी है, और जो पानी पीते हैं उसे उबला यानी कि उबाल कर पीना चाहिए। तो अगर ऐसे उपाय करते हैं तो इन बीमारियों के जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है। तो हम तो यही कहेंगे कि जानकारी रखें, सुरक्षित रहें और बारिश का मजा लेते रहें। और अब आपसे दोस्तों विदा लेने का वक्त हो चुका है। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, वक्त निकाला आपने और इतनी सारी जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, कल एक नए टॉपिक के साथ और एक नए एक्सपर्ट के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। आकाशवाणी से जुड़े रहिए और फिलहाल अपने दोस्त के यानी कमल किशोर को दीजिए इजाजत। नमस्कार, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

आकाशवाणी एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप 102.6 की फ्रीक्वेंसी से। नीचे प्रस्तुत है शाम 4 बजे के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल के मुख्यालय में 189 करोड़ की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भारत और ब्राजील ने पुणे में ब्रिक्स आईसीटी बैठक से इतर डिजिटल नवाचार और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 3 वर्ष की वकालत अवधि को घटाकर 1 वर्ष किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री के साथ बैठक की। गृह मंत्री अमित शाह ने आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी नेता कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुंबई के कुर्ला पूर्व इलाके में आज तड़के एक क्रेन के घरों पर गिर जाने से 8 लोग घायल हुए। जम्मू कश्मीर में स्कूल शिक्षा विभाग ने अपने कर्मचारियों के लिए व्यापक स्थानांतरण नीति अधिसूचित की है।

इसका उद्देश्य तबादलों और नियुक्तियों में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता लाना है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आज सुबह इस्लामाबाद के एक निजी अस्पताल में चिकित्सीय जांच के बाद रावलपिंडी की अदियाला जेल वापस भेज दिया गया। ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए। अमरीकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया। सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिन में 2 जहाजों का अपहरण कर लिया है। खबरों के मुताबिक लुतुफु में तुर्की के हथियार और उपकरण थे, जिन्हें मोगा दिशु में एक सेना परीक्षण केंद्र ले जाया जा रहा था। अमरीका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। ईरान ने कहा इसका उद्देश्य अमरीका की घरेलू आर्थिक समस्याओं से ध्यान हटाना है। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंची। तो ये है अब तक के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी
1: आकाशवाणी एफएम रेनबो सुन रहे हैं 102.6 की फ्रीक्वेंसी से। आप साथ ही हमें न्यूज ऑन एआईआर ऐप, लाइव स्ट्रीमिंग जैसे अन्य कई माध्यमों से भी सुन रहे हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे। आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की सूची पर ध्यान दें। 5:02 पर सैटेलाइट प्रस्तुत करेंगी शैली भाषांजलि और उसके बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम मैसेज मसाला मिक्स। समय रहेगा इस कार्यक्रम का 6:02 से 7 बजे तक का। सीमा सती इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी। वेस्टर्न म्यूजिक आर 7:02 पर आप सुनेंगे फ्राइडे फिएस्टा लिपिका दास के साथ और सीमा एक बार फिर 8:02 पर आपके लिए लेकर आएंगी म्यूजिक मस्ती यानी नॉन स्टॉप डांस हिट्स का। हिट्स को आप एंजॉय कर सकते हैं, सुन सकते हैं। 9:02 पर रात्रि सभा में आपकी याद आती रही कार्यक्रम लेकर विकास कौशिक प्रस्तुत होंगे और 10 बजे आप सुनेंगे 10:02 पर वेस्टर्न म्यूजिक आर वीकेंडर लिपिका दास के साथ। इसके बाद अगला प्रोग्राम होगा 11:02 पर जीरो आर तक रंगे महफिल। विकास कौशिक इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे। इस कार्यक्रम में आप गजलों का लुत्फ उठा सकते हैं और हमारे साथ बने रह सकते हैं। जुड़े रहिए दिल से दिल तक आकाशवाणी एफएम रेनबो, क्योंकि ये है इन्फोटेनमेंट का खजाना। इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट के लिए आप हमारे साथ यूं ही लगातार बने रहिए। आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 102.6 की फ्रीक्वेंसी। लम्हे कार्यक्रम के ठीक बाद समय होगा अल्फा जेन कार्यक्रम का। थैंक गॉड इट्स फ्राइडे कार्यक्रम लेकर सृजन राजपूत आपके साथ रहेंगी। तो लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

हेलो नमस्ते आदाब मेरे दोस्तों, मैं हूं आरजे चेतन और आप सुन रहे हैं लम्हे प्रोग्राम। सिगरेट के धुएं, सिगरेट स्मोक ने मानव जाति के लिए कभी भी अच्छा नहीं किया है। इसने लोगों की आशंका और जीवन शैली को सिर्फ अपमानित कर दिया है। लंबे समय से ये एक प्रवृत्ति यानी ट्रेंड के रूप में प्रयोग किया जाता था। तंबाकू, टोबैको से भरे पेपर के एक कटे हुए टुकड़ों को पकड़ना और समाप्त होने के बाद और धुएं को अनकंडीशन मैनर से उड़ा दिया जाता था। एक व्यक्ति को एहसास नहीं हुआ कि प्रभाव इफेक्ट के बाद यह कितना बुरा है। तंबाकू की पत्तियों में मौजूद रसायन जो मस्तिष्क को एक उत्साहित स्थिति में बदल सकती है। निकोटिन जब सिगरेट के माध्यम से श्वास लेता है, फेफड़े के माध्यम से रक्त प्रवाह में प्रवेश करता है और मस्तिष्क के दाहिनी ओर जाता है ताकि इन्हें 10 सेकंड के इनहेलेशन के भीतर दिखाई जाता है। लेकिन जल्द ही आपको

एहसास हो जाए कि वापस विड्रॉल के लक्षण उत्पन्न होने पर आप वास्तव में निकोटीन के आदि हो जाते हैं। और एक बार जब आपका शरीर धूम्रपान यानी स्मोकिंग के दूसरे शॉट के लिए लालच शुरू कर देता है तो आपके लिए रुकने में बहुत देर हो जाती है। असतन धुएं के खतरे के कारण हर साल लगभग 10 लाख लोग मर जाते हैं और भारत दुनिया के धूम्रपान करने वाले में से लगभग 12% है। सही समय पर उचित उपाय नहीं किए जाने पर यह संख्या प्रत्येक गुजरने वाले दिन के साथ बढ़ती जा रही है और इसके बारे में लोगों को चेतावनी निश्चित रूप में एक बड़ा कदम है। इसके कई कारण हैं दोस्तों। स्मोकिंग एडिक्शन के धूम्रपान व्यसना यानी स्मोकिंग एडिक्शन के लिए एकमात्र कारण तंबाकू के पत्तियों में निकोटीन पाया जाता है। जब यह सिगरेट स्मोक किया जाता है तो ये रसायन यानी ये केमिकल ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से एड्रेनल की रश का कारण बनता है। हमारे दिमाग में पाए जाने वाले हैप्पी हॉर्मोन्स जिसे डोपामिन कहा जाता है ये निकोटीन के साथ इंटरैक्ट करते हैं और इस समय एक और स्तर तक पहुंचाते हैं। बस कुछ क्षणों के मजे के लिए यह बेहतर है कि आप अपने पूरे जीवन को जोखिम न दें। धूम्रपान की लत यानी स्मोकिंग एडिक्शन के लक्षण क्या है ये मैं आपको बताऊंगा इस लम्हे प्रोग्राम में, तो सुनते रहिए।

दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। धूम्रपान की लत के लक्षण ढूंढना काफी आसान है। यदि आप चेन स्मोकर हैं, यदि आपने सामाजिक जीवन से खुद को दूर किया है, अगर सिगरेट छोड़ने के आपके सभी प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं, आदत से छुटकारा पाने में कभी देर नहीं होती, लेकिन सुनिश्चित करें कि आप इसका आदि न हो। एडिक्शन ने कभी भी अच्छा नहीं किया है, ना तो ये कभी भी होगा। इस लत से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा उपचार अपने सभी आदि मित्रों से दूर रहना है। दैट मीन्स यू हैव टू अवॉइड ऑल द पीपल हु आर अंडर द इन्फ्लुएंस और सिगरेट एडिक्ट्स। इसके अलावा उन्हें अपने बुरे प्रभाव से अवगत कराएं। तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से परामर्श करें। एक स्वस्थ जीवन शैली है, अच्छा खाओ और लंबे समय तक अच्छी आराम नींद ले। समय परमिट होने पर अपने प्रियजनों के बारे में सोचें। स्मोकिंग की लत के लिए कुछ अन्य उपचार विकल्पों में हिप्नोथेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्राम आदि है। निकोटिन की लत के लिए उपचार तरीकों के संयोजन में काम करता है। तो एक के लिए क्या काम कर सकता है जो दूसरे काम नहीं करेंगे। स्मोकिंग एडिक्शन से बचने के लिए प्रिवेंशन इलाज से बेहतर है, यह आज तक सच है। जब आप जानते हैं कि आप किसके साथ खत्म होने जा रहे हैं, तो इसका आदि क्यों हो। आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल रखना हमेशा बेहतर होता है। इस प्रकार के लत के बाद के प्रभाव आफ्टर इफेक्ट्स बहुत डेंजरस होते हैं। फेफड़ों के कैंसर, बैड ब्रेथ और अन्य पुरानी विकारें। स्मोकिंग करने की लत के बारे में लोगों को जागरूक करने की ओर रुख करें। लोगों को निकोटिन युक्त उत्पादों का उपयोग करने से रोकें। साथ ही पब्लिक प्लेसेस में निकोटिन के सख्त उपयोगी की दिशा में कुछ मानक नियम यानी नीतियां लागू की जा सकती है। स्कूल और कॉलेज के पास निकोटिन के संबंध में विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने से धूम्रपान की लत फैलने से रोकने के लिए एक बड़ा कदम हो सकता है। धूम्रपान की लत यानी स्मोकिंग एडिक्शन के निकासे विथड्रॉल के बहुत सारे लक्षण होते हैं। यह जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि क्या आप निकोटिन के आदि हैं, इसका उपयोग करना बंद करना है। स्मोकिंग से संबंधित विभिन्न मनोवैज्ञानिक और शारीरिक निकासी यानी फिजिकल विथड्रॉल सिम्टम्स के लक्षण हैं। इसमें चिंता, रेस्टलेसनेस, इंसोमनिया, हेडेक्स, टेंशन के कुछ मामूली मामले हैं। यदि आप स्मोकिंग करने वाले हैं और एक ही चरण में जा रहे हैं, तो जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर को दिखाएं। इसके अलावा प्रोफ्यूस स्वेटिंग, पैनिक अटैक्स, दिल की धड़कन में वृद्धि, ट्रेमर्स, सांस लेने में

कठिनाइयाँ और उल्टी छोड़ने के बाद के प्रभाव से संबंधित हो सकती है। लेकिन ये ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए ये बहुत देर हो चुकी नहीं है। अपने प्रियजनों के साथ एक खुश भविष्य के लिए आज एक कदम उठाए, सिगरेट स्मोकिंग बंद कर दे। With this wonderful message, this is Chetan signing off. Till we meet again in our next program, bye. दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039. I repeat 09515227039. हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com. I repeat feedbackamc1@gmail.com. This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.

आकाशवाणी एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप 102.6 की मैजिकल फ्रिक्वेंसी से, और मैं हूँ आपके साथ दिल्ली के चाशनी गुड़ी सृजन, लेकर आई हूँ प्रोग्राम अल्फा जैन। थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। जी हाँ, शुक्रवार आ चुका है और कल होगा वीकेंड, सैटरडे संडे हम सब एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन इस एंजॉय का एक अहम हिस्सा होता है म्यूजिक और डांस। जी हाँ, इसी पर आज मैं बात करने जा रही हूँ कि क्या फ़ायदा है म्यूजिक सुनने का, डांस सुनने का। आप सभी को पता होगा, लेकिन चलिए ना एक बार फिर म्यूजिक और डांस के और करीब आने के लिए हम याद कर लेते हैं कि क्या क्या फायदे हैं जब आप संगीत के, म्यूजिक के पास होते हैं। देखिए, हम अपने इंसानों की बात करें तो हमारा जिंदगी का संगीत से जो रिश्ता है ना, ये बहुत अटूट और ये बहुत पुराना भी है। जब भी आप अपनी लाइफ में स्ट्रेस से दूर होना चाहते हैं, हैप्पी होना चाहते हैं, तो आप संगीत के पास हो जाते हैं। ये रिश्ता कायम कर लीजिए। अगर आप म्यूजिक नहीं भी सुनते हैं तो सुनना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हम हमेशा खुश रहने के लिए ये बहुत अच्छा है कि आप म्यूजिक सुने, जब चाहें जैसा चाहें सुने, और फिर अपना मूड बदल लीजिए। और डांस करने की बात करें तो डांस के भी अपने कई कई फायदे हैं। फिट रहना चाहते हैं आप, अच्छी एक्सरसाइज के साथ साथ डांस कीजिए। वेट कम करना चाहते हैं, जिम योग के साथ साथ डांस कीजिए। देखिए, ये आपको स्ट्रेस रिलीफ करने के साथ साथ आपको फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से स्ट्रांग करता है। तो बिल्कुल ये सफर शुरू करते हैं म्यूजिक और डांस के साथ।

लग जा गले से मेरे ठाक करके। अच्छा बताइए कौन कौन था जो ठाक करके नाचने नहीं लग गया था। सुन रही हैं आप रेनबो 102.6 और मैं हूँ आपके साथ दिल्ली की चाशनी कड़ी सृजन। देखिए नाचो नाचो यानी नाटू नाटू नाटू। ऑस्कर जीता ना हम इंडियंस के लिए अपने आप में ये कितना खुशी का पल था। तो नाच कर सेलिब्रेट करना, नाचना गाना तन और मन दोनों के लिए फायदेमंद है। सुन रही हैं आप प्रोग्राम थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। अपने वीकेंड के लिए ना नाचने गाने वाला आर्ट जो है ना अलग से सिलेक्ट कर लीजिए और डांस और म्यूजिक को टाइम दीजिए। डांस हमारे कल्चर का हमेशा से हिस्सा रहा है। कोई भी आप रंगारंग कार्यक्रम देख लीजिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम देख लीजिए, डांस कर नाच कर हम उत्सव को मनाते हैं, अपनी खुशी जाहिर करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। फिट रहने के लिए और एक्सरसाइज के तौर पर भी डांस करके आप ये जो आलस है ना जो आपको रोकता है कि बिस्तर में पड़े रहें उससे दूर कर देता है, आप फिट रहने के लिए डांस कर सकते हैं। यकीनन ये मज़ेदार होता है ना चुना चुना चु। ऐसे कई गाने हैं जो आपको थिरकने पर मजबूर कर देते हैं। भरतनाट्यम, कथक से लेकर टैंगो, सालसा तक कई तरह के नृत्य हैं जिन्हें लोग कला समझकर या कसरत के रूप में अपने रूटीन में शामिल करते हैं। डांस के कई फॉर्म्स हैं जो कि हमारी हेल्थ, हमारे जो बॉडी की फिटनेस है उसको बैलेंस करते हैं, फैट को हमसे दूर करते हैं। तो वर्कआउट के तौर पर हम जो डांस फॉर्म्स करते हैं उनमें जुम्बा जैसे कि एक फिटनेस प्रोग्राम है, आप अपनी बॉडी मूवमेंट्स के साथ साथ कुछ ऐसे एक्सरसाइज करते हैं जो कि आपको फिट कराते हैं। और जब आप जुम्बा करना स्टार्ट कर देते हैं ना तो आपकी उम्र, आपकी एज क्या हो गई ना ये कोई गेस नहीं कर सकता। अब बेली डांसिंग ही ले लीजिए, अपने आप में कितना इंटरेस्टिंग लगता है और इसमें आपके शोल्डर्स, आपके सभी पार्ट्स लगभग जो है लोअर बॉडी के वो मूवमेंट कर रहे होते हैं। कितना अच्छा संतुलन दिखता है ना आपकी स्पीड का, आपके बॉडी का। तो बेली डांसिंग के अपने फायदे हैं और देखा जाए तो कई प्रूफ्स ये भी कहते हैं, कई बातें ये भी साबित करती हैं कि जब आप बेली डांस करते हैं ना तो आप अर्थराइटिस जैसी कई प्रॉब्लम से दूर हो जाते हैं। हिप हॉप, जी हाँ, वो डांस जो कि आप कहीं भी स्टार्ट हो जाते हैं ना जब ढोल बजता है स्ट्रीट बेस रोड या गली मोहल्ले में, तेज़ी से मूवमेंट करना और अपने बॉडी के हर अंग को हिलाकर नाचना, यानी आपके स्टेप्स की किसी को कोई परवाह नहीं है, बस आप नाच रहे हैं। ये डांस फॉर्म भी आपको ऑस्टियोपोरोसिस और अर्थराइटिस जैसी कई प्रॉब्लम से दूर कर देती है। भरतनाट्यम की बात करें तो ये हमारा शास्त्रीय भारतीय नृत्य है जो कि अपने आप में हमारे शरीर की भंगिमाओं को, हमारे फेस एक्सप्रेशंस के साथ साथ हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स को मूवमेंट देता है। और यहाँ पर जो सबसे खास एक्सरसाइज होती है वो होती है आइज की, यानी आँखों की मूवमेंट के साथ, एक्सप्रेशंस के साथ भरतनाट्यम को देखना करना अपने आप में कला को नमन है। कथक ओडिसी भी इसी रेस में है कि आप नाचें गाएं घुंघरुओं पर उन नृत्यों को अपनी बॉडी के साथ मिलाकर कुछ ऐसा प्रेजेंट करें जो आपको भी खुशी देता है और आपको देखने वालों को भी, सुनने वालों को भी। सुनते रहिए रेनबो दिल से दिल तक।

0: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
1: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सरायकाली खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में,
0: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में, आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में,
1: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
0: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।
2: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।
8: म्यूजिक मस्ती, नॉन स्टॉप डांस नंबर्स, और हम और आप हो जाते हैं कनेक्ट दिल से दिल तक। रेनबो सुन रहे हैं आप, प्रोग्राम है थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। मैं हूं आपके साथ दिल्ली की चाशनी गुड़ी सृजन। म्यूजिक और डांस के क्या क्या फायदे हैं, इस पर बात कर रहे हैं। देखिए, हमने डांस पर तो बहुत सारी फॉर्म्स पर बात कर ली। अगर म्यूजिक की बात करें तो जो फेमस साइंटिस्ट हैं चार्ल्स डार्विन, उन्होंने कहा अगर मेरे पास मेरे जीवन में और समय होता तो मैं कुछ कविताएं पढ़ता और हफ्ते में कम से कम एक कितने ही बार भी एक बार म्यूजिक सुनने के लिए अपना नियम बना लेता। और कई तो शोध भी ये कहते हैं कि जब आप संगीत सुनते हैं तो अपने शरीर के साथ साथ आप अपने मेंटल हेल्थ को, यानी अपने मानसिक स्वास्थ्य को भी बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। आप म्यूजिक सुनकर खुशमिजाज हो जाते हैं, सोचने समझने की शक्ति और बढ़ जाती है, धीरे धीरे आप अपनी बीमारियों से दूर हटकर संगीत की जो राह है उस पर चल देते हैं। तो नियम बनाइए कि थोड़ा सा समय आप अकेले में सबके साथ, जैसे आप कंफर्टेबल हो, म्यूजिक को देंगे और स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। तो लीजिए इसी बात पर ये एक बहुत प्यारा सा ट्रैक जिसे आप एंजॉय कर सकते हैं, यानी एक वंडरफुल म्यूजिकल ट्रैक।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: मम्मी बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
3: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
2: अरे मम्मी 1 घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
3: हैं इतनी जल्दी?
2: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर 7 के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ कर बस मिनटों में मेरठ।
4: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
5: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद।

0: हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: जी हाँ बिल्कुल, बिंदास बोलकर बताइएगा कि आपको हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं, हम कैसे लगते हैं। आप हमारी तारीफें भी कर सकते हैं और कोई शिकायत हो तो दोस्त वो भी सर आंखों पर जरूर बताइए। सुन रहे हैं आप रेनबो 102.6 और साथ ही न्यूज ऑन एआर ऐप और लाइव स्ट्रीमिंग जैसे अन्य कई माध्यमों से हमारे श्रोता जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम है अल्फा जैन, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। मैं हूँ दिल्ली की चाशनी गुरु सृजन, आपके साथ बात कर रहे हैं कि डांस और म्यूजिक के फायदे होते क्या है, क्यों आप डांस और म्यूजिक सुने। तो देखिए, म्यूजिक सुनने के अपने ही कई फायदे हैं जिनमें कि आप यकीन मानिए जब आप म्यूजिक सुनते हैं ना तो आप अपने इम्यून सिस्टम में भी इजाफा कर रहे हैं। कोविड के बाद से अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, तो इसमें आप ऐड कर लीजिए कि आपको रेगुलर म्यूजिक भी सुनना है, क्योंकि म्यूजिक सुनने से जो सुकून, जो दिमागी सुकून आपको मिलता है वो आपके ब्रेन फंक्शंस को और बेटर करता है, आपकी क्रिएटिव पावर को और बढ़ाता है, इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग करता है। म्यूजिक रोजाना सुबह शाम सुनने से आप हाई ब्लड प्रेशर, जिन भी लोगों को उच्च रक्तचाप की समस्या रहती है उसमें काफी हद तक सुधार की माना जाता है कि सुधार होता है। धीमी गति में म्यूजिक सुनने से आप स्ट्रोक जैसी कई समस्याओं से बच सकते हैं। म्यूजिक जो है वो कहीं ना कहीं आपके जो बॉडी है, आपका जो दिमाग है उसको सुकून देता है और जो स्ट्रोक है उन्हें भी आपसे दूर करता है। आप अपनी बॉडी में कई चेंजेस देखते हैं जब आप संगीत से जुड़ते हैं, वो सिर्फ शारीरिक ही नहीं मानसिक भी होते हैं। मसलन जब आपको लगता है कि आप बहुत चिड़चिड़े रह रहे हैं, कि आपको हर बात पे गुस्सा आ रहा है, तो म्यूजिक को टाइम दीजिए, जो डोज है ना म्यूजिक का उसको अपने में इंजेक्ट कीजिए और आप बेटर फील करते हैं। अच्छा, कई लोग ऐसी भी शिकायत करते हैं कि उन्हें अक्सर पीठ में दर्द रहता है और उन्हें जो है ऐसा लगता है कि उनकी दिल की धड़कन बहुत तेज तेज अब बीट कर रही है। जब आपको लगता है ना तो आप म्यूजिक थेरेपी, जी हाँ आपने सुना होगा, संगीत थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी के जरिए भी आप बैक पेन से रिलीव कर सकते हैं, आपको बहुत मदद मिलेगी। और एक जो सबसे बढ़िया बात मुझे लगती है ना म्यूजिक सुनने की, वो है कि ये आपकी याददाश्त को बहुत बेहतर बनाता है। अगर हम अपने टाइम की बात करें यानी 90s की बात करें, तो हम अक्सर रेडियो सुनते सुनते अपने क्वेश्चंस को लर्न किया करते थे और यकीन मानिए कुछ भी ऐसा नहीं होता कि हमारा माइंड डाइवर्ट हुआ हो। जो ये शांत म्यूजिक है, स्लो म्यूजिक जो है ना, आपकी बेटर याददाश्त यानी आप कितना अच्छा याद कर सकते हैं उसको और स्ट्रांग बनाता है, आपके ध्यान में एकाग्रता भी लाता है और नींद। अच्छा, हम हमेशा ही मोबाइल चला रहे होते हैं और कहते हैं जब तक नींद नहीं आ जाएगी ना तब तक मोबाइल नहीं छोड़ेंगे, तो मोबाइल को साइड कर दीजिए, वहीं पर स्लो म्यूजिक चला लीजिए। आप ये जो कहते हैं ना कि नींद नहीं आ रही है, ये तो कहना लगभग बंद ही हो जाएगा। म्यूजिक सुनना आपको अनिद्रा की समस्या से बचाता है। सोते समय आप जब रिलैक्सिंग म्यूजिक सुनते हैं ना तो आपको बहुत अच्छे सपने आते हैं, ट्राई करके देखिए। जब अब ये तो है कुछ तरकीबें जिन्हें अपना कर यानी आप डांस और म्यूजिक को अपना कर और बेहतरीन कर सकते हैं अपनी लाइफ में, तो क्यों ना करें तरकीबें।

देखिए, तरकीबें सही जगह इस्तेमाल हो ये भी बहुत जरूरी है। 102.6 रेनबो सुन रहे हैं आप। थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। बात कर रहे हैं संगीत और डांस के फायदों को लेकर। तो देखिए, तरकीब जैसे मैंने कहा ना, सही जगह यूज करनी है। मैं नींद की बात कर रही थी। तो जब आप सुखद नींद का के लिए लेटे हैं ना, तो आपको आरामदायक सुखदायक म्यूजिक ही सुनना है। अगर यहाँ पर आपने अप्लाई कर लिया ना कि रॉकिंग म्यूजिक हो जाए, तो आपके जो रिजल्ट है ना, वो अपोजिट हो सकते हैं। यानी आपको नींद नहीं आएगी। तो रात्रि में सोते समय आप सुखदायक संगीत सुने। ऐसे में शास्त्रीय संगीत को सुनना एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। ये आपकी मसल्स को रिलैक्स करता है और आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको आउट करता है, जो आपको सोने से रोक रहे हैं। तो चुनिए शास्त्रीय संगीत को जब आप नींद के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, संगीत सुनने से यानी म्यूजिक सुनते रहने से आप खाने को लेकर अगर सोचते हैं ना कि म्यूजिक और खाने का क्या कॉम्बिनेशन है, तो देखिए, जब आप सॉफ्ट म्यूजिक के साथ डिनर करते हैं ना, तो आपका पेट जल्दी भर जाता है और काफी सेटिस्फेक्शन आपको फील होती है कि आह, अब अच्छा खाया है, म्यूजिक था। तो जो आपका कैलोरी कंजप्शन है ना, वो भी लिमिटेड हो जाता है संयम से। यानी लिमिटेड तो नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे संयमी हो जाता है, ये ठीक रहेगा। वो काफ़ी रिलैक्सिंग फील करता है। और जब आप ऐसे में हड़बड़ाहट में, कई बार ऐसा होता है जब आप स्ट्रेस में होते हैं, ज़्यादा खा रहे हैं, बहुत सारा आपने ऑयली खा लिया, आपने कार्बोहाइड्रेट खा लिया, तो उससे बचने के लिए भी आप अपने खाने के साथ साथ म्यूजिक प्ले कर दीजिए। और कई अध्ययन तो ये भी मानते हैं कि संगीत लगातार सुनते रहने से यदि आपके शरीर में कहीं सूजन है तो वो भी दूर होती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होता है, और सर दर्द की समस्या या फिर हेयर फॉल की अगर आप हमेशा कंप्लेन करते हैं, तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं म्यूजिक सुनते रहने से। और एक और फायदा, एंजाइटी आउट। 2 घंटे की म्यूजिक थेरेपी से आप एंजाइटी आउट भी हो जाते हैं। और हमने कहा ना कि याददाश्त बढ़ाने के लिए संगीत सुनना अच्छा होता है, तो वहीं कई एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि डांस

करने से आपकी याददाश्त को बढ़ावा मिलता है और साथ ही डिमेंशिया की अगर शुरुआत हो रही है तो वो वहीं स्टॉप हो जाती है। एरोबिक डांस ऐसे में करना आपकी मेमोरी पावर को, हिपोकैम्पस को नियंत्रित करता है, जो चीज़ें हैं आपको नेगेटिव की तरफ लेकर जा रही हैं, तो डांस वहाँ पर हेल्प करता है। तो लीजिए इसी बात पे एक और शानदार सा गाना।

दोस्त बेजान जिंदगी में कोई ना कोई मीत होना चाहिए, और मन का मीत ना हो तो साथ संगीत जरूर होना चाहिए।

0: मीरा का संगीत और कृष्ण का रास हर जगह तो संगीत है, नृत्य है। चाहे दुनिया में कितनी अलग अलग भाषाएं हो जाएं, लेकिन संगीत से अच्छी कोई भाषा नहीं हो सकती जिसे सब समझते हैं। रेनबो सुन रहे हैं आप 102.6 मेगाहर्ट्ज़ से। मैं हूं आपके साथ दिल्ली की चाशनी कुरे सृजन। बात कर रहे हैं कि कैसे डांस और म्यूजिक आपको रिलैक्स कर सकता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद इस बात को, इन टॉक्स को कंटिन्यू करते हैं। आप सुनते रहिए रेनबो 102.6 दिल से दिल तक।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: आया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं

0: तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती, समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: जिंदगी का हर पल उत्सव हो जाए, ऐसे कृत्य हो जाएं, कदम ऐसे पड़े धरती पर कि जीवन नृत्य हो जाए। नृत्य साधना हो या फिर हो संगीत साधना, ये हमें ईश्वर के और नज़दीक ले जाती है। ईश्वर की साधना बसती है नाच कर और संगीत के जरिए धुन पर बता कर गा कर। ऐसे में यदि आप डांस करते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, तो आप अपनी हर्ट हेल्थ को और बेहतर बनाते हैं। आपका हृदय सही गति से काम करता है, आपका दिल मजबूत हो जाता है। और दोस्त, अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी स्ट्रॉन्ग है, यानी अगर आप टैंगो डांस करते हैं ना, तो आपने देखा होगा अक्सर बड़ी उम्र के लोग कई बार डगमगा जाते हैं। टैंगो करने से आपके जो मसल्स हैं, आपकी पैरों की मसल स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं और हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं जब आप म्यूजिक यानी डांस करते हैं या फिर म्यूजिक सुनते हैं। नाचने गाने से ये जो हैप्पी हार्मोन्स हैं ना, ये आपके चेहरे की खुशी को और बढ़ा देते हैं। और अब शास्त्रीय नृत्यों की बात करें तो वहाँ जैसे भरतनाट्यम की हमने बात की कि वहाँ पर आपकी आंखों का जो बैलेंस है, जो आंखों के एक्सप्रेशंस हैं, वो आंखों को की मूवमेंट को लेकर खास रोल प्ले करते हैं। वहीं कथक की बात करें तो पैरों में घुंघरू बांध कर की जाने वाली डांस फॉर्म आपकी कैलोरीज को बैलेंस करती हैं, साथ ही आपके जो हाथ की मसल्स हैं उनको भी बेटर मूवमेंट देती हैं। ओडिसी नृत्य की बात करें तो ये शास्त्रीय नृत्य भी आपको बहुत फायदा देता है, आपकी फेशियल मसल्स को स्ट्रेंथन करता है। चलिए, इसी बात पर, शनिवार आने वाला है तो ये गाना सुन लेते हैं।

0: यार शनिवार हो, रविवार हो, कोई भी दिन हो, म्यूजिक और डांस के साथ आप यूं ही बने रहने चाहिए। कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, सतरिया हो या फिर भांगड़ा, गिद्दा, गरबा, डांडिया।
1: तू भी गिद्दा पाले, चल रंग जमा दे, हमके बने सभी मत वाले।
0: लवनी, घूमर या फिर हो कोई भी ऐसा डांस जो आपको कर दे रिलैक्स। क्लासिकल हो, म्यूजिक या फिर हो बॉलीवुड की अपबीट्स, जो आपको करे रिलैक्स, जो आपको करे अपने करीब। सुनते रहिए FM रेनबो, मैं हूँ दिल्ली की चाशनी कुरेश सृजन।

अगली गुड़िया गुड़िया गल्ला लेकर शैली भाषांजलि आएंगी 5:02 पर। तब तक अपनी दोस्त रजन को दीजिए इजाजत। नाचते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए रेनबो के साथ। नमस्कार।

5 बज चुके हैं और लीजिए सुनिए एफएम रेनबो पर मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत में उनसे लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक स्तर पर इस्तेमाल करने को कहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल के मुख्यालय में 189 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि ये विरोध न तो छात्रों के हित में है और न ही न्याय के लिए है। भारत और ब्राजील ने पुणे में ब्रिक्स ICT बैठक से इतर डिजिटल नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने आज देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। मणिपुर में इम्फाल दीमापुर गुवाहाटी मार्ग पर लगभग 3 साल के अंतराल के बाद सार्वजनिक परिवहन सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। महान अभिनेत्री सौकार जानकी का चेन्नई में निधन हो गया। पद्मश्री से सम्मानित जानकी ने दक्षिण भारतीय सिनेमा जगत में लगभग 400 फिल्मों में अभिनय किया। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। और नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद महिला डबल सेमीफाइनल में पहुंची। हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में

0: वाणी आकाशवाणी।
1: गुड इवनिंग एंड वेलकम टू सिटी लाइट्स। सांझ के शो में आपके साथ हूँ मैं शैली भाषांजलि, जहाँ बातें होंगी आपकी और शहर की।

बजकर 7 मिनट हो चुके हैं हमारे स्टूडियो की घड़ी में। थम गई है दिन की हलचल, लेकिन कुछ रह गया आज, कल पूरा हो जाएगा, ऐसी उम्मीद बना के रखिए ना। और आज भी कल भी ट्रैफिक रूल्स एब्सोल्युटली एंड टोटली फॉलो करते रहिए। सांझ का शो है सैटेलाइट्स। मेरा नाम शैली भाषांजलि है।

0: स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस शो में जिसका नाम है सिटी लाइट्स। सिटी लाइट्स में हम शहर की बातें करते हैं, आपसे जुड़ी बातें करते हैं। और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है, आज वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे है, उनके प्रति सम्मान जताने का दिन। और जो बुजुर्ग हैं केवल उम्र से बड़े नहीं बल्कि अनुभव के तो धनी होते हैं, समय के साक्षी, संघर्ष देखा, परिवर्तन देखा और कई कई उपलब्धियों की कहानी है वो। लेकिन शायद उनके भीतर एक अध्याय अभी बाकी है, इसलिए उम्र को मत गिनिए, उमंग को गुनिए और लव्स एंड लव एंड विशेस टू ऑल द सीनियर सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री एंड द वर्ल्ड। क्या करें, बस पास बैठ जाए, हाथ थाम ले, उनकी सुन ले, उनकी ढलती सांझ में ही जीवन का जो असली धन है उसे चुग ले, अनुभव की रोशनी और गहरा जाएगी। आप सुनिए सांझ का शो सिटी लाइट्स।

कहते हैं सपने वो नहीं होते जो हम सो करके देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने सपनों को सिर्फ सपना नहीं रहने देता बल्कि हकीकत में बदलने उसे निकल पड़ता है, वहीं शुरू होती है उद्यमिता। आज विश्व उद्यमी दिवस है, वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर्स डे। उन लोगों को एक्चुअली सलाम करने का दिन जो कुछ नया सोचते हैं, रिस्क लेते हैं, एक्चुअली कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, असफलताओं से सीखते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट दूसरों के लिए भी नए नए अवसर पैदा करते हैं। रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते, बस चलने का साहस खत्म हो जाता है। मैं कोशिश करूंगा, मैं सीखूंगा, मैं गिरूंगा तो फिर उठूंगा, लेकिन अपने सपने को मरने नहीं दूंगा। ये उद्यमिता की असली भावना है।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

और आज 21 अगस्त एक और विशेष भावना से जुड़ा हुआ दिन है। आतंकवाद के पीड़ितों के स्मरण और श्रद्धांजलि का ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। आज का दिन ना हमें एक बहुत ही गहरी मानवीय जिम्मेदारी की याद दिलाता है, ये आतंकवाद के जो पीड़ित हैं और जो बचे हुए लोग हैं उनको याद करने की। ये स्मरण केवल शोक नहीं, शांति, करुणा और मानवता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। आतंकी आवाज चाहे कितनी भी तेज हो, इंसानियत की आवाज उससे कहीं कहीं अधिक बुलंद है और होनी चाहिए। यही तो है एक बेहतर समाज की पहचान।

अब होगा शिक्षा मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली।

Yes, indeed and absolutely. Tuned into Akashwani Rainbow. जुड़े रहिए हमारे साथ. सांझ का शो है City Lights and drive absolutely carefully. समय बता देती हूँ 5:24 हमारे स्टूडियो की घड़ी में.

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

गुड इवनिंग, आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स। मेरा नाम है शैली भाषांजलि और ये सोचती हूँ, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि दो दशक के बाद दिल्ली की तस्वीर कैसी होगी, कभी जहन में ख्याल आया? और इसी भविष्य की जो तस्वीर है ना, वो दिल्ली मास्टर प्लान 2047 ये रखता है सामने। कम जैम हो, व्यवस्थित पार्किंग हो, साफ सुथरी हवा हो, यमुना का किनारा हो, हरियाली से भरा हो और इतिहास को सहेजती हुई एक आधुनिक राजधानी हो। अब इस योजना में ना दिल्ली के विकास को एक नई दिशा देने की तैयारी है, लेकिन चुनौतियों में से एक बहुत बड़ी चुनौती यह है ट्रैफिक एंड पार्किंग, जिसको धीरे धीरे शायद संभाला जाएगा। लेकिन एक बात जो आपसे बताना चाह रही हूँ कि जो बाद में नए वाहनों की रजिस्ट्रेशन होंगे, उसमें ड्यू टू अ लॉट ऑफ इलीगल पार्किंग, पार्किंग की अवेलेबिलिटी को जोड़ा जाएगा नए वाहनों से, दैट डू यू हैव इनफ पार्किंग स्पेस और नॉट। यानी भविष्य की दिल्ली में गाड़ी खरीदने से पहले पार्किंग की जगह का सवाल भी महत्वपूर्ण होगा, पूछा जाएगा। 2047 की दिल्ली कैसी होगी, इसका फैसला सिर्फ योजनाएं नहीं, हमारी आदतें करती हैं आज वाली। साफ स्वच्छ दिल्ली चाहिए तो शहर के साथ हमारा रिश्ता भी बदलना होगा, यानी और भी जिम्मेदारी भरा हुआ। ऐसी कुछ बातें जरूरी होती है करनी सिटी लाइट्स में।

आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स, और सिटी लाइट्स में ये कहने का बहुत इच्छा होती है कहने की, देश हमारा बहुत बड़ा है, बहुत विविध है, संस्कृति इतनी अलग है, इतने सारे लोग हैं। अगर अपने हुनर का, अपने समय का कुछ हिस्सा देश के नाम कर दें तो क्या बात है। देशभक्ति का एक रूप है ये, और यही स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली के डॉक्टर्स ने इसी भावना के साथ शुरू की एक खास पहल, 2 घंटे देश के नाम। यानी अलग अलग विशेषज्ञता वाले डॉक्टर सप्ताह में 2 घंटे बिना कंसल्टेशन फीस के जो जरूरतमंद लोग हैं ना, उनको चिकित्सा वाली सलाह देंगे। किसी भी गरीब परिवार के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर से सलाह लेना कितना मुश्किल होता है, ये हम जानते हैं। या तो आंखों की बात हो, हृदय की बात हो, हड्डियों की बात हो, मानसिक स्वास्थ्य की बात हो, कई क्षेत्रों के विशेषज्ञ इस सेवा से जुड़ रहे हैं। और ये सुविधा जो है सिर्फ अस्पताल तक सीमित नहीं है, जरूरतमंद लोग वीडियो कंसल्टेशन के माध्यम से भी सलाह ले सकते हैं। एक पहल शुरू की गई है खास उद्देश्य की, जो झुग्गी बस्तियां हैं, ग्रामीण इलाके हैं, Tier 3 जो सिटीज हैं, कम आय वाले लोग हैं, उन तक ये सलाह पहुंचना, मेडिकल कंसल्टेशन पहुंचना। जिंदगी बेहतर लगती है, आसान लगती है इन प्रयासों को जब हम सुनते हैं। आप जुड़े रहिए सैटेलाइट से। मेरा नाम है शैली भाषांजलि, और आपकी मुलाकात करवाते हैं किसी से।

0: गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू सिटी लाइट्स। आज के शो में आपके साथ हूं मैं शैली भाषांजलि। और बहुत सारे शहर हमारे साथ जुड़े होते हैं, लेकिन दिल्ली शहर के एक खास व्यक्ति इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ही इज़ अ राइटर, डायरेक्टर, इनका नाम है मयंक बल्होत्रा। इन्होंने कई जानी मानी फिल्म्स, इनसे जुड़ा है इनका नाम, एंड रिकॉग्निशंस मिले, अवार्ड्स मिले, और स्वतंत्रता दिवस पर उनकी शॉर्ट फिल्म रिलीज हुई है। चलिए इनसे बात करते हैं सिटी लाइट्स में। मयंक बल्होत्रा, आपका बहुत स्वागत FM रेनबो पर।
1: नमस्कार शैली जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।
0: ओके, ऑलराइट। सिनेमा की दुनिया से आप जुड़े हैं, जिससे दर्शक जुड़ते हैं, आप उनको बांधते हैं अपनी कहानियों से, इतिहास की जड़ों तक जोड़ती है आपकी कहानियां। अपने बारे में कुछ बताइए ना, पहली बार लिसनर से रूबरू हो रहे हैं, तो अपने बारे में यू वांट टू से समथिंग अबाउट योरसेल्फ एंड द पॉपुलर फिल्म्स दैट यू आर एसोसिएटेड विद।
1: जी शैली जी, सो बेसिकली मैं एक डायरेक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर हूँ
0: जी।
1: मैंने पूरे इंडिया में रह चुका हूँ, बिकॉज मेरे फादर नेवी में रहते थे एंड उनके फादर भी आर्मी में थे, मेरे ग्रैंडफादर दोनों आर्मी में थे। तो मैंने काफी शहर देश कवर किया है इंडिया में, तो उससे मेरा काफी एक्सपीरियंस रहा एंड बचपन से ही मेरे को फिल्म का बहुत शौक था।
0: अच्छा,
1: तो उससे मेरा लगाव लगा रहा, थिएटर में करता रहा। थिएटर का नेक्स्ट स्टेप फिर मैंने लिया कि मैं फिल्मों से जुड़ गया।
0: तो आपकी कहानियां कहाँ से निकलती हैं? गली कूचों से, शहरों से, पूरे देश से, लोगों के बीच से, कहाँ से कहानियां निकलती हैं?
1: जी सही बताओ तो इस देश से ही निकलती है। इस देश में इतनी कहानियां हैं कि वो भी

0: सौ साल भी कम पड़ जाते हैं देश की कहानियां बताने में. मेरा मेन मोटिव इस देश और इस देश से लगी हुई ह्यूमैनिटी की तरफ रहता है.
1: ओके तो अभी रिसेंटली एक शॉर्ट फिल्म आपकी रिलीज हुई है, पेट्रियोटिक फिल्म, उसके बारे में बताइए.
0: जी, तो शॉर्ट फिल्म का नाम है लाइन ऑफ ड्यूटी. ये एक फिल्म है जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे सेट है और ये एक ह्यूमैनिटी की कहानी है. एक ट्रू स्टोरी है जो 1980s में एक नेचुरल कलामिटी हुई थी बॉर्डर पे, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे. एंड ये फिल्म उस बारे में बात करती है कि जब रेगुलेशंस हमारे साइड में रखें हम और ह्यूमैनिटी को आगे लाएं तो उसका क्या नतीजा होता है.
1: Okay.
0: और हमारी कंडीशनिंग जो फौज में रहती है उसका क्या प्रभाव पड़ता है लोगों पे और हमारी सोच पे, जो हमको कभी कभी साइड में रख के ह्यूमैनिटी के बारे में सोचना पड़ता है. तो ये फिल्म उसके बारे में है. ये चाहे ये आर्मी के बारे में फिल्म हो बट ये पहले इंसानों के बारे में है.
1: क्या बात है, बहुत खूब. तो अभी आप आकाशवाणी के एफएम रेनबो से जुड़े हैं, मयंक मल्होत्रा इनका नाम है, मैं अपने लिसनर्स को बता रही हूं. और चूंकि पूरा देश हमारे इस चैनल से जुड़ता है और आप देश के लिए, देश से निकलती हुई उभरती हुई कहानियां लिखते हैं, क्या कहना चाहेंगे तमाम देशवासियों को? कुछ दिल में ऐसी बात आ रही है, कुछ बात कहना चाहेंगे या अपनी फिल्मों की तरफ अट्रैक्ट करना चाहेंगे, क्या कहेंगे?
0: जी, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हम सब एक दूसरे से जुड़े रहें. हम जिस टाइम पर रह रहे हैं, जो दुनिया के हालात हैं, जो इस देश के हालात हैं, सभी लोग काफी डिवाइडेड हो चुके हैं और हम बॉर्डर से, रूल से, रेगुलेशन से, दूसरों के नियमों से हम बहुत प्रभावित होते हैं, पर हम अपनी सोच ज्यादातर रख नहीं पाते. तो मैं ये चाहूंगा कि हम अपनी सोच आगे रखें और इस देश को अलग अलग तरीके से आगे बढ़ाएं.
1: दैट्स ब्रिलियंट मयंक मल्होत्रा, बहुत साफ सुथरी सोच है आपकी और देश से के प्रति जो प्रतिबद्धता है वो झलकती है आपकी बातों में, आवाज में. मयंक, थैंक यू वेरी मच ब्रीफली हमसे जुड़ने के लिए. थैंक यू सो मच.
0: थैंक यू शैली, थैंक यू सो मच.

गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू सिटी लाइट्स, आकाशवाणी रेनबो पर ये शो जिसमें शहर की बातें होती हैं और बहुत तरह के सब्जेक्ट्स पे बातें होती हैं। आयुर्वेद के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ, जो हमारी बहुत पुरानी परंपरा है, जिसकी जड़ें ना हजारों साल पुरानी हैं, लेकिन इसकी पढ़ाई में जुड़ रही है नई टेक्निक, उसकी जो ताकत है। देश भर के जो आयुर्वेद कॉलेज हैं उसमें पढ़ाई को और भी प्रैक्टिकल करने के लिए, मॉडर्न करने के लिए एक नया कदम लिया गया है। भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग ने जितने आयुर्वेद कॉलेजेस हैं उनसे आयुर्सिम नाम के एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने को कहा है। एक वर्चुअल शिक्षण मंच है और जहां पर विद्यार्थी कंप्यूटर पर मरीज की स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा ये हो सकता है कि किताब ही नहीं बल्कि अभ्यास और अनुभव, उससे सीखने का अवसर मिलेगा। आयुर्वेद की प्राचीन समझ और डिजिटल तकनीक की जो आधुनिक क्षमता है उसका मेल बड़ा बढ़िया है। परंपरा हमें जड़ देती है, तकनीक शायद हमें नए पंख दे देती है। आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स, मेरा नाम है शैली भाषांजलि।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अब होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।

गुड इवनिंग, आप सुन रहे थे सिटी लाइट्स। जी हाँ, सिटी लाइट्स में शहर की बातें, आपकी बातें, बहुत सारी विषयों पर हमने बातें की आज। लेकिन कहते हैं ना कि शहर वो नहीं होता जो नक्शे पे दिखाई देता है, शहर तो उन चेहरों से बनता है जो हर सुबह साथ चलते हैं अपनी अपनी कहानी लेकर के। हर दिन आसान हो जरूरी नहीं, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा खोजा जा सकता है ना। इसी सोच के साथ, इसी बात के साथ, इसी विशेष के साथ मैं चलती हूँ। आप अगले शो का इंतजार कीजिए। मेरा नाम है शैली भाषांजलि, फिर बात होगी आपसे।

अतीत से बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेंडी पर रात 9 बजे।

और आइए अब सुनते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत में उनसे लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक स्तर पर इस्तेमाल करने को कहा है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के विजन से प्रेरित होकर एक मजबूत, भरोसेमंद, नवोन्मेषी, सशक्त और समावेशी डिजिटल भविष्य का निर्माण करना चाहता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल के मुख्यालय में 189 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा है कि यह विरोध न तो छात्रों के हित में है और न ही न्याय के लिए है। सरकार ने दोहराया है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने बताया है कि मास्टर प्लान फॉर दिल्ली 2047 का लक्ष्य किफायती आवास, पुरानी और अनधिकृत कॉलोनियों के पुनर्विकास, बेहतर कनेक्टिविटी और हरित क्षेत्र बढ़ाकर दिल्ली को आधुनिक तथा टिकाऊ राजधानी बनाना है। मणिपुर में इम्फाल, दीमापुर, गुवाहाटी मार्ग पर लगभग 3 साल के अंतराल के बाद सार्वजनिक परिवहन सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल्स में आज सात्विक साई राज रांकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला चीन के लियांग और वांग की जोड़ी से होगा। और हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में भारतीय महिला टीम आज रात 9:30 बजे मेजबान नीदरलैंड्स के साथ खेलेगी। तो ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

जी हाँ, एक बार फिर से वक्त हो चुका है आपके खास प्रोग्राम, जी हाँ, मैसेज मसाला मिक्स। और आज मैं आपके साथ आ चुकी हूँ आपकी दोस्त सीमा और आपके खास प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स के साथ। और आप अभी तक आए या नहीं आए ये तो आपको बताना पड़ेगा, है ना। तो चलिए आप मुझे बताएंगे कि आप प्रोग्राम के साथ आ गए हैं, नहीं आए हैं। और मैं तो आ गई हूँ। और आज हमारा क्या खास बात करने वाले हैं, क्या खास मुलाकात है हमारी, कुछ आपकी भी ख्याल होंगे, कुछ हमारे भी हैं। तो चलिए दोनों को मिलकर एक साथ एक करते हैं और बात करते हैं, क्योंकि खूबसूरत से ट्रैक के साथ खूबसूरत से प्रोग्राम की शुरुआत हो जाए तो कितना मज़ा आ जाए।

चलिए बात कर लेते हैं मैसेज मसाला मिक्स और शुरुआत तो हो ही चुकी है हमारे प्रोग्राम की। और जैसे ही हमने प्रोग्राम की शुरुआत की ना, तो शुरुआत में सबसे पहले मेरे पास एक मैसेज आ गया। वैसे मैं सोच ही रही थी कि आज मैं किस बारे में बात करूँगी, और इतनी सारी बातें होती हैं, रोज़ हम कुछ ना कुछ सोचते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, कहते हैं, बताते हैं, लेकिन आज मैं क्या करूँ, क्या अपने दोस्तों से मैं क्या बात करूँ। लेकिन मैं जैसे ही यहाँ आई

यस, दोस्त किस लिए होते हैं? दोस्त इसीलिए तो होते हैं मुश्किल में मदद करने के लिए, है ना। और यहाँ पर जैसे ही मैं आई और मैंने जैसे अपना अपना स्क्रीन देखा कंप्यूटर का, और मैंने देखा कि अरे सौरभ का मैसेज आया हुआ है। हाय, पहला ही वर्ड था दोस्त। यस, और उन्होंने लिखा है कि दोस्त मुझे आज 6 बजे सुबह पता चला कि आज मेरा शो होने वाला है शाम को 6 बजे, और ये सुबह से ही मेरा इंतज़ार कर रहे थे और ये बहुत खुश हैं कि आज इन्हें मेरे को सुनने को मिल रहा है। और सौरभ मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे आपको ये जो आपने मुझे लिख कर भेजा है ये मुझ तक पहुँच गया है। जितना इंतज़ार आप कर रहे थे ना मैं भी इंतज़ार कर रही थी। वैसे बताऊँ दोस्त कहूँगी अब मैं सौरभ आपको, क्योंकि ये जो दोस्ती होती है ना ये कैसी होती है किसी को पता है? और दोस्ती कैसी होती है, क्या होती है, दोस्त कितना हमें समझ पाता है, दोस्त कितना हमें समझा पाता है। कई बार होता है ना कि हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, दोस्त को सब पता होता है ना। लेकिन दोस्त कैसे भी होते जो तुम्हें परेशान कर देते हैं, दोस्त कैसे भी होते जो न जाने उन्हें हमें क्यों समझाना पड़ता है कि हम क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्त सौरभ अनेजा से। जी हाँ, दोस्ती। जी दोस्ती क्या है आपकी नज़र में? दोस्त कौन है आपकी नज़र में? बेस्ट फ्रेंड के अंदर क्या क्वालिटीज़ होती हैं? आप किसी के अगर बेस्ट फ्रेंड हो तो आप मुझे बताओ ना कि आप में इतनी अच्छी कौन सी बात है जो आप किसी के अच्छे दोस्त बन गए हो, तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि क्या पता मैं भी किसी की अच्छी दोस्त बन जाऊँ जैसे कि आप मेरी अच्छी अच्छी दोस्त हो। तो चलिए आज हम बात करेंगे दोस्ती की। और दोस्ती में कहते हैं ना कि नो सॉरी नो थैंक यू, तो चलिए नो सॉरी नो थैंक यू के साथ साथ हम बात करेंगे कि क्या कुछ खास बातें होती हैं जो एक दोस्ती के अंदर होनी चाहिए, तभी तो हम कहते हैं ना कि तभी तो वो दोस्त आपके दिल के बहुत बहुत बहुत करीब आ जाएगा। जैसे कि हमारे दोस्त हमारे इस करीब आ चुके हैं, और जिस तरह से सौरभ ने हमें मैसेज किया आप भी हमें मैसेज कीजिए 9868107070 पे इंतज़ार कर रही हूँ। और आज आपको मुझे बता देना है कि दोस्ती क्या है, क्या होती है दोस्ती। दोस्त बहुत बनाते हैं हम लोग, इतने सारे दोस्त बना लेते हैं, लेकिन असली दोस्त कौन है? कौन है जो आपको सच में कभी भी आपको महसूस ना हो कि आप अकेले हो, कभी भी किसी भी तकलीफ में हो तो आपको कोई महसूस हो यस वो तो मेरे पास है तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, नहीं है ना। चलिए तो टेंशन लिए बगैर प्रोग्राम एंजॉय करते हैं, बहुत खूबसूरत सा गीत सुनते हैं आज ये वाला गीत अरिजीत की आवाज़ में।

और पल पल दिल के पास तो आप बहुत रहते हो, इतना रहते हो कि कुछ भी नहीं कर पा रही हो। चलिए मैसेज ले लेते हैं अब आपके यहाँ पर, क्योंकि आप इतने करीब हो हमारे, तो मैसेज लेना तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रोग्राम ही हमारा मैसेज बेस्ड है। और मैसेज आ रहा है कि मैम आज आपका गला बहुत ख़राब है। मेरा गला क्या, मैं पूरी बहुत ख़राब हूँ पता है, इतने दिनों से बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, वायरल हो गया, जैसे कि आप देख ही रहे हो कि वायरल बहुत फैल रहा है आजकल, और ऐसे में आपको भी अपना बचाव करने की बहुत ज़रूरत है। और जो क्योंकि एक घर में अगर एक को हो जाता है तो फिर वो धीरे धीरे करके सबके लपेटे में ले लेता है ना, और उससे क्या होता है कि बहुत सारी, सिर्फ बुखार अपने साथ बुखार ही नहीं लेकर आता है, इसके साथ बहुत सारी चीज़ें लेकर आ जाता है। पहले होता था वायरल हो गया बुखार ना, कहते थे अरे वायरल फीवर हो गया है, अब तो लग रहा फीवर ही वायरल होता जा रहा है, इतना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है ये बेचारा, तो हम ही बहुत पीछे छूट गए। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हम पीछे छूट गए लेकिन हमारा साथ है, है ना। आवाज़ चाहे कैसी भी हो रही है आज, लेकिन हम दोनों पास पास हैं, साथ साथ हैं, और ये नोटिस कर लिया कि गला ख़राब है। ये होते हैं दोस्त, है ना, ये होते हैं दोस्त जो पहचान जाते हैं हमारी आवाज़ की टोन से, है ना, पहचान जाते हैं कुछ तो गड़बड़ है। और हितेंद्र दास का मैसेज आ गया है आसाम से, गुड इवनिंग हितेंद्र। और इसके साथ साथ हमारे पास आ चुके हैं फारूक अली खान जी, फैजी, फराज, फरीन, फरहान, फारिया, ताहिरा, ये सभी गुन्नौर यूपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। और इसी के साथ हमारे साथ आ गई हैं अनीता मुखी, सुदर्शन मुखी, सिमरन मुखी, शांतिनगर सोनीपत से, और हम उपस्थित हो चुके हैं। और आपकी संध्या और जीवन बहुत शुभ हो, सुखद हो, और आपके कोटि कोटि धन्यवाद हम मैं कहूँगी आपको सुदर्शन जी। और बहुत सुंदर मैसेज आप लिखते हैं। और इसके अलावा नरेंद्र सोनी देवीगढ़ पटियाला से हमारे साथ हैं, गुड इवनिंग। और हमारी नज़र में दोस्ती जो होती है ना, दोस्ती का जो मतलब होता है वो ईमानदारी होती है, बिल्कुल सही कहा। और उन्होंने कहा कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यस ऑनेस्टी, अगर किसी रिश्ते में ईमानदारी ही नहीं है तो वो कैसे हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। नीलम दिल्ली से, बरवाला से ये लिख रही हैं, नमस्कार कैसी हैं आप, मैं बहुत अच्छी हूँ नीलम। और ये लिख रही हैं जैसे इंसान अपने मन की बात बताता है, शायद अपनी बहन भाइयों से भी नहीं बता सकता, जिस इंसान को वो ऐसी बातें भी बता सकता है वो आपका बेस्ट फ्रेंड है। जी हाँ बिल्कुल। और लेकिन उसके लिए हमने एक बात करी ना कि उसके लिए पहले आपको उस लेवल पे तो आना पड़ेगा ना कि जब तक आपको किसी पे इतना ट्रस्ट हो जाए कि बस अब मैंने इसको कह दिया ना तो ये बात कहीं नहीं जाने की, जैसे कि हमने कुएं में फेंक दिया कुछ, अब वो वापस नहीं आने का, ठीक है ना, तो वही बात हमारी जो अंदर चली गई अब बाहर नहीं आ सकती है। इसी के साथ सोनू विष्णु हमारे साथ आ गए हैं और ये कहना चाहते हैं कि मेरे हमसफ़र मेरे साले साहब मोनू सैनी, उनसे मुझे बहुत लगाव है, मैं ये कह रही कि मेरे दोस्त यूँ कहें कि मेरे हमसफ़र।

पर, मेरे साली साहब, मुझे उनसे बहुत लगाव है और अभी तक भी हम कम नहीं हुए हैं। हमारी जो दोस्ती है, मतलब हमारी शादी से पहले भी हमारी दोस्ती थी और आज भी शादी के बाद भी बरकरार है। हालांकि शादी में मेरे उनकी बहन से हुई है बड़ा खुश हूँ और आज भी दोस्ती वैसी की वैसी है जी। तो दोस्ती तो ऐसी ही होनी चाहिए, इवन और गहरी होती चली जानी चाहिए, है ना। और समय के साथ साथ मैं तो जानना चाह रही थी कि ऐसी कौन सी बात होती है ना। मैंने आपसे पूछा है कि सबके पास दोस्त है, है ना। दोस्त इतने सारे ज़िंदगी में हमारे पास, हम सुबह से बाहर निकलते हैं, रोज़ 36 लोगों से मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं और उनकी बात सुनते हैं। क्या हम सबको उस लेवल पे, उस कॉर्नर पे लाके खड़ा कर सकते हैं क्या? नहीं ना। तो वो वाली बात बतानी है, वो वाली क्वालिटी कौन सी होती है जो आप अपने दोस्त के अंदर देखते हो। इसके अलावा प्रेमचंद प्रेमी धामपुर से हमारे साथ हैं, सभी दोस्तों के लिए ये लिख रहे हैं कि कश्ती को किनारे पे तुम काट लेना, पत्थर से हीरो को तुम छांट लेना, मैं गम का समंदर समेटे हुए हूँ, खुशियों को मेरी तुम बांट लेना। आए हाय, खुशियों को बांट के ही तो हम सेलिब्रेट करेंगे। और जब हम सेलिब्रेशन की बात करते हैं तो दोस्तों का उसमें होना बहुत बहुत बहुत ज़रूरी होता है ना। तो चलिए दोस्तों के साथ एक हम गीत सुन लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे प्रोग्राम के बारे में, है ना। क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे गानों के साथ मैं आ गई हूँ आज, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आई ना, इसीलिए तोहफा तोहफा तोहफा तो लाना पड़ता है ना, क्योंकि हमारे दोस्त जो है खुश हो जाए और फिर बहुत सारे मैसेजेस करें। 9868107070 पर, जी हाँ, प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स आपकी अपनी सीमा के साथ।

और चलिए आपको बता दें कि तू जो नहीं तू मेरा कोई नहीं है, है ना। कितना सुंदर गाने ना, इसको कितनी ही बार सुन लो, क्यों कर लो इसको, है ना, लेकिन पता नहीं क्यों बार बार बार बार बार बार इतना अच्छा फील आता है। जैसे कि मैंने अभी जो गले में एक दवाई खाई है ना, उसके बाद जो गले को आराम मिल रहा है वैसा फील, बहुत रिलैक्सिंग है ना, बहुत रिलैक्सिंग। चलिए अब हम और अच्छे अच्छे मैसेजेस ले लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मोहम्मद सरफराज आलम आ चुके हैं हमारे साथ। असली दोस्त वही है जो हालात में साथ निभाए, खुशियों में मुस्कुराए, गम में आंसू बहाए, मतलब से नहीं दिल से रिश्ता निभाए, वक्त बदल जाए मगर दोस्ती ना बदल पाए। क्या बात है, नए नए आइडियाज आ रहे हैं आज मेरे को बहुत। और इसके अलावा हमारे साथ आ गए हैं, ये कौन है, ये हैं आरिफ साहब। जी हाँ, ये हैं आरिफ रबानी फ्रॉम ज़िला हापुड़ से। हर किसी की लाइफ में जो होता है ना, एक दोस्त होना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे दोस्त मुझे इसलिए ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि मैं सबको हंसाने का हुनर रखता हूँ, ओहो, और मैं अपनी कोई भी प्रॉब्लम अपने दोस्तों को शेयर करता हूँ क्योंकि मैं उनको अपना सच्चा दोस्त मानता हूँ। ये तो है ही, है ना, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो आपने इससे पहले वाली बात बोली ना, वो बहुत अच्छी बात है कि आपके अंदर जो हुनर है हंसाने का, क्योंकि आजकल की जो लाइफ है ना इतनी स्ट्रेसफुल होती जा रही है, या फिर यूँ कहें कि हमने ही शायद अपने आप को इतना स्ट्रेस में बना लिया है कि कब मैं लास्ट टाइम स्माइल करी थी ना मुझे पता नहीं चलता है। और जैसे यहाँ पर आती हूँ ना तो थोड़ा सा ही हो जाती है ना, हंसी आ जाती है, जो वो यहीं पर रोती है वो बाहर नहीं होती जाके। तो जो ये यहाँ पे जो मैं हंस रही हूँ ना, ये खूबसूरत से दांत दिखा रही हूँ, यहीं पर हो रहा है। जैसे ट्रैफिक में फंसूँगी ना, एक अजीब सा स्ट्रेस आ जाएगा, फिर घर पहुँचेंगे थोड़ा सा और स्ट्रेस बढ़ जाएगा, फिर याद आएगा अरे कल के कितने काम हैं पेंडिंग, फिर वो स्ट्रेस का लेवल दूसरा हो जाएगा। कई बार तो रात को पता नींद भी नहीं आती इतने काम में, फिर ऐसे में ज़रूरत होती है, हाय काश कोई तो होता कोई तो बोलता अरे मैं हूँ ना, टेंशन क्यों ले रहे हो। कहते हैं ना कि गुड़ ना दिया गुड़ जैसी बात ही कर दी, तो वो बात होनी चाहिए हमारे दोस्तों के अंदर, है ना। और यहाँ पे सत्य प्रकाश सनोठिया रोहिणी से हमारे साथ हैं और ये लिख रहे हैं, फ्रेंड्स इन नीड, फ्रेंड्स इंडीड वाली आदर्शवाद दोस्ती को मजबूत आधारशिला होती है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज़रूरत के वक्त दोस्त का भरोसा कायम रहे। बिल्कुल सही कहा आपने, दोस्त का भरोसा कायम रखना बहुत ज़रूरी है। जब तक तो भरोसा नहीं होगा तो दोस्त कैसे होगा, है ना। दोस्त क्या है, कि मोहब्बत दोस्ती है, प्यार दोस्ती है, मुझे नहीं लगता। चलिए आपको बताना है भी, आज तो सारे आइडियाज़ आप ही के चलने वाले हैं, मेरे कोई आइडिया यहाँ पे नहीं चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैसेज जो करा है हीरामणि वर्मा जी ने, ये लिख रहे हैं कि हम लोग बचपन से ही चार दोस्त थे, हमारी दोस्ती आज भी सलामत है और आगे भी रहे। हम चारों बिना बताए एक दूसरे की कमजोरियाँ, परेशानियाँ, खुशी या मन की बात महसूस कर लेते हैं और जान लेते हैं, बिल्कुल। और कई बार क्या होते हैं आजकल के ना फ्रेंडशिप में, क्या हो रहा है, अरे ये इतने उसे बोल दिया, उसने ये बोल दिया, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, और फिर उसके बीच में जो इतनी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है ना, उसमें तो झगड़ा फसाद हो जाता है ना। तो वो नहीं करना है हमने, और हमें एक दूसरे का साथ देना है, एक दूसरे के पास रहना है, एक दूसरे को हेल्प करनी है, और उसको एक मेंटल, एक इमोशनल सपोर्ट देने है ना। और मैंने बताया ना कि कोई तो ऐसा होता है, और भगवान जी ज़रूर एक दोस्त आपके लिए भेजते हैं, ये तो मुझे पता है। और जैसे कि अब भगवान जी ने पता है आपके लिए बहुत सुंदर सा गाना भेजा है और चलिए अब आपको ये ट्रैक सुनवा देती हूँ, उसके बाद मैं छोटे से ब्रेक लूँगी, है ना, और ब्रेक के बाद वापस आऊँगी। तो आपको क्या करना है, कहीं कहीं कहीं नहीं जाना है, प्रोग्राम सुनते रहना है, अपना मैसेज मसाला मिक्स, क्योंकि उसके बाद आपके मैसेजेस भी तो है ना, इतने सारे मैसेजेस मेरे पास आए हुए हैं, और दोस्ती की बात हो रही है तो भला मैं दोस्तों के मैसेज कैसे बिना पढ़े रह सकती हूँ। तो चलिए दोस्त अभी ये गीत, उसके बाद हम मिलते हैं वापस।

0: 9868107070 पर बिल्कुल लिख कर आप बिंदास भेज दीजिए दिल की बात, और आपकी दिल की बात सीधे मेरे दिल तक आ पहुंचेगी। ठीक है, तो अभी हाजिर हो रही हूँ, लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: दादी दादी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
4: पता का चाय, गजब का स्वाद।
5: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
6: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
7: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए बात कर लेते हैं। अब हमारे पास दोस्त बहुत सारे, पता है अब जब हम इतने अच्छे थे दोस्त बहुत सारे होंगे ना। चलिए अब हम वहाँ पे अपनी दोस्ती को भी निभाते हैं और हमारे दोस्तों के मैसेजेस ले लेते हैं। चलिए नीचे से स्टार्ट करें, ऊपर से स्टार्ट करें। टाइम कह रहा है कि अभी हूँ थोड़ा समय। चलिए दोस्त भी है हमारा टाइम, अब वो कह रहा है कि आज मैं पूरा टाइम दूंगा, तुम अपने सारे दोस्तों के मैसेज पढ़ के जाना यहाँ से, क्योंकि आज हमने दोस्ती की बात करी है ना, और जब दोस्त हमारे हमारे साथ हैं तो बस फिर क्या बात है। चलिए यहाँ मैसेज लेती हूँ मैं यहाँ पे। ये मैसेज आ गया है मनोज भट्ट का। बचपन के दोस्त को यहाँ देख कर बहुत खुशी होती है, वही उसे हो रहा है, आवाज़ भी वही है, जैसे कि आप बहुत सुंदर हो, जैसे कि शायद इन्होंने कभी अपने दोस्त को देखा हो, शायद वैसी आवाज़ है मेरी, स्तब्ध हूँ, क्या बोलूँ, क्या मैं वही तो नहीं हूँ? आहा, क्या बता, मैं वही तो नहीं जो आपकी दोस्त हूँ, खास बेस्ट फ्रेंड? शायद आपने उस समय अपनी दोस्ती ठीक से नहीं निभाई, शायद, है ना, हो सकता है। चलिए अब मौका मिला है दोबारा से एक बार, फिर से दोस्ती कर लेते हैं और फिर से दोस्ती की शुरुआत करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि इस बार बीच रास्ते में कोई नहीं छोड़ने वाला किसी को भी, है ना। चलिए अब यहाँ पे मैसेज लूँगी मैं, नाम आरिफ का तो मैंने मैसेज ले लिया था, आरिफ के साथ और भी जोया का मैसेज आया। हाँ जोया का मैसेज मैं ज़रूर लूँगी। जोया लिख रही है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से। वाओ। दोस्त वो होता है जो दुख दर्द खुशी गम और हर कहते हैं प्रॉब्लम में काम आए। प्रॉब्लम ये है कि सब ही अपने गमों में बिजी हैं। मेरा पक्का दोस्त डॉलर और गूगल है। अरे ये डॉलर और गूगल है कौन? डॉलर है तो गूगल। अच्छा इसलिए दोस्त हो तो। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। दोस्त हो ना हो डॉलर ज़रूर होने चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ऐसे दोस्तों बहुत चाहिए, ऐसे दोस्तों की बहुत ज़रूरत है मुझे भी। और कहते हैं ना मेरे भी बहुत सारे दोस्त ऐसे बन जाए भगवान जी, रुपया पैसा डॉलर ऐसे नाम के दोस्त मुझे मिल जाए। वैसे मेरी एक दोस्त है उसका नाम है डॉलर, और अच्छा लगा बहुत, जोया बहुत अच्छा लगा। और मैंने कहा था ना कि बड़ी मुश्किल से ये मुस्कुराने का वक्त आता है ना, तुम्हें बिल्कुल ठीक लगा। हर कोई अपनी प्रॉब्लम में इतना बिजी है, अगर आप किसी से पूछते हो ना, आप पूछते नहीं हो, आप किसी को बताते हो मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही है, तुम्हारे ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता सामने वाले से, अरे मैं खुद इतना बीमार चल रहा हूँ, मैं खुद 4 दिनों से बीमार था, मेरी खांसी जुकाम पेट में दर्द सब चीज़ हो रही थी, आप बोलोगे मैं डॉक्टर के पास, अरे मैं 4 दिन से डॉक्टरों के चक्कर लगा रहा हूँ। तो टेंशन इतनी है दुनिया में, आप एक बात किसी को बताते हो पलट के 4 बात आपको सुनने को मिल जाती है। तो ऐसे में जोया का जो मैसेज था, हमें ऐसे दोस्तों की बहुत ज़रूरत है, फिर ये दोस्त हमारे पास होने चाहिए, फिर ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं होगी। चले अगला पंकज अमरावती महाराष्ट्र से मैसेज आ गया है, और ये लिख रहे हैं कि मैडम जी मैं अपने दोस्त

मैं बहुत ही प्रामाणिक रहता हूँ। अरे मेरे को हिंदी के टीचर से दोस्ती करनी पड़ेगी। अरे क्योंकि इतनी जो आपने लिखी है ना, इतनी भयंकर हिंदी, वो मेरे को समझ नहीं आ रही है, पता है। अरे मेरे जितने भी दोस्त हैं ना, बहुत अच्छे हैं, और मेरा दोस्त मेरा मार्गदर्शक रहे, हमेशा अच्छी सलाह देते रहे, मेरे अच्छे बुरे समय में मेरे साथ खड़े रहते हैं, और जब मेरी परेशानी होती है मैं उनसे मदद मांगता हूँ और वो मेरी परेशानी का हल निकालते हैं। बीमारी के वक्त हॉस्पिटल में हाजिर रहते हैं, और जब तक कि मैं ठीक ना हो जाऊँ हाल चाल पूछते रहते हैं। वाओ, ऐसे दोस्त होने चाहिए जो आपके सुख में तो सभी होते हैं। एक पार्टी दोगे तो देखो सारे लोग आ जाएंगे। लेकिन आप कहते हो ना कि अगर मैं बहुत बीमार हूँ या रात को नाइट स्टे करना है, तो गिने चुने लोग होते हैं जो आपको बोलते हैं मैं रुक जाता हूँ, बहुत कम होते हैं। और इसके अलावा रवि जोशी मेरठ से आ गए हैं, कैसी हैं? बहुत अच्छी हैं। और दोस्त हालात बदलने वाले हूँ, हालात के साथ बदलने वाले नहीं होने चाहिए। जी हाँ दोस्त, हालात बदलने वाले होने चाहिए, हालात के साथ बदलने वाले नहीं होने चाहिए। और इसी के साथ आपके पास ये किसका बुराड़ी से ही एक और मैसेज आ गया है मेरे पास। आपके पास बहुत स्वीट है। अच्छा जी, शुगर ना हो जाए हमको आज। अच्छा, राकेश वोरा जी का ये प्रधान इनके लिए बुराड़ी से मैसेज है, वो तो मैं करके जाऊंगी। और इसके अलावा ये मैसेज आ गया है सौरभ का। यस, सौरभ तो आज हमारे प्रोग्राम की कहते हैं ना नींव है, बेस है आज। दोस्त मेरे बेस्ट फ्रेंड में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसका दिल सुंदर हो, उसकी नेचर केयरिंग हेल्पिंग होनी चाहिए, और वो ऑनेस्ट भी होना चाहिए। और मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि ये सारी क्वालिटीज़ मेरे दोस्तों के साथ साथ मेरी काफ़ी आरजे दोस्तों में भी हैं, खासकर मेरे पुराने आरजे दोस्तों में, जिन्हें में आप भी शामिल हैं। थैंक यू सो मच सौरभ, और हमारे बेस्ट फ्रेंड में आप भी शामिल है, पता है ना आपको, और ये बताने की मुझे ज़रूरत है नहीं वैसे। और इसके साथ साथ सुदर्शन जी, अनीता जी भी फिर से एक बार हमारे साथ प्रोग्राम में बहुत लंबे से मैसेज के साथ आ गए हैं, लेकिन मैं नाम ही ले पाऊंगी आप लोगों का, क्योंकि अगला मैसेज मुझे पंकज मोहम्मद का भी पढ़ना, मोहाद का, सॉरी पंकज मोहाद का भी पढ़ना है, अमरावती से। मुझे बहुत हेल्प करते हैं जो इनके फ्रेंड्स हैं, और उनको पूछते रहते हैं और साथ देते हैं। और वीरेंद्र गहलोत अकोला महाराष्ट्र से, और FM भी हमारा बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड बन गया है, हमारे मैसेजेस शामिल करते हैं और हमारा नाम लेते हैं प्रोग्राम में। थैंक यू जी। और एक और मैसेज लेती हूँ, उसके बाद मैं गाना चलाने वाली हूँ और आपको बहुत अच्छा सा गाना सुनवाऊँगी सुनिधि चौहान की आवाज़ में। यार मैं सोच रही हूँ कि पहले गाना ले लूँ, मेरा अभी मुँह थक गया, थोड़ा पानी पी लेती हूँ, मेरा गला बहुत खराब है पता है, और गला ख़राब है इसीलिए बहुत अटक रही हूँगी मैं, है ना, भटक रही हूँगी मैं, लेकिन कोई बात नहीं, इस गाने के बाद रिलैक्स।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेंदी पर रात 9 बजे। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेंदो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

वेलकम बैक और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम आपका अपना मैसेज मसाला मिक्स और स्वागत कर रही हूँ मैं आज आपका आपकी सीमा। और चलिए बात कर लेते हैं फिर से वापस अपने दोस्तों पे आ जाते हैं क्योंकि दोस्ती की बात चल रही है हमारी और हमारे सारे बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ हैं आज और जो बेस्ट नहीं थे वो बेस्ट बन गए मुझे लग रहा है आज। दानिश जी हमारे साथ आ गए हैं। इसके साथ अगला मैसेज मैं ले लेती हूँ। ये किसका मैसेज आया है? आई एम वेरी लकी एज आई हैव वेरी लवली एंड ऑसम फ्रेंड्स, दे आर ऑलवेज देयर व्हेनेवर आई नीड। और ये मैसेज किसने किया है? शैलजा ने जी, शैलजा फ्रॉम नीमराना। आज तो मेरा नाम बिल्कुल जुबान इधर उधर जा रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं कहाँ जा रही है। इतनी स्लिप हो रही है ना, ये गला में कब ठीक होगा? भगवान जी कुछ तो चमत्कार कर दो, इतने सारे दोस्त पे ये कर रहे हैं मेरे लिए कि जल्दी ठीक हो जाओ, कुछ तो कर दो। और इसके बला अगला मैसेज आ गया है। ये दोस्त, मैं ये रेनबो का जो शो है ना जर्मनी से सुन रहा हूँ। सनी कपूर, क्या बात है, मेलबर्न से, जर्मनी से, और हमारा जो यूपी मेरठ तो है ही ना, ये तो अपन वाले हैं। ये जो दूर दूर से सुन रहे हैं ना, नाम से ही बड़ा अच्छा लगता है। जर्मनी में भी मुझे सुना जाता है। ये होती है पॉपुलैरिटी ये होती है पॉपुलैरिटी। जैसे कि हमारे जो खास दोस्त हैं, जो हमारे आसपास के हैं, वो तो हमारे साथ बने ही रहते हैं। जैसे कि हमारे दोस्त आदिल कमर जी हैं, तस्दीक अली, मुजफ्फर अली जी हैं गुन्नौर से, ये तो हमारे अपने खास दोस्त हैं। और ये मैसेज मसाला प्रोग्राम जो है बहुत गजब का लग रहा है। इनको प्यार से प्यार बैठता है, पैसे से व्यापार, अखलाक से रिश्ता और दोस्तों में प्यार। जी हाँ, ये जो आपने बीच वाला वर्ड बोला था ना, उसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया, वो जरा मुझे लिख के भेज देना प्लीज़। और अगला मैसेज आ गया है हमारे पास। ये किसका मैसेज आया? नीचे ले लेते हैं हम इसको। ये मैसेज आ गया है सत्य प्रकाश सनोठिया रोहिणी से। और ये पहला वाला मैसेज तो शायद मैंने आपका पढ़ लिया था, दूसरा ले लेती हूँ। रहा कठिन हो या आसान, जो रख लेता है मित्र का मान, बिना स्वार्थ जो साथ निभाए, वही मित्र सच्चा कहलाए। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसके अलावा एक और दोस्त हमारा आ गया है हमारे भी। जी हाँ, शंकर शंकर भी आ गए हैं। शंकर पंत हमारे साथ मयूर विहार से हमें सुन रहे हैं। ये भी हमारे बहुत खासम खास दोस्त हैं और आज मैं भी सुन रहा हूँ। तो दोस्त, क्या सुन रहे हो, क्या सुनना चाहते हो, ये ज़रूर बताओ। और दोस्ती में क्या खास बात होती है? क्या किसी को मजाक में कुछ भी कह देना, क्या वो दोस्ती होती है? क्या किसी को हर्ट कर देना बातों बातों में, अरे ये तो पक्का दोस्त है, कुछ भी बोल दो, ऐसा भी होता है क्या? नहीं ना। जब हम किसी से दोस्ती करते हैं, जब हम किसी के साथ इतने ज़्यादा हम उस पर भरोसा करते हैं, तो अब हमारी एक जिम्मेदारी और हो जाती है कि उसके मान सम्मान और उसको किसी भी प्रकार की चोट हमारे द्वारा ना लगे। या हमारे ही क्या, हम तो उसकी एक तरीके से शील्ड बन जाएं कि उसको किसी भी तरीके की चोट ना लगने दें, है ना? उसे कहते हैं दोस्ती। जैसे कि हमारे पास है सत्तू ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये हैं हमारी शील्ड। कोई भी समस्या परेशानी हो, हमारे दोस्त हमारे साथ होते हैं। तुरंत झट से इन तक बात पहुंचाओ और अपनी बात को स्ट्रेस कहते हैं ना, ख़त्म करो, अब इनके ऊपर डाल दो, अभी देखेंगे, इसे कहते हैं दोस्त, है ना? ऐसे ही दोस्तों की ज़रूरत होती है। चलिए, और भी दोस्त मेरे पास आ गए हैं और ये कह रहे हैं कि इतनी स्वीट वॉइस, आम खा के आई थी क्या? आम का खा रही हूँ, आम का सीज़न चले गया, पता है मेरा फेवरेट फ्रूट है आम, और बहुत आम खाती हूँ मैं, इतना आम खाती हूँ ना मैं, बहुत आम खाती हूँ, इतना आम खाया मैंने इस बार भी। और अब जिस दिन आम जा रहा था ना, ऐसा लग रहा था कि जैसे विदाई होती है ना लड़कियों की फिर कब आएंगे पता नहीं, ऐसा फील आ रहा था और ऐसे ही मुझे दुख हो रहा था कि अरे जाने वाले हैं, अब कब आएंगे, अगले साल मिलेंगे मुझे और इसके अलावा अगला मैसेज आ गया हमारे पास। मैडम जी, ऑनेस्ट को मराठी में प्रमाणिक और हिंदी, अच्छा, अरे वाह, मुझे मराठी लिखना बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैंने मराठी में मैसेज लिख दिया। अरे दोस्त देखो, ये तो बहुत गलत बात है ना, आपको मराठी बहुत अच्छी आती है, आप मराठी में मैसेज लिखे और मुझे तो मराठी नहीं आती मैं उस मैसेज को कैसे पढ़ूंगी, है ना? तो मेरा ख्याल करो दोस्त, ना समझते हो ना बात को, तो समझो ना, क्योंकि ये जो उच्च दिन जो मिले हैं, वैसे मैं आपको बता दूँ, मैं संडे भी आने वाली हूँ संडे को भी हम बात करेंगे शाम को, तो संडे को भी हमें क्या बात करनी है मुझे बता भी दो कि संडे को ना हम इस बारे में बात करते हैं। चलिए, वो टॉपिक भी अगर मन में कुछ आ रहा है तो वो भी मुझे बता देना,
तो वरना मैं तो लेकर आऊँगी अपने साथ, लेकिन दोस्त हूँ ना तो टॉप सीक्रेट बता के जा रही हूँ। संडे की शाम को फिर से मुलाकात करूँगी आपके साथ, लेकिन जो आज की मुलाकात है ना उसको मैं भूल नहीं सकती, आज की जो बात है ना उसको मैं भूल नहीं सकती। मनोज हमारे साथ है, मनोज भट्ट सुन रहे हैं और शंकर पंत हमें सुन रहे हैं। इसके साथ लेमन टी जरूर पी लेना, कविता बोल रही है। थैंक यू सो मच।

और चलिए अगर मैं ये मैसेज ना लूँ तो मेरी आदत में कुछ गड़बड़ी लगती है। जी हाँ, अनिल शर्मा जी आ गए हैं। हाँ, उम्र से बूढ़ा हूँ, दिल से अभी भी जवान हूँ। सबसे पहले उठता हूँ, सुबह की सैर करता हूँ, शौक गाने सुनने का है, काव्य लिखता हूँ, नित्य खुशी का यही मेरा राज। और भी लिखा है लेकिन थैंक यू।

वैसे दोस्त वही होते हैं ना जिनकी आदत लग जाए। जी हाँ, और ये मैसेज है लूड़ा राम जी का नागौर राजस्थान से। ये लिख रहे हैं कि केवल दोस्त हाँ में हाँ मिलाने वाले नहीं होने चाहिए बल्कि आपकी गलती को सुधारने के लिए डांट भी लगाए, ऐसे दोस्त चाहिए हमें। बिल्कुल सही कहा आपने। और कौन बताएगा आपको क्या गलत कर रहे हो, दोस्त ही तो बताएंगे। और अगला मैसेज हमारे पास आ गया है, आज बहुत दिनों के बाद आपकी आवाज़ सुनाई दी। दोस्त से बड़ा कोई नहीं जिससे आप मन की बात कर सकते हैं। देहरादून से आलोक पंवार और मिन का मैसेज आई। थैंक यू।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: एक बार बहुत स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स में। और वैसे अब स्वागत का समय नहीं बचा है, अब तो जाने का टाइम आ गया है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जल्दी से जो बचे कुछ मैसेजेस हैं वो भी मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, वरना आप निराश हो जाओगे, है ना। भुवनेश का भी मैसेज आ गया है अशोक विहार से, थैंक यू भुवनेश, सॉरी मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, बहुत सारा है। और इसके अलावा हमारे पास अंशी भी आ गई है, अंशी थैंक यू सो मच। और सीमा भारती, कविता और सरिता, ये मेरी स्कूल की दोस्त हैं। अच्छा जी, बहुत सारे नाम लिख के भेजे हैं, कोई बात नहीं, संडे को आऊँगी ना तो संडे को मैं आपके सारे मैसेजेस ले लूँगी, ठीक है, संडे को भर भर के भेजना, ठीक है। जयपुर से जावेद आलम मोहम्मद भी हमारे साथ प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं, प्रेमचंद प्रेमी जी तो लगातार हमें मैसेज कर रहे हैं। इसके अलावा अगर ओ बाप रे कविता उत्तराखंड से मैसेज कर रही हैं। इसके अलावा हमें मैसेज किसका आ गया है, सरफराज का भी मैसेज आ गया है। इसके अलावा बहुत बड़ा मैसेज के साथ नेहा गाज़ियाबाद से हमारे साथ हैं, अरे बाप रे नेहा, इतना बड़ा मैसेज है। कोई बात नहीं, संडे को ना हम एक टॉपिक रखेंगे और संडे को हम बात करेंगे, उस पर मैं सबसे पहले आपका मैसेज रखूँगी, सबका दो दो बार पढ़ रही हूँ नेहा, सॉरी सॉरी सॉरी, टाइम हो गया है। और एक गाना मैं ज़रूर चला के जाऊँगी क्योंकि मुझे बहुत बहुत पसंद है। तो चलिए फिर मुलाकात करूँगी, अगर कोई मैसेज रह गया है तो आई एम वेरी वेरी वेरी वेरी सॉरी, लेकिन फिर से मुलाकात करूंगी, जल्दी मिलूंगी। और तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने दोस्तों का साथ जरूर दीजिएगा, ठीक है, और टेक केयर, बाय बाय।

0: Oh, ho, ho, ho. That was the end of the track over there. I'm sure you guys like this interesting track over there. That was Sweet Dreams by J Hope and Miguel. And time right now exactly is 19:37:30. That means we are at the halfway mark of the show, Friday Fiesta, and with me, Dave. And yes, it's time for us to take a quick break. Don't go anywhere. We'll be right back.
1: अरे अंजलि, अब क्या तुम मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
2: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगमपुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
1: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
3: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
4: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
5: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
6: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
7: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

0: Right, there we go. That was Australian singer. Yeah, there we go. The person from Down Under, Dean Lewis, with this beautiful track called With You. Alrighty, that was released last year in the month of January. Okay, time right now is 19:40 and we're going to take a quick break over here. Don't go anywhere. We'll be right back.
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: I just want to say I love you one more time. I love you. Goodbye.
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

और अब सुनते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत में उनसे लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक स्तर पर इस्तेमाल करने को कहा है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के विजन से प्रेरित होकर एक मजबूत, भरोसेमंद, नवोन्मेषी, सशक्त और समावेशी डिजिटल भविष्य का निर्माण करना चाहता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विन वैष्णव ने आज मोबाइल फोन विनिर्माण योजना MPMS का शुभारंभ किया। गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल से मुख्यालय में 189 करोड़ रुपए की कई नई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि यह विरोध न तो छात्रों के हित में है और न ही न्याय के लिए है। सरकार ने दोहराया है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने बताया है कि मास्टर प्लान फॉर दिल्ली 2047 का लक्ष्य किफायती आवास, पुरानी और अनधिकृत कॉलोनियों के पुनर्विकास, बेहतर कनेक्टिविटी और हरित क्षेत्र बढ़ाकर दिल्ली को आधुनिक तथा टिकाऊ राजधानी बनाना है। मणिपुर में इम्फाल दिमापुर गुवाहाटी मार्ग पर लगभग 3 साल के अंतराल के बाद सार्वजनिक परिवहन सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। ओडिशा के भुवनेश्वर में आज ओडिया भाषा के दिग्गज पार्श्व गायक प्रणब पटनायक का 88 वर्ष में निधन हो गया है। 5 दशकों से अधिक के करियर में उन्होंने 200 से अधिक फिल्मों में गाने गाए और कई प्रसिद्ध राष्ट्रीय स्तर के गायकों के साथ काम किया। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल्स में आज सात्विक साई राज राकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला चीन के लियांग और वांग की जोड़ी से होगा। और हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में भारतीय महिला टीम आज रात 9:30 बजे मेजबान नीदरलैंड से खेलेगी। तो ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

जी हाँ, जाना तो साथ ही है बिल्कुल, लेकिन जब तक साथ है बात है, और जब हमारा खूबसूरत समा ही हमारे साथ है तो बस फिर जो जिंदगी का जो मजा है ना वो चार गुना हो जाता है। तो चलिए और खूबसूरत से गीतों का एक और नजराना आपके लिए, और प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती आपकी अपनी सीमा के साथ सुनते रहिए। और यूं ही क्योंकि जैसे ही हमारा कल सैटरडे और संडे आता है ना, वैसे अंदर से गुदगुदी सी होने लगती है ना छुट्टी वाली। और जो वीकेंड होता है ना वो सच में अपने आप में, चाहे वीकेंड में काम बहुत ज़्यादा हो लेकिन थोड़ा सा रिलैक्सिंग तो होता है। चलिए रिलैक्स करते हैं, अच्छा करते हैं, इंजॉय करते हैं।

0: यस और आ जाओ भाई और आ तो गई हूँ भाई मैं, और अभी तो जाने वाली नहीं हूँ, लेकिन हाँ गले नहीं लग पाएंगे जनाब अभी तो, क्योंकि बहुत दूर है ना आपसे। चलिए अभी ले रही हूँ एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होती हूँ बहुत जल्द।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: कोयल सी तेरी बोली,
4: हाय
3: तेरी तेरे छी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
5: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: कोयल सी तेरी बोली,
4: हाय
3: तेरी तेरे छी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
5: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

ब्रेकबादिंग में बहुत स्वागत है आप सभी का। और चलिए अब करते हैं बहुत धमाल कमाल, क्योंकि करने का आ गया है जमाना डांस। और मुझे लगता है कि आपको डांस करने का बड़ा अच्छा लगता है ना, मुझे भी बहुत पसंद है, पता है, सच में बहुत पसंद है डांस करना। चलिए एक साथ करते हैं और नाचेंगे सारी रात। यस जनाब, रात भर नाचना है, वीकेंड आना स्टार्ट हो चुका है। वो दूसरी बात है कि काम भी आ गया है बहुत ज़्यादा, लेकिन कोई बात नहीं, हम इंजॉय करेंगे, स्ट्रेस फील हम ना रिलीज कर देंगे। और वाओ कितना खूबसूरत संगीत, अब रुका नहीं जा रहा।

और थोड़ा सा नहीं, बहुत बहुत बहुत सारा प्यार करते हैं, आपको मोहब्बत करते हैं, नचांगा पूरी रात, आपको नचा के छोड़ेंगे और बिल्कुल 9 बजे तक तो मेरा वादा है, बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली कहीं पे भी।

वैसे पटोला का तो नहीं पता, लेकिन अपना जरूर पता है। पटोला बनके तो नहीं निकल पाए हैं, क्योंकि दिल्ली का ट्रैफिक में कोई पटोला ना बाहर जाके सब पता नहीं क्या हो जाता है उसका। लेकिन आपके साथ आके जो चेहरे की रौनक आ जाती है ना, वो हम नहीं बता सकते। रियली आप सुन रहे हैं आपका अपना म्यूजिक मस्ती प्रोग्राम और आपकी अपनी अपनी फेवरेट सीमा के साथ।

और देसी गर्ल के साथ साथ आपके साथ अब एक बहुत बहुत सुंदर सा एक गीत आप लेकर आए हो और मुझे लग रहा है कि प्रोग्राम तो बड़ा अच्छा लग रहा है सबको। पता चल रहा है आपकी जो फीलिंग्स है ना आ रही है तो वाइब्स यहाँ तक पहुँच रही है। तो चलिए यूँ ही आप इंजॉय कीजिए, मैं भी इंजॉय कर रही हूँ और साथ ही साथ आपको बता देती हूँ कि 8:32 हो गए हैं और 9 बजे तक तो मैं आपके साथ रहने वाली हूँ, उसके बाद आपका मूड ऐसा बना के जाऊँगी बस।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का और प्रोग्राम में फिर से एक बार हम आ गए हैं और चलिए शुरू करते हैं फिर से हमारा सिलसिला मस्ती का धमाल का। और ये वाला ट्रैक आपने सुना है, बहुत दिन बाद सुना होगा। आज मैं कुछ एक ऐसे ट्रैक आपके लिए लेकर आई हूँ जो शायद आपने बहुत दिनों बाद सुने होंगे, लेकिन आज आपका जो मूड है ना ये बहुत अच्छा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए

और इसी के साथ मैं सीमा लेती हूँ इजाजत म्यूजिक मस्ती प्रोग्राम से। नेक्स्ट प्रोग्राम विकास कौशिक के साथ, आपकी याद आती रहे और बस यूं ही हमारी याद भी आपको हमेशा हमेशा याद आती रहे। और फिर मुलाकात करूंगी संडे को जैसे कि मैंने आपसे कहा था, और तब तक यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो। जब आप सुनिए रात 9 बजे तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का आह्वान किया। उन्होंने 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। गृहमंत्री अमित शाह ने हर अवैध प्रवासियों को देश से बाहर भेजने और जनसांख्यिकी बदलाव को रोकने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। सरकार ने कहा कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, हालांकि इसका उत्पादन अनुमान से कम रहने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के विजन से प्रेरित होकर एक मजबूत, भरोसेमंद, नवोन्मेषी, सशक्त और समावेशी डिजिटल भविष्य का निर्माण करना चाहता है। सरकार ने दोहराया है कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने बताया कि मास्टर प्लान फॉर दिल्ली 2047 का लक्ष्य किफायती आवास, पुरानी और अनधिकृत कॉलोनियों के पुनर्विकास, बेहतर कनेक्टिविटी और हरित क्षेत्र बढ़ाकर दिल्ली को आधुनिक तथा टिकाऊ राजधानी बनाना है। मणिपुर में इम्फाल दिमापुर गुवाहाटी मार्ग पर लगभग 3 साल के अंतराल के बाद सार्वजनिक परिवहन सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। ओडिशा के भुवनेश्वर में आज उड़िया भाषा के दिग्गज पार्श्व गायक प्रणव पटनायक का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 5 दशकों से अधिक के करियर में उन्होंने 200 से अधिक फिल्मों में गाने गाए और कई प्रसिद्ध राष्ट्रीय स्तर के गायकों के साथ काम किया। और हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में भारतीय महिला टीम आज रात 9:30 बजे मेजबान नीदरलैंड्स के साथ खेलेगी। तो ये थे आकाशवाणी के रेनबो पर अभी तक के मुख्य समाचार। आप जुड़े रहिए AIR आकाशवाणी रेनबो के साथ।

करेक्ट, आकाशवाणी के रेनबो पर मैं हूँ आपके साथ विकास, और मैं आपसे बस कहने आया हूँ कि तेरे ना होने का मुझको मलाल एक तरफ, तू मेरा क्यों ना हुआ ये सवाल एक तरफ, और यकीन मान मैं खुश हूँ मगर तू जब संग था वो दिन वो महीना।

ना वो साल एक तरफ, और इसलिए तू अब पूछे या ना पूछे, पर जब भी तेरा जिक्र कहीं आता है तो मेरे दिल से सिर्फ यही आवाज आती है कि आपकी याद आती रही। करेक्ट, यही इस प्रोग्राम का नाम जिसे मैं लेकर आया हूँ इस वक्त आकाशवाणी के रेनबो पर। मेरा नाम विकास है और मैं आपको बस ये बताने के लिए आया हूँ कि ये जो तकरीबन एक घंटे का सफ़र आपके साथ बिताने का मुझे मौका मिला है, इससे बहुत खुशनुमा बनाएंगे, बहुत प्यारी प्यारी बातें करेंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया गीत आपको सुनाएंगे और आपको लेकर जाएंगे यादों के कैसे कारवां में, जहाँ हो सकता है कि किसी ऐसे की याद आपको आ जाए जो आपकी आंखों की कतारों को नम कर जाए। लेकिन आगे क्या होगा ना तुम जानो ना हम।

लेकिन हम तो जानते हैं कि हमारी और आपकी मोहब्बत का असर क्या होता है। असर ये होता है कि हमारे आते ही हमारा जो कंप्यूटर स्क्रीन है, मैसेजेस का विंडो एकदम भर जाता है, एकदम लबालब हो जाता है। और आपका प्यार है ये जो स्क्रीन पर भरता है, बहुत शुक्रिया आपका। और आपको सच में इतनी मोहब्बत है आपके साथ हमारी गहरी कि हम बस आपको क्या ही कहें। ऐसे ऐसे गुड इवनिंग के मैसेजेस, ऐसे ऐसे हमारे जो लोग रेडियो मित्र कहते हैं उनके मैसेजेस आते हैं और बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें आप लिखते हैं। इस जज्बे को आप बरकरार रखिएगा। और ये बताने के लिए काफ़ी है कि हमें ही केवल आपकी याद नहीं आती बल्कि आपको भी हमारी याद आती है। और ये जो दो तरफा मोहब्बत है हमारी, ये इसका रंग बहुत चटक होता है। और इस चटक रंग से एक बात याद आई है कि गुलाब पर यह चटक रंग चढ़ेगा कैसे भला, मैं बैठा सोचने रखकर गुलाल एक तरफ, जहान भर के हैं मंजर मेरी नज़र में मगर उस शख्स का इस दिल में ख्याल एक तरफ, हजार शिकवे शिकायतें मुझे हैं तुझसे मगर वो कुछ दिनों की तेरी देखभाल एक तरफ। और सच में उसी मोहब्बत का असर ये है कि हमें आप जब मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी सारी तकलीफ़ें दूर हो गई, और आपसे जब दूर हम हो जाते हैं तो दिल बस यही कहता है कि मैनू इश्क दा लग्या रोग।

0: अगर मैं छोटे से ब्रेक पे झट से जाऊं और पट्ट से वापस आ जाऊं तो मेरे बचने की उम्मीद है आपके गुस्से से, है ना? ये जो प्यार है ना आपका, जैसे प्यार से मुस्कुरा के इजाजत दे दो, जा बेटा जा विकास, जी ले अपनी जिंदगी, यही तो है आपकी ताकत। इस प्यार को, इस ताकत को बरकरार रखिएगा। यही मिलेंगे आकाशवाणी के रेनबो पर, तब तक आप सुनते रहिए क्या आपकी याद आती रही, स्टे ट्यून्ड।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: एक जमाने से कहा

0: नहीं है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: राहुल, अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
3: अरे सर, फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
2: इम्पॉसिबल
3: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, एक घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
4: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।

आकाशवाणी रेनबो पर आपके साथ मैं विकास, प्रोग्राम चल रहा है आपकी याद आती रही। और इस प्रोग्राम में अब एक बात जो दिल से निकली है और दिल तक पहुंचेगी, और वो बात नहीं जज्बात है अपने आप में, ए आर रहमान साहब की कंपोजिशन है, उन्हीं की आवाज़ भी है, दिल से रे।

0: और दिल से इतनी बार सुनकर ना दिल से एक बात याद आ गई, बात ये याद आ गई कि किसी ने पूछा कि भाई क्यों किसी की याद इतनी सताती है कि जिंदगी भर जाती नहीं है कहीं, बस सीने में घर कर लेती है उसकी याद। तो बंदे ने जवाब दिया कि इसलिए मैं ना उसे भुला पाता हूँ और सच कहूँ तो ना ही उसे भूलने की कोशिश ही कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे शिकायतें भी उससे हैं और मोहब्बत भी तो उसी से है। वो ना हो पास मगर उसकी मोहब्बत के सहारे ही रह जाने की ना उम्मीद छोड़ पाता है दिल, और इसलिए हर उम्मीद भरी हर सांस के साथ ये दिल उससे कहता है कि आपकी याद आती रही। बस यही तो वजह है कि इंसान नहीं भूल पाता उसे जिससे बहुत मदद करता है, बहुत गहरी शिद्दत के साथ मोहब्बत करता है ना। इसीलिए तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी की तरफ आपका दिल झुक रहा है, अपने आप झुकता जा रहा है, तो झुकने दो, क्योंकि अल्टीमेटली ज़िंदगी के किसी भी मुकाम पर कभी भी कहीं भी किसी भी उम्र में प्यार तो होना ही है।
1: शेखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
2: हाँ, एक लड़की बिल्कुल तुम्हारे जैसी, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी, लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
1: उसे बताया क्यों नहीं?
2: यह प्यार भी अजीब चीज है संजना, जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो वहां भी दिल कहने से डरता है, और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं, वो किसी और को चाहती है।

आपको पता है ये बात तो मैं अपनी प्लेलिस्ट के लिए भी कह सकता हूँ आज, जो सचमुच ऐसी है कि इसे सुन लिया तो बस प्यार तो होना ही है है ना। बड़े प्यारे प्यारे गाने मुझे भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। मतलब मैंने सोचा था कि आपको अच्छे लगेंगे, लेकिन सुनते सुनते मुझे इतने अच्छे लगे कि मैं क्या कहूँ, है ना। और ये बात सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे बहुत सारे लिसनर्स कह रहे हैं। राजेश भल्ला जी ने भी लिखा है, शुभ संध्या विकास बाबू, प्लेलिस्ट अच्छी है और सुकून देने वाली है और बहुत ही मज़ा आ रहा है उनको सुनकर। एक और हमारे दोस्त हैं, कहते हैं कि विकास ब्यूटीफुल, मज़ा आ गया, शुक्रिया इस प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए। और हमें बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, मैं कुछ लोग नाम आपको बता दूं। किशन वंजनानी, नीलम स्वाति और किशोर रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से हमें सुन रहे हैं। सुदर्शन मुखी जी, अनिता मुखी जी हमको सुन रहे हैं, सिमरन मुखी भी हमको सुन रही हैं शांति नगर सोनीपत से, बड़ा पसंद आ रहा उनको प्रोग्राम। साथ में मोहम्मद फुरकान अंसारी हमें सुन रहे हैं चौखंडी बाराबंकी से, और सभी त्यौहारों की बधाई भी दे रहे हैं जो आने वाले त्यौहार हैं। दानिश खतौली से हमें सुन रहे हैं, और हमें इस समय सुन रहे हैं रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता, सुंदरम गुप्ता, कहाँ से, ये ओखला संगम विहार दिल्ली से, पंकज अमरावती महाराज से हमको सुन रहे हैं, और हमें सलीम अख्तर साहब, रेशमा बेगम सुन रहे हैं अलीगढ़ से, और आदाब कह रहे हैं, हम भी आपको बहुत नमस्कार कहते हैं। और साथ में हमें सुन रहे हैं गुन्नौर से आदिल कमर तस्दीक अली मुजफ्फर अली, बहुत शुक्रिया आपका हमें ऐसे सुनने के लिए। और भी अगर किसी का नाम मैं मिस कर जाऊं तो माफ़ कीजिएगा। हितेंद्र दास भी हमको सुन रहे हैं आसाम से, तो कश्मीर हो या गुवाहाटी हो, जहाँ भी आप हमें जैसे भी सुन रहे हैं, आप अपना ख्याल रखते हुए हमको ऐसे ही सुनते रहिए। हमारी प्यारी प्यारी बातें और हमारे प्यारे प्यारे गीत आपके लिए हैं, और आपके साथ जो हमारे मोह मोह के धागे जुड़े हैं वो जुड़े रहेंगे, क्योंकि आप कहीं भी रहें लेकिन आपकी याद आती रही। यही इस प्रोग्राम का नाम जिसे आप सुन रहे हैं इस वक्त आकाशवाणी के रेनबो पर। स्टे ट्यून्ड।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
3: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
6: आज की रात मजा,
5: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
4: म्यूजिक मस्ती।
7: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
8: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
4: म्यूजिक मस्ती।

ये जिंदगी के ऐसे कुछ चुभते हुए सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिला करते, लेकिन जब तक ये कायनात है तब तक ये सवाल रहेंगे और इन सवालों में फंसा हुआ इंसानी दिल रहेगा। लेकिन अब वक्त का इशारा है कि अब चलना होगा, लेकिन चलते चलते ये भी कहना होगा कि मिलेंगे आपसे। और लेकिन मिलने से पहले, दोबारा मिलने से पहले कुछ यूँ कहना है कि कुछ इस तरह से मिले हम की बात रह जाए, कुछ इस तरह से मिले हम की बात रह जाए, बिछड़ भी जाएं तो हाथों में हाथ रह जाए। मैं सो रहा हूं तेरे ख्वाब देखने के लिए, खुदा करे कि तेरी आंखों में ये रात रह जाए। सचमुच ये रात आपकी आंखों में रह जाना ज़रूरी है, क्योंकि एक घंटे के अंतराल के बाद मेरा यहाँ लौट कर आना भी ज़रूरी है। जब आपका साथ होगा तभी तो मैं आपके साथ मिल बैठ कर सजाऊँगा आपकी पसंदीदा रंग महफिल यहीं आकाशवाणी के रेनबो पर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने अपनों का ख्याल रखिएगा। और जाते जाते आपको एक बात कहनी है कि आपके साथ जब भी मिल बैठते हैं तो ज़रा ज़रा बहकता है ये दिल।

0: called Born in the USA. There we go. Time right now is 10:30. That means we are at the halfway mark of the show, Weekender. So let's take a quick break over here. Don't go anywhere. We'll be right back.
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: एक जमाने से कहानी है, सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: Wow, I like the way the song ended over there. Yes, that was Bootylicious by American group Destiny's Child. And yes, the track is from their third studio album, Survivor. And yes, this particular song, Bootylicious, was a huge commercial success when it came out. And there we go, the rest is history. Okie dokie, time right now is what? Okay, time right now is 46 minutes past 10 p.m. this Friday evening, and we'll be right back after these messages. Don't go anywhere. We'll be right back.
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
4: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
3: अल्फा जेन,
4: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
5: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो। लीजिए आप सुनिए अभी तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं, जो सरकार की नीतिगत सुधारों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का आह्वान किया। गृहमंत्री अमित शाह ने अवैध प्रवासियों को देश से बाहर भेजने और जनसंख्यिकी बदलाव को रोकने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, हालांकि इसका उत्पादन अनुमान से कम रहने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। सरकार ने दोहराया है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। मणिपुर में इम्फाल दीमापुर गुवाहाटी मार्ग पर लगभग 3 साल के अंतराल के बाद सार्वजनिक परिवहन सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं और महिला हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण के अपने पहले मुकाबले में भारत और मेजबान नीदरलैंड्स के बीच मैच जारी। हाफ टाइम तक भारत 0-1 से पीछे। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। आप जुड़े रहिए आकाशवाणी रेनबो के साथ।

दरअसल साहब की आवाज़ है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जज्बात मेरे हैं। सचमुच ये ज़िंदगी जब भी आपकी बज़्म में लेकर आती है, आपकी इस महफिल में लेकर आती है जो हम सजाते हैं आपके लिए आकाशवाणी के रेनबो पर, जिसे आप सुनते हैं 102.6 माइंड ब्लोइंग मेगाहर्ट्ज पर, तो समझ लीजिए कि बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा फुर्सत से बैठकर बातें करने का मौका मिलता है आपके साथ। और मैं तो यूं कह ही देता हूं अक्सर ज़िंदगी से कि सितारे भी जाग रहे हों, सितारे भी जाग रहे हों, रात भी सोई ना हो, ऐ दिल मुझे वहां ले चल जहां उसके सिवा कोई ना हो। और देखिए, जब मैं कहता हूं ज़िंदगी से, तो ज़िंदगी मुझे ले आती है यहीं आपकी रंग महफिल में। तो चोट अगर जिगर पर खाई ली है तो फिर उस दर्द को बयां भी कर देते हैं। चंदन दास आ रहे हैं बड़ी प्यारी गजल लेकर।

चोट जिगर पर खाई ऐसे कि हमें भी एक पुरानी चोट याद आ गई। और मसला कुछ ऐसा हुआ था कि यूँ ज़िंदगी की राह में टकरा गया कोई, यूँ ज़िंदगी की राह में टकरा गया कोई, जैसे रोशनी अंधेरों में बिखरा गया कोई। पहले मुझे देखकर वो मरहम सी हो गई, फिर अपने ही हसीन ख्यालों में खो गई। बेचारगी पे मेरी उसे रहम आ गया, शायद मेरे तड़पने का अंदाज भाग गया। सांसों से भी करीब आ गया कोई, यूँ ज़िंदगी की राह में टकरा गया कोई। बशीर बद्र साहब के लिए एक बहुत ही बेहतरीन गज़ल आपके पेश नज़र, सुनिए ज़रा।

यूं बेसबब ना फिरा करो, जो कहा नहीं सुना करो, जो सुना नहीं वो कहा करो, है ना। कितनी प्यारी सी बात है कि जो कहा नहीं सुना करो, जो सुना नहीं वो कहा करो, बस दिल से दिल के रिश्ते को जोड़ लिया करो। जब से दिल का रिश्ता दिल से जुड़ जाएगा तो फिर सारी बातें अपने आप समझ में आ जाएंगी, है ना। और इन्हीं बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बड़े सारे मैसेजेस हमें मिल रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इतना ही कहेंगे कि मैसेजेस नहीं, आपकी बातें हम आप तक पहुंचाएंगे, है ना। अमित अंचल सासाराम बिहार से लिख रहे हैं कि आपकी गज़लों का इंतज़ार रहता है, गज़ल ही है वो एहसास जो जीवन के हर पहलू को दर्शाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, एक बड़ा कमाल का अशआर भी इस बारे में कि पहाड़ से भारी और रुई से हल्के जज्बात को बड़ी नफासत के साथ अंदाज करने का नाम है गज़ल। इसीलिए गज़ल ज़िंदगी की बहुत सारी परिस्थितियों को बयां कर देती है। पसंद हमें हमारी गज़लें बहुत आ रही हमारे दोस्तों को, इसलिए काम करते हैं गज़लों के सिलसिले को ना रोकते नहीं हैं, आगे बढ़ाते हैं। और अगर गज़लों की बात हो तो उस शख्स का नाम लेते ही गज़लों की हर महफिल महक जाती है, जिन्होंने खुद गाया है कि तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। द वन एंड ओनली किंग ऑफ गज़ल जगजीत सिंह साहब आ चुके हैं, इस्तकबाल कीजिए

0: सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
3: कोयल सी तेरी बोली,
4: हाय
3: तेरी तेरे छी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
5: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

बजकर 31 मिनट और 12 सेकंड हो चुके हैं। मैं हूं आपके साथ विकास और प्रोग्राम चल रहा है आपका पसंदीदा रंगे महफिल, जहां गीत गजल और बहुत सारी बातें आपके करीब आने लायक बातें है ना, करीब आने लायक यानी आपके दिल तक पहुंच जाने वाली बातें और ऐसी बात जिसमें एक एहसास है। एक बड़ी प्यारी बात सुनाऊं आपको, लिखते हैं कि इश्क जितना था जहां में सब तुम्हारे पास है, इश्क जितना था जहां में सब तुम्हारे पास है, मेरे दिल के चोर हो तुम, क्या तुम्हें एहसास है। ये बात पंकज जी के लिखा दें, पंकज जी जो कुछ नशा सा है उनकी बातों में, उनके उनके अंदाज में, जब तक उनको सुना जाएगा तब तक गजलें जिंदा रहेंगी।

कुछ नशा तो आपकी बात का है, कुछ आपकी मुलाकात का है, ये हम कहेंगे। आपकी बातें इतने मतलब समझिए कि फूल झड़ते हैं आपके मैसेजेस से। और ऐसे मैसेजेस में कई बार बड़ी कमाल की शायरी भी आप भेज देते हैं, तो हम पढ़ देते हैं आपकी तरफ से भेजी हुई एक शायरी। लिखते हैं कि तेरे संग एक खुमारी है, तेरे संग एक खुमारी है, तेरे संग चैन भी मुझको, तेरे संग बेकरारी है, तेरे संग इश्कदारी है। बड़ा प्यारा गीत है ये जिसको आपने भेजा और हमने यहाँ आपके ज़रिए से सबको सुना दिया, है ना। इस प्यार को, इस मोहब्बत को बरकरार रखिए, क्योंकि ये ज़िंदगी की जो किताब है उसमें सबसे जो अहम पन्ना है वो मोहब्बत का ही है। जिसने इस मोहब्बत को जी लिया उसने सब कुछ पा लिया।

मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

मिताली जी की आवाज़ जैसे मिसरी घुल जाती है कानों में, है ना। एक बात कह लूँ मैं आपसे, सोच तो रहा था कि ना कहूँ लेकिन अब कह देता हूँ, बड़े भारी मन से कह रहा हूँ लेकिन कह देता हूँ कि उनको भी हमसे मोहब्बत हो ज़रूरी तो नहीं, उनको भी हमसे मोहब्बत हो ये ज़रूरी तो नहीं, इश्क ही इश्क की कीमत हो ये ज़रूरी तो नहीं। इसलिए अगर किसी से मोहब्बत आपको हो जाए और वो बदले में आपसे मोहब्बत ना कर पाए तो भी बस राह चलते हैं, एहतराम करते चलिए, बाकी तो क्या है जीवन, कोई बात नहीं। सब कुछ मिल जाए ज़िंदगी में ये ज़रूरी नहीं, कुछ खो भी जाए तो उसके खोने के एहसास की भी एक अपनी कीमत होती है। बस इसी एहसास के साथ, इसी बात के साथ आज इस रंग महफिल में आखिरी रंग आपके नाम विकास को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार जुम्मे की रात, ठीक है। बने रहिएगा हमारे साथ, हमारे यानी आकाशवाणी रेनबो के साथ। बाय बाय, खुदा हाफिज़।

12 बजे हैं, आइए अब सुनते हैं इस समय के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम में कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं, जो सरकार की नीतिगत सुधारों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का आह्वान किया। गृहमंत्री अमित शाह ने अवैध प्रवासियों को देश से बाहर भेजने और जनसांख्यिकीय बदलाव को रोकने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, हालांकि इसका उत्पादन अनुपात में कम रहने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन विनिर्माण योजना

का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। सरकार ने दोहराया है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय ने प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले महीने की 5 तारीख को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 स्कूली शिक्षकों और को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगे। और महिला हॉकी विश्व कप में भारत को दुनिया की नंबर एक टीम नीदरलैंड्स के हाथों 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। दूसरे पूल चरण के इस मुकाबले में भारत की यह टूर्नामेंट में पहली हार है।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: 2:12:02 और 52 सेकंड हुए हैं। आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम जीरो आर शो। प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। फिल्म का नाम है स्वामी।

0: कोयल सी तेरी बोली,
1: हाँ?
0: कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु,
1: आए हाय,
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: और दोस्तों आइए अब आपको सुनवाते हैं नूरी फिल्म का गीत, आवाजें नितिन मुकेश और लता मंगेशकर की।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: और दोस्तों, अब जो गीत आपको सुनवाने जा रही हूँ उसे गाया है लता मंगेशकर ने। फिल्म का नाम है अभिनेत्री।

अभी आप सुन रहे थे अभिनेत्री फिल्म में लता मंगेशकर को, और आइए अब सुनते हैं प्यार छुपता नहीं फिल्म का गीत, जिसे गाया है नितिन शबीर कुमार और लता मंगेशकर ने।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दोस्तों 12:33 और 37 सेकंड हुए हैं। आप आकाशवाणी के FM रेनबो पर इस समय सुन रहे हैं प्रोग्राम जीरो आर शो। मैं हूं आपके साथ अर्चना बिसारिया, और अब सुनवाते हैं आपको मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म ठोकर का ये गीत।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: और अब जो गीत आप सुनेंगे उसे हमने लिया है फिल्म शंकर हुसैन से, आवाज लता मंगेशकर की।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर

0: भी कॉल कर सकते हैं, नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: लीजिए सुनिए यशुदास को फिल्म लहू के दो रंग में।

और दोस्तों कार्यक्रम के आखिर में आइए आपको सुनवाते हैं यशुदास की आवाज़ में सावन को आने दो फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत।

एक बजे हैं, आइए अब सुनते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं, जो सरकार की नीतिगत सुधारों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने अवैध प्रवासियों को देश से बाहर भेजने और जनसांख्यिकीय बदलाव को रोकने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई। पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि बैठक में जयपुर घोषणा पत्र पारित किया गया और संयुक्त रणनीति पर सहमति बनी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले महीने की 5 तारीख को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। और महिला हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण के पूल ई मुकाबले में नीदरलैंड्स ने भारत 0-2 से हरा दिया। भारत की ये टूर्नामेंट में पहली हार है। नए

ग्रुप के तहत पूल ई से शीर्ष दो टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। भारत के अगले मुकाबले ऑस्ट्रेलिया और चीन से होंगे। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: 1:02 हुए हैं। आइए सुनते हैं सुहानी रात। इसमें आप सुनेंगे नॉन स्टॉप म्यूजिक।

यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: है बबल। जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

சகமக சகமபத பதனிதா சகமபத.

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

दो बजे हैं, आइए अब सुनते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं, जो सरकार की नीतिगत सुधारों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने अवैध प्रवासियों को देश से बाहर भेजने और जनसांख्यिकीय बदलाव को रोकने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई। पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि बैठक में जयपुर घोषणा पत्र पारित किया गया और संयुक्त रणनीति पर सहमति बनी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले महीने की 5 तारीख को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। महिला हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण के पूल मुकाबले में नीदरलैंड्स ने भारत 0-2 से हराया। अब भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए आखिरी पूल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा और नीदरलैंड्स की चीन पर जीत की उम्मीद करनी होगी। स्लोवाकिया में चल रही अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की काजल ढोजक ने महिलाओं के 76 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। तनु शर्मा और सविता ने रजत पदक जीते और स्विट्जरलैंड के लुसाने में डायमंड लीग में भारत के नीरज चोपड़ा ने 88.05 मीटर भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। ये उनका इस सत्र का सर्वश्रेष्ठ थ्रो रहा। ये थे मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: 2:03 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम भुलाए ना बने। इसमें आप सुनेंगे नॉन स्टॉप म्यूजिक और प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ अर्चना बिसारिया।

के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। 3 बज चुके हैं, लीजिए सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं, जो सरकार की नीतिगत सुधारों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोगों का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने अवैध प्रवासियों को देश से बाहर भेजने और जनसांख्यिकीय बदलाव को रोकने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। जयपुर के ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई। पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि बैठक में जयपुर घोषणा पत्र पारित किया गया और संयुक्त रणनीति पर सहमति बनी। भारत की मेजबानी में आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा कार्य मंत्रियों की बैठक होगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया बैठक की अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले महीने की 5 तारीख को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। महिला हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण के पूल मुकाबले में नीदरलैंड ने भारत को 2-0 से हराया और अब भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए आखिरी पूल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा और नीदरलैंड की चीन पर जीत की उम्मीद करनी होगी। स्लोवाकिया में चल रही अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की काजल डोचक ने महिलाओं के 76 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। तनु शर्मा और सविता ने रजत पदक जीते और स्विट्जरलैंड में लुसाने में डायमंड लीग में भारत के नीरज चोपड़ा ने 88.05 मीटर भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। यह उनका इस सत्र का सर्वश्रेष्ठ थ्रो रहा। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है। 3:03 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज।

कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज में आप सभी का स्वागत है, जिसमें आज मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अचित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम कुमार सानू जी की आवाज में एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ।

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: 3:29 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज मेरे यानी अर्चित के साथ।

0: मेलोडीज
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में 4 बज चुके हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं, जो सरकार की नीतिगत सुधारों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोगों का भी आह्वान किया। गृहमंत्री अमित शाह ने अवैध प्रवासियों के देश से बाहर भेजने और जनसांख्यिकीय बदलाव को रोकने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई। पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि बैठक में जयपुर घोषणा पत्र पारित किया गया और संयुक्त रणनीति पर सहमति बनी। भारत की मेजबानी में आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा कार्य मंत्रियों की बैठक होगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया बैठक की अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले महीने की 5 तारीख को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। स्लोवाकिया में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की काजल डोचक ने महिलाओं के 76 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। तनु शर्मा और सविता ने रजत पदक जीते। और स्विट्जरलैंड के लुसाने में डायमंड लीग में भारत के नीरज चोपड़ा ने 88.05 मीटर भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। यह उनका इस सत्र का सर्वश्रेष्ठ थ्रो रहा। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। 4:03 हो चुके हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सारेगामा।

के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

4:30 हो चुके हैं। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम सारे गामा मेरे यानी अलचित के साथ।

0: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
1: चार 4:42 हो चुके हैं। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम सारे गामा मेरे यानी अर्चित के साथ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में 5 बज चुके हैं। लीजिए अब सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार के नीतिगत सुधारों के परिणाम स्वरूप पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोगों का आह्वान किया। सरकार ने आश्वस्त किया है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। जयपुर में कल ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक हुई। जयपुर घोषणा पत्र पारित हुआ और संयुक्त रणनीति पर सहमति बनी। भारत की मेजबानी में आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा कार्य मंत्रियों की बैठक होगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया बैठक की अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले महीने की 5 तारीख को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार देंगी। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। स्लोवाकिया में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की काजल डोचक ने महिलाओं के 76 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। तनु शर्मा और सविता ने रजत पदक जीते। स्विट्जरलैंड के लुसाने में डायमंड लीग में भारत के नीरज चोपड़ा ने 88.05 मीटर भाला फेंककर दूसरा स्थान हासिल किया। यह उनका इस सत्र का सर्वश्रेष्ठ थ्रो रहा। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। 5:03 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत कार्यक्रम आराधना।

एक सच्चा हरि भक्त जीवन भर ईश्वर दर्शन की आस लिए, हरि मिलन की प्यास लिए पल पल तड़पता है, तरसता है कि उस पर भी हरि कृपा कर दे। भक्तों का तारनहार, जगत का पालनहार हर युग में अवतार लेता है। कभी अवधपति राम तो कभी गोकुल का श्याम बनकर, बाल कृष्ण की एक झलक पाने के लिए तुलसी, नानक, सूरदास, मीराबाई, एकनाथ, तुकाराम और नरसिंह मेहता ने आराधना की, तपस्या की और वो सफल हुए। हरि दर्शन का प्यासा भक्त ईश्वर से कई सवाल करता है कि उसमें क्या कमी है, उसकी भक्ति में क्या कसर है कि परमात्मा उससे इतनी दूरी बनाए रखता है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

0: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तो मैं सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।